0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है। तदनुसार 26 सितंबर 2026 आज दिन शनिवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी ने एक लड़के के हाथ से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, वो बिल्कुल सही था। फिर एक एक कर उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देखकर वो लड़के दंग रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, बहुत छोटा सा मंत्र है, एकाग्रता। तुम जो भी काम कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान उस एक काम में ही लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। जो भी काम कर रहे हो एकाग्रता से करो, तभी सफलता हाथ आएगी। एकाग्रता ही सफलता का मंत्र है।
1: जीवन सौरभ।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी प्रातःकालीन सभा दोपहर के 12 बजे तक जारी रहेगी। अब से थोड़ी देर बाद सुनेंगे वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि। उसके बाद भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज समाज सुधारक एवं स्वाधीनता संग्राम सेनानी ईश्वर चंद विद्यासागर के जीवन पर केंद्रित होगा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा। जानकारी देंगी इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। सुबह 9 बजे योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा देव के स्वरूप का विवेचन और सत्कार्य की प्रेरणा। जानकारी देंगे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी, जो कि जीवन कला विशेषज्ञ हैं, और इनसे बातचीत करेंगी हमारी सहयोगी सुनीता सिंह। सुबह 9:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी ओमियो कुमार दास के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 10 बजे भोपाल में आयोजित रंग फुलकारी नाट्य महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा और 10:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद। आज की कड़ी उर्दू शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर केंद्रित होगी। सुबह 11 बजे सुर सागर कार्यक्रम में आज हम शास्त्रीय गायन सुनेंगे। कलाकार होंगे सिद्धार्थ वेलमन्यू। और 11:30 पर स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 27 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत, देवता हैं आदित्यगण और छंद है त्रिष्टुप।
1: त्वं विश्वेशाम वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः शतम् नो रास्व शरदो विचक्षे श्यामायुंसि सुधितानि पूर्वा। हे मादक पदार्थों से रहित वरुण देव, आप देवता तथा मनुष्य सभी के राजा हैं। हमें इस संसार को भली भांति देखने के लिए 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। न दक्षिणा विचिकिते न सव्या न प्राचीन मादित्या नोत पश्चा पाक्या चिद वसवो धीरिया चिदुष्मानीतो अभयम् ज्योतिरश्याम। हे आदित्यगण, हम आगे पीछे बाएं दाएं क्या है यह नहीं जानते। सबके आश्रयदाता आदित्यगण, हम परिपक्व बुद्धि तथा धैर्यवान होकर आपके द्वारा दिखाए गए पथ में चलते हुए भय रहित ज्योति प्राप्त कर सकें। यो राजभ्य ऋतनिभ्यो ददाश यम वर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्याः स रेवान्याति प्रथमो रथेन वसुदावा विदथेषु प्रशस्तः। जो तेजस्वी याजकों को धन प्रदान करता है, जो सदैव समृद्धिशाली रूप में वृद्धि पाता है, वह स्तुत्य धन प्रदाता धनिक रथ में प्रतिष्ठित रथी के समान श्रेष्ठ कार्यों में सदैव अग्रणी रहता है। शुचिरपह सूयवसा अदब्ध उपक्षेति वृद्धवयाः सुवीरः न किष्टं घ्नत्यन्तितो न दूराद्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ। जो आदित्य गणों का पथानुगामी होता है, वह दीप्तिमान हिंसा रहित उत्तम संतति से युक्त दीर्घायु पोषक अन्न तथा ज्येष्ठ श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त करता है। उसका समीप से या दूर से कोई शत्रु वध नहीं कर सकता। अदिते मित्र वरुणोत मृडयद्वो वयम चक्रमा कच्चिदागह उर्वश्याम भयम ज्योतिरिंद्र मानो दीर्घा अभि नशंत मिस्राह। हे अदिति मित्र तथा वरुण देवो, यदि हमसे कोई अपराध भी बन पड़े तो भी आप हमें क्षमा करें। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, दीर्घ अंधकार हमें न व्याप्त करे, अतः विस्तीर्ण तथा अभय ज्योति हमें प्रदान करें। उभे अस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टिम् सुभगो नाम पुष्यन् उभा क्षया वाजयन्याति पृत्सु भावैर्धौ भवतः साधु अस्मै। जो व्यक्ति आदित्य गणों का अनुगमन करता है, उसे द्युलोक तथा पृथ्वीलोक दोनों परिपुष्ट बनाते हैं। द्युलोक से हुई ऐश्वर्य वृष्टि को वह सौभाग्यशाली प्राप्त करता है। वह युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ दोनों लोकों में जाता है तथा दोनों लोक उसके लिए मंगलदायी होते हैं। या वो माया अभिद्रुहे यजत्राह पाशा आदित्या रिपवे विचरिताह अश्वीव ताम अतियेशम रथेना रिष्टा उरावा शर्मन्त्यस्याम। हे आदित्य गण, जिस तरह घुड़सवार कठिन रास्ते को सुगमता से पार करता है, उसी तरह शत्रुओं के लिए आपके द्वारा बनाए गए पाशों को हम सरलता से लांघ जाएं। हम निर्विघ्न सुखमय विशाल गृह में निवास करें। माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदान आविदं शूनमापेह मारायो राजन्सु यमादव स्थाम बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे वरुण देव, सबको संतुष्ट करने वाले ऐश्वर्यवान दानदाता की सुख समृद्धि से कभी ईर्ष्या न करें, उसे बंधुवत माने। हे वरुण देव, आवश्यक धन प्राप्त होने पर हम अहंकारी न बने, श्रेष्ठ संतति सहित यज्ञ में देवों की स्तुतियां करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 27 वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। और क्या आपको पता है, बहुत तेरी बातें छोटी छोटी ही होती हैं। ज्यादातर चीजें जिनके बारे में हम दिन भर चिंता करते हैं और तनाव में रहते हैं, वे अधिक समय तक मायने भी नहीं रखती। इसीलिए अपूर्णता को स्वीकार कर ले। ये परफेक्शनिस्ट होने से अच्छा है।

इस सोच को छोड़ दें कि सौम्य और शांत लोग सुपर अचीवर नहीं हो सकते। वो हो सकते हैं, आप कूल रहकर भी अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच के स्नोबॉल प्रभाव को समझें, क्योंकि एक नकारात्मक विचार आसानी से और भी कई नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है।

दूसरे लोगों और उनकी समस्याओं के लिए समझ विकसित करने से आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद करने में मदद मिलती है। यह आपको अधिक कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण देता है। अपने आप को यह याद दिलाएं कि जब आप इस दुनिया से विदा होंगे तो आपके हाथ खाली नहीं होंगे। आप कुछ ऐसा हासिल करके जाएंगे जो मूल्यवान है।

जब भी आप परेशान हो तो खुद से ये पूछे कि क्या ये एक साल बाद भी मायने रखेगा। ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं, इसलिए इस बारे में ज्यादा चिंता ना करें। खुद से ये सवाल पूछने से आपको ज्यादा शांत जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि जीवन निष्पक्ष नहीं है और उसके साथ जीने की कोशिश करें।

अपनी चिंता और टेंशन को कम करने के लिए दूसरों को सही होने दे, उन्हें ये विश्वास करने दे कि वे ठीक कर रहे हैं। किसी को भी ये सुनना पसंद नहीं है कि वो गलत हैं। ज्यादा धैर्यवान बने, धीरज का अभ्यास करें, दूसरों में मासूमियत खोजने की कोशिश करें और देखें कि वे जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

वर्तमान में जीना सीखें। अपने मस्तिष्क को इस पर ना भटकने दें कि अतीत में क्या हुआ था या भविष्य में क्या होगा। बस इसे बार बार वर्तमान में लौटा लाएं, क्योंकि वर्तमान ही आपके पास वास्तव में है।

करने के लिए हमेशा कुछ होता है। इसीलिए जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ हो, तब भी अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। और जब आप अपने सभी टास्क पूरे कर लें, तो खुश होने का इंतजार ना करें। किसी भी बात पर प्रसन्न हो जाएं, किसी भी बात पर मुस्कुरा दें और अपनी पीठ थपथपा लें।

बीते समय को बदला नहीं जा सकता, इसलिए पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है। नए दिन का सकारात्मक सोच के साथ स्वागत करें और अपने काम की नई शुरुआत करें, तभी सफलता मिल सकती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। ये
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज के कार्यक्रम में हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

विद्यार सागर तुमी विख्यात भारते करुणार सिंधु तुमी शेई जाने मोने दीन जे दीनेर बंधु उज्जवल जगते हिमाद्रीर हेमकांति अम्लान किरोने माइकल मधुसूदन दत्त की ये पंक्तियां बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समर्पित हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तुम विद्या के सागर के रूप में भारत में विख्यात हो, मन तुम्हें करुणा के सिंधु के रूप में जानता है, दीनों के बंधु के रूप में तुमने इस जगत को उज्ज्वल किया है हिमाद्री की कांति से सज्जित अम्लान किरणों की तरह। सच है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जीवन ऐसे ही धवल प्रकाश से भरा हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर सन 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। ये एक अत्यंत निर्धन परिवार था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंद्योपाध्याय और माताजी का नाम भगवती देवी था। उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में उनकी प्रतिभा और ज्ञान को देखते हुए

सन 1846 में संस्कृत कॉलेज में वो सचिव के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने अपने काम को अत्यंत गंभीरता और जिम्मेदारी से लिया। वो कॉलेज के पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहते थे, लेकिन यहाँ उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी सोच प्रगतिवादी और सुलझी हुई थी, इसलिए रूढ़िवादी लोगों का विरोध हमेशा बना रहता था। निराश होकर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। फिर 1850 में वो दोबारा संस्कृत कॉलेज से जुड़े और सन 1858 तक यहाँ रहे। प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने कॉलेज के मामलों में अनेक बदलाव किए। पहले केवल ब्राह्मण छात्र ही संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी के लिए दरवाजे खोल दिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नाम मात्र की ट्यूशन फीस शुरू की। उन्होंने पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया और व्याकरण तथा गणित को केवल संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने के बजाय इसे बांग्ला और अंग्रेजी के माध्यम से भी पढ़ाना शुरू किया। संस्कृत महाविद्यालय के पारंपरिक विषयों के अलावा भी उन्होंने यहाँ पाठ्यक्रम को अत्यंत सार्थक विस्तार दिया। वो कहा करते थे कि विद्या अनमोल धन है, इसके आने मात्र से केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्कूलों के सहायक निरीक्षक के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने नादिया, बर्धमान, हुगली और मेदिनीपुर जिलों में 20 से भी अधिक बांग्ला स्कूलों की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। ये वो समय था जब रूढ़िवादी समाज स्त्री शिक्षा को वर्जित मानता था। ऐसे समय में उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद बालिका विद्यालय खोले। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सुधार उनका प्रिय विषय था। इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य भी किए और अनेक लेख लिखकर लोगों को जगाया भी। महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए उन्होंने बाल विवाह को समाप्त करने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस दिशा में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए सरकार को एक याचिका भेजकर इसे कानून बनाने का अनुरोध किया। इस तरह सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्हें इसके कारण कड़े विरोध सहने पड़े, उनके प्राण भी संकट में आए, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से संपन्न कर एक जीवंत और साहसिक उदाहरण प्रस्तुत किया। दरअसल ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर रामकृष्ण परमहंस का बहुत गहरा प्रभाव था, विशेषकर सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। परमहंस जी के विचारों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सामाजिक सुधारों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनाया, विशेषकर स्त्री शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। दोनों के बीच गहरा प्रेम और सम्मान था। कहीं मतभेद रहे भी तो एक दूसरे के प्रति आदर में कोई कमी नहीं आई। प्रसंग मिलता है कि रामकृष्ण परमहंस ईश्वर चंद्र विद्यासागर से इतना अधिक प्रभावित थे कि वो स्वयं उनसे मिलने भी गए। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ज्ञान का सागर कहा, उनके कार्यों को सात्विक कर्म कहा, उसे ही पूजा माना। इस तरह विद्यासागर जी की समाज सेवा जैसे उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा ही बन गई।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उदारता और दयालु व्यवहार के कारण लोग उन्हें करुणा सागर भी कहते थे। उनके भीतर मानव मात्र के प्रति करुणा का प्रबल भाव था। वो कहा करते थे कि दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो वास्तव में मनुष्य नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपना जीवन बहुत सादगी से व्यतीत करते थे। वो घर पर बुने साधारण सूती वस्त्र धारण किया करते थे जो उनकी माता बुनती थीं। लेकिन दान पुण्य के अपने काम को वो राजा की तरह करते थे। बांग्ला साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम सहित विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का बांग्ला में अनुवाद किया। इन अमर ग्रंथों को उन्होंने बांग्ला पाठकों तक पहुंचाया। वो बांग्ला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों में से एक थे। उन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की, जिनमें से 17 संस्कृत में, 5 अंग्रेजी में तथा शेष बांग्ला भाषा में हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वेताल पंचविंशति, शकुंतला, सीता वनवास, व्याकरण कौमुदी, कामनाख्यानम आदि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं, जिन्हें देखने पर स्पष्ट होता है कि वो न केवल छात्रों को पढ़ने लिखने का कौशल सिखाना चाहते थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि उनमें नैतिक मूल्यों का बीजारोपण भी हो। उन्होंने सदा उदार और खुले विचारों के साथ सोचा। चरितमाला में मध्यकालीन संतों की जीवनी न लिखकर उन्होंने यूरोप के 16 महापुरुषों के बारे में लिखा। बांग्ला वर्णमाला के पुनर्निर्माण का श्रेय भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही जाता है। उन्होंने बांग्ला भाषा को आधुनिक और सरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोर्नो पोरिचय नामक पुस्तक लिखी, जो आज भी बांग्ला सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। इसमें उन्होंने संस्कृत स्वरों को समाप्त कर बांग्ला टाइपोग्राफी को 12 स्वरों और 40 व्यंजनों में तब्दील करते हुए सरल बना दिया। स्वावलंबन, स्वाभिमान, मानवता, अध्ययनशीलता और सादगी उनके जीवन के महामंत्र थे। उन्होंने शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए। वो एक विशाल वटवृक्ष की तरह थे, जिसकी छाया में पीढ़ियां संस्कारित होती हैं। लोगों के स्वार्थी व्यवहार ने उन्हें जब परेशान किया, तो उन्होंने ऐसे लोगों से संबंध विच्छेद ही उचित समझा। अपने जीवन के अंतिम 18 से 20 साल उन्होंने झारखंड के संथाल जनजातीय समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिए। 29 जुलाई सन 1891 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि लोग आश्चर्य करते हैं कि ईश्वर ने लाखों बंगालियों में कैसे एक मनुष्य को पैदा किया। सबके कल्याण की कामना करने वाले ऐसे महान मनीषी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर के जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद।
2: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना जो कि इतिहासविद हैं, और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा।
3: नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आगे की कहानी जानेंगे। इतिहास के पन्नों से। इसके पहले के एपिसोड्स में हम आपको बता रहे थे गोंड जनजाति के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में, और हम यहां तक पहुंच चुके थे कि बस युद्ध की तैयारियां हो चुकी थीं। युद्ध के मुहाने पर दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, रानी दुर्गावती की और मुगल सेना। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में हमने सुना था कि 1564 ईस्वी में गढ़ा की गोंड रानी और दिल्ली के मुगल शासक अकबर के बीच युद्ध पर आ बनी। मुगल सेनापति आसफ खां अकबर की ओर से अपनी विशाल सेना के साथ गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर डट गया। इधर जब गोंड रानी दुर्गावती को स्थिति की जानकारी मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना को सुगठित किया और युद्ध के लिए नरे की तरफ बढ़ गईं। बीच रास्ते में उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया। अनेक लोग उनकी सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो गए। रानी की सेना में 2 से 3 हजार सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में लगभग 50 हजार सैनिक, हाथी और घोड़े थे। कई इफ्तिखार भी अपनी सेनाओं के साथ मुगल सेना में आकर जुड़ गए थे। इस तरह मुगल सेना जहां एक तरफ बहुत विशाल थी, वहीं रानी की सेना उसकी अपेक्षा में बहुत कम थी। रानी को यह भी सलाह दी गई थी कि वो संधि कर लें और युद्ध से बच जाएं, किंतु रानी दुर्गावती युद्ध से मोड़ लेने जैसा कायराना काम कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को ही चुना। कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहां करो या मरो की स्थिति थी। रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एक मत होकर युद्ध करने की इच्छा जाहिर की और एकजुट होकर स्वीकार किया कि जो भी परिणाम होगा उसके वो सामूहिक रूप से भागीदार होंगे, जिम्मेदार होंगे। हमारी विषय विशेषज्ञ और पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना ने हमें बताया था कि गढ़ा की प्रजा रानी का बहुत अधिक सम्मान करती थी। वो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी, और इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें इस नरई के युद्ध की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। रानी को याद करते हुए आज भी जस गाए जाते हैं, यानी कि यश गीत गाए जाते हैं। ऐसे अनेक जस हैं जिसमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया, और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिख रही थी, पूजा जी ने बताया था। और एक बार फिर से वो सैला लोकगीत आपको जरा सा उसकी चार पंक्तियां हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तरी नाना मो नाना रे नाना, तरी नाना मो नाना रे नाना, रानी महारानी ओ आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए। पूजा जी फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। फिर से पहले से ही अग्रिम धन्यवाद।
4: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
3: पूजा जी। अब आंखों देखा हाल आपसे सुनना चाहेंगे युद्ध का।
4: जैसा आपने कहा कि गढ़ा की सेना और आसफ खां की सेना दोनों लगभग सामने आमने ही थी
3: जी।
4: युद्ध होने को ही था। हालांकि इतिहास में हमने बहुत से युद्ध देखे हैं
3: जी।
4: युद्ध तो किसी के लिए भी ठीक तो नहीं होता
3: जी।
4: दोनों ओर के लोग मारे जाते हैं युद्ध में
3: जी।
4: किसी के कम मरते हैं, किसी के ज्यादा
3: जी।
4: लेकिन हानि तो होती है। फिर भी सदियों से इंसान दूसरे की भूमि हड़पने के लिए लड़ता आया है। भारतीय परंपरा में आक्रमण करके भूमि जीतने वाला राजा महान नहीं माना जाता, बल्कि प्रेम से, त्याग से, दान से, निर्माण से और सबसे अधिक बलिदान से हृदय जीतने वाला राजा महान होता है
3: जी।
4: इसलिए ये अवधारणा का अंतर हमें भारतीय परंपरा में, भारतीय युद्धों में देखने को मिलता है
3: जी।
4: यहाँ वह राजा महान होता है जो प्रजापालक हो, लोकहित में कार्य करता हो, राज्य की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। ऐसा राजा, ऐसी रानी हमें प्रिय होती है।
3: बिल्कुल।
4: महानता इसमें नहीं है कि आप कितने साधन संपन्न थे
3: जी। हाँ।
4: आपके पास कितनी विशाल सेना थी या आप कितने बड़े राज्य के मालिक थे।
3: बिल्कुल,
4: महानता इसमें होती है कि जिस परिस्थिति में आप थे उसमें आपने क्या पराक्रम दिखाया।
3: जी,
4: आप परिस्थिति का सामना करने की बजाय भाग खड़े हुए या अपनी प्रजा के सम्मान के लिए, राज्य की रक्षा के लिए आप प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटे।
3: जी,
4: इन सभी प्रतिमानों पर हमारी लोकप्रिय गोंड रानी दुर्गावती खरी उतरती हैं।
3: बिल्कुल, पूरी तरह। जी,
4: उनके पास जो भी साधन थे, संसाधन थे, उसके साथ ही वह विशाल मुगल सेना के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। गढ़ा की सेना को सुगठित किया, अपने वक्तव्य से सैनिकों को प्रेरित किया, उनके नेतृत्व में गढ़ा की सेना पूरे पराक्रम से इस युद्ध को लड़ी। गढ़ा राज्य की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती और उनकी प्रजा सर्वस्व बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार थी।
3: पूजा जी, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि रानी दुर्गावती बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी सी कुछ कूटनीति का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो आगे बढ़ने की दिशा थी वो अपनी बदल दी थी, और उससे क्या आसफ खां की सेना चौंकी, आसफ खां चौंका या नहीं, क्या हुआ?
4: जैसा कि हम जानते हैं कि जब रानी की सेना अचानक जंगलों की ओर मुड़ गई
3: जी
4: नरई आते आते, तो आसफ खां को समझ नहीं आया कि सेना गई कहां।
3: जी,
4: कुछ समय बाद जब उनको यह सूचना मिली कि रानी की सेना नरई की ओर बढ़ रही है, तब उसने जल्दी से अपने दो सेनापतियों नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद को सेना का एक बड़ा भाग देकर आगे आगे जाने को कहा।
3: जी हाँ,
4: वे दोनों मुगल सेना को लेकर नरई की ओर आगे बढ़ने लगे। वहीं सेनापति आसफ खां और अधिक सूचनाएं जुटाता रहा और पीछे बची हुई जितनी सेना थी उसको साथ लेकर नरई की ओर रवाना हो गया।
3: जी,
4: रानी तक भी यह समाचार पहुंचा कि मुगल सेनापति आसफ खां की ओर से नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना की टुकड़ियां घाटी में प्रवेश कर रही हैं।
3: जी,
4: अब जैसी की योजना थी, रानी दुर्गावती ने यह निश्चय किया कि जब मुगल सेना नरई घाटी में प्रवेश कर जाएगी
3: जी
4: तब उसका सामना किया जाएगा, क्योंकि चारों ओर से यह घाटी पहाड़ों से
3: घिरी हुई थी और इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से गोंड सेना जानती
4: भी थी। एक और नर्मदा नदी थी, दूसरी तरफ गौर नदी
3: जी।
4: तो इस क्षेत्र की अच्छी जानकार थी गोंड सेना। तो ये निश्चित हो गया कि जब नरई की घाटी में सेना प्रवेश कर जाएगी आसफ खां की, उसके बाद ही कोई हमला किया जाएगा
3: जी।
4: तो गोंड सेना भी अपने शस्त्र और अस्त्रों के साथ सुसज्जित थी
3: जी।
4: गोंड सेना में हाथी थे, घोड़े थे और पैदल सैनिक भी थे
3: जी।
4: ये सभी धनुषवाण, ढाल, तलवार, कृपाण, कटार, बर्छी, भाला, ये सब लेकर एकदम तैयार खड़े थे।
3: पूजा जी, युद्ध बिल्कुल लड़ा कब गया, क्या कोई तारीख नजर आती है?
4: बिल्कुल स्पष्ट आईने अकबरी में मेंशन है कि यह युद्ध 1564 ईस्वी में लड़ा गया और तारीख थी 23 जून और 24 जून।
3: अच्छा, यानी ये दो दिन की ये लड़ाई थी
4: कि ये लड़ाई थी। और आज से अगर हम इसको देखें तो 459 वर्ष इसको हो चुके हैं इस युद्ध को, फिर भी ये युद्ध हमारी यादों में आज भी है,
3: आज भी हमारी स्मृतियों में है और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य की हम गाथा की बात कर रहे हैं। तो पूजा जी, हमारे श्रोता भी बहुत बेकरार हैं, बहुत उत्सुक हैं कि आगे युद्ध में क्या हुआ, बताइए।
4: जब रानी को यह पता चला कि आसफ खां की सेना की जो अग्रिम टुकड़ियां हैं वो नरई में प्रवेश करने ही वाली हैं, तो रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थान पर इस प्रकार खड़ी की कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों ओर से उस पर हमला बोल दिया
3: जी।
4: दोनों ही सेना के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। हाथी, घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष, बाण, तीर, तलवार और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा था।
3: अच्छा मैम, रानी दुर्गावती तो नेतृत्व कर ही रही थी सेना का, लेकिन जैसे कि होता है कि पैदल सेना, जैसे अश्व सेना, हाथी सेना, तो ये जो अलग अलग सेनाएं थी, ये जो अलग अलग युद्ध कौशल थे, तो और कौन कौन नेतृत्व करता थे रानी दुर्गावती की सेना में, उनके अगर यदि आप कुछ नाम हमें बता पाएं।
4: हमने जैसा कि पहले बात की थी एक बार कि जब रायसेन पर आक्रमण हुआ था उस समय रानी दुर्गावती जब विजय हुई थी
3: जी।
4: तो उनकी सेना में कुछ मियाना अफगानी जो थे वो भी शामिल हो गए थे
3: जी, जी।
4: और वो ऊंचे पदों तक भी पहुंचे, उनकी सेना में वो सेनापति भी बने
3: जी।
4: तो आपको कुछ नाम याद होंगे जैसे कि शम्स खां मियाना
3: जी, जी।
4: मुबारक बिलूच
3: जी।
4: तो ये जो थे ये अब भी इस नरई की युद्ध में भी शामिल थे
3: जी।
4: और सेनापति के तौर पर शामिल थे और इन्होंने भी बड़ी वीरता पूर्वक इस युद्ध में लड़ा। इसी तरह जैसा कि हमने पिछले अंकों में बात की थी कि जो गढ़ा के राजा थे दलपत शाह
3: जी,
4: जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई तो उनका जो पुत्र था वीर नारायण
3: जी,
4: वो बहुत छोटा था, 3-4 वर्ष का रहा होगा।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: अगला राजा जो घोषित किया गया था वो वीर नारायण को घोषित किया गया था और रानी ने उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज संभाला था
3: जी। हाँ।
4: तो अब इस समय तक आते आते यानी कि 1564 ईस्वी तक आते आते वीर नारायण लगभग 17-18 वर्ष के रहे होंगे, रानी को शासन करते हुए 14 वर्ष हो चुके थे। तो वीर नारायण 17-18 वर्ष के नौजवान थे
3: जी।
4: बहुत अनुभवी तो नहीं रहे होंगे लेकिन हाँ साहसी थे। इस युद्ध में उनका भी वर्णन आता है, वो भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे
3: जी।
4: तो ऐसे कुछ नाम हमको गढ़ा राज्य की सेना में मिलते हैं।
3: और पूजा जी, क्या रानी दुर्गावती की सेना में एक फौजदार थे जिनका जिक्र इतिहास में आता है, अर्जुन सिंह, उनकी क्या भूमिका थी इस युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध उनके लिए भी काफी याद किया जाता है।
4: इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख बलिदान सर्वप्रथम दिया वो थे अर्जुन सिंह बखीला। उनको अर्जुन सिंह बैस के नाम से भी जाना जाता है और अर्जुन सिंह बघेल के नाम से भी जाना जाता
3: अच्छा।
4: है। तो ये जो अर्जुन सिंह बखीला थे ये रानी की जो हाथी सेना थी उसका संचालन किया करते थे, फौजदार थे सेना में
3: जी।
4: और जब युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर रही थी उसी समय अर्जुन सिंह बघेला ने पूरा नेतृत्व संभाल लिया और हाथी की सेना के द्वारा उन्होंने खूब अच्छा संचालन किया
3: जी।
4: आप जानते ही हैं कि मध्य युग में हाथियों का सेना में बहुत अधिक महत्व था,
3: जी।
4: हाथी की जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा होती है और ये काफी बलशाली पशु भी है
3: जी।
4: और अपने जो प्रशिक्षक होता है उसकी बात भी बहुत अच्छे से मानता है, इसलिए सेना में हाथियों का खूब उपयोग होता था और हाथी की सेना का जो संचालन करता था उसका भी बहुत ही महत्व था। तो इस पूरे युद्ध में अर्जुन सिंह बघेला का संचालन बहुत महत्व रखता था
3: जी।
4: तो जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर गई तो सबसे पहला सामना अर्जुन सिंह बघेला ने ही किया और उन्होंने काफी वीरता पूर्वक युद्ध किया
3: जी।
4: लेकिन शाम होते होते अर्जुन सिंह बघेला वीरगति को प्राप्त हो गए और ये गढ़ा राज्य के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति थी।
3: निश्चित रूप से कि जिस सेना में हाथी सेना का बहुत, जिस युद्ध में बहुत ज्यादा महत्व हो, उसके जो फौजदार हैं जो हाथी सेना का संचालन ही कर रहे थे वो बहादुरी से लड़े और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये एक बड़ा सेटबैक था, ये अपूर्णीय क्षति थी गोंड सेना के लिए। वाकई श्रोताओं, पूजा जी ने हमें एक बहुत अहम जानकारी ये भी अपने पिछले अंकों में दी है कि एक बहुत बड़ा कारण हाथी भी थे गोंड राज्य पर कब्जा करने के लिए, जो अन्य शासक थे वो क्यों ललायत रहते थे। कहते हैं कि उस समय उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हाथी पाए जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छी और नई जानकारी निकल कर के आई है, क्योंकि हम आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ बहुत सारे हाथी आज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उस समय वो वन क्षेत्र कितना सघन रहा होगा और कितनी उपजाऊ वो भूमि रही होगी कि वहाँ पर हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जीव के लिए परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल रही होंगी। तो पूजा जी, जब अर्जुन सिंह बैस वीरगति को प्राप्त हुए तो युद्ध उसके बाद भी जारी रहा, क्या इस पूरी बात से गढ़ा सेना का जोश कुछ कम हुआ?
4: युद्ध अपने चरम पर था
3: जी।
4: दोनों ओर की सेनाएं जोर शोर से लड़ रही थीं
3: जी।
4: खूब तीर तलवार ढाले बर्छे सब चल रहे थे
3: जी।
4: कोई कमी नहीं थी। एक योद्धा के जाने से सेना रुक नहीं जाती,
3: बिल्कुल।
4: वो तो अपने बराबर जिस उद्देश्य को लेकर चली है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करती है
3: जी।
4: तो गढ़ा की सेना भी अपना पूरा दल बल के साथ में लगी हुई थी
3: जी।
4: युद्ध जारी था। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा
3: जी।
4: सूरज की रोशनी भी अब मद्धम हो चली थी
3: जी।
4: पर गड़ा की सेना का जोश कम नहीं हुआ था
3: जी।
4: लगातार तीर भाले तलवार की आवाजें गूंज रही थी। दोनों ओर से कई सौ सैनिक मारे जा चुके थे
3: जी।
4: फिर भी युद्ध तो अपनी गति पर था
3: जी। तो क्या जब शाम हो चुकी थी तो शाम के बाद भी, सूरज ढलने के बाद भी तब युद्ध होता था?
4: नहीं, जैसा कि पुराने युद्धों में नियम है
3: जी
4: कि शाम ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
3: जी।
4: आपने कभी ध्यान दिया हो तो भारतीय परंपरा में युद्ध जैसा कोई शब्द ही नहीं है।
3: अच्छा।
4: वास्तव में युद्ध एक अधूरा शब्द है, पूरा शब्द है युद्ध कला।
3: अच्छा।
4: युद्ध को भी एक कला के तौर पर देखा जाता है और कला में हमेशा नियम होते हैं।
3: नियम होते हैं
4: और सभी को उसका पालन करना होता है।
3: क्या बात है।
4: इसलिए युद्ध में जो नियम रख दिए जाते हैं कि जैसे कि शाम को नहीं युद्ध लड़ना है, सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
3: जी।
4: सूरज ढलने के बाद आपस में कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा, या युद्ध के समय किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा, ये सब सुनिश्चित होता है। इसीलिए हम बहुत सारे युद्धों में ऐसा देखते हैं कि जब भारतीय युद्ध लड़ते थे तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे
3: जी।
4: और उसके कारण कई बार हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी पराजय भी हमको झेलनी पड़ी
3: जी।
4: लेकिन नियमों पर अडिग रहे और कभी भी उन्होंने नियमों को नहीं तोड़ा
3: जी।
4: तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो अब युद्ध इस दिन का यानी 23 जून का
3: जी।
4: अब समाप्ति की ओर था
3: जी।
4: पर युद्ध बराबर तेजी से लड़ रहे थे, हालांकि काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे
3: जी।
4: गौंड सेनापति भी पूरी बहादुरी से अभी तक लड़ रहे थे
3: जी।
4: आखिर सूरज ढलने लगा और पहले गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की ओर धकेल दिया।
3: वाकई श्रोताओं, कितनी अद्भुत जानकारी है ये कि ये तो हमें पहली बार पता चला कि युद्ध कोई शब्द हमारे इतिहास में होता ही नहीं था। पूरा जो शब्द है वो है युद्ध कला। युद्ध को हम सब भारतीय कला के रूप में देखते थे और पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी और वास्तविक जानकारी दी कि कला में हमेशा नियम होते हैं, कला नियमों में बंधी रहती है तभी वो कला कहलाती है। और भारतीयता में ये बात कही गई कि सूरज ढलने के बाद युद्ध कला जारी नहीं रहेगी, हथियार रख दिए जाएंगे और जो लोग थोड़ी देर पहले तक सूरज की किरणों में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते थे वो वहां पर अपनी अपनी तलवारें अपने म्यान में डाल दिया करते थे। तो ये कितनी वाकई अद्भुत बात है युद्ध कला की।
4: तो इस दिन का युद्ध समाप्त होने को था, दोनों सेनाएं खूब जोर शोर से लड़ रही थी, लेकिन इस तरफ देख रहे थे कि सूरज ढलने को था
3: जी।
4: और बस गढ़ा की सेना ने कमाल दिखा दिया, मुगल सेना को पीछे धकेल ही दिया।
3: वाह।
4: नरे की घाटी से आसफ खां की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया और इस तरह आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची खुची सेना लेकर घाटी से वापस भाग गए और रानी दुर्गावती की विजय हुई।
3: तो पूजा जी, क्या जो विजय थी, जो 23 जून को जो विजय हुई, ये इसके पीछे रानी की कूटनीति का ही कमाल था? क्योंकि पहले तो दूसरी तरफ से आने वाली थी, फिर रास्ता बदला और उस तरफ से आई जहाँ के उस पूरे इलाके का उनको ज्ञान था। और जो ऊंची ऊंची जगहों पर आपने कहा कि हाथी जैसे जीव के ऊपर जब बैठ करके ऊपर से वार किया जाता है तो वो विरोधी के लिए मुश्किल होता है, तो फिर तो हाथी इनके पास भी थे। लेकिन रानी ने दक्षता विशेषज्ञता ये दिखाई कि वो घाटी में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उन्होंने अपने सैनिकों को और शूरवीरों को भेजा, तो क्या इस कूटनीति से उनको लाभ मिला?
4: प्रकृति की जानकारी होना गोंड जनजाति की विशेषता है
3: जी।
4: और यही विशेषता इस पल पर उनके काम आई। जब उनके पास एक बहुत छोटी सेना थी, आकस्मिक आक्रमण हुआ था, तो ये सब जानकारियां उनके लिए तो जैसे सकारात्मक ही थी
3: जी।
4: और रानी ने अपने पराक्रम से, अपने संकल्प से ये कर दिखाया कि इतनी छोटी सेना होते हुए भी उन्होंने एक विशाल सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
3: वाकई ये कमाल की बात है। और देखिए श्रोताओं, कितनी अद्भुत ये बात है कि यदि हमें अपने इलाकों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, ख़ास तौर से जब हम उस दौर की बात करें, राजाओं की बात करें, तो राजा सिर्फ अपने महल में बैठकर ही राजकाज नहीं किया करते थे। जब तक कि वो रानी दुर्गावती की तरह बाहर नहीं घूमते थे, अपने इलाके में नहीं जाते थे, तब तक उन्हें ये जानकारी हो ही नहीं सकती थी कि किस तरफ नदी है, कहाँ नदी का घाट है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी है और कहाँ आने जाने का रास्ता है। और यदि ये जानकारी रानी के पास नहीं होती तो निश्चित रूप से इस युद्ध में उनकी हार हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम सेना थी रानी दुर्गावती के पास। अदम्य साहस और शौर्य तो था ही, लेकिन बहुत सटीक जानकारी थी युद्ध कौशल होने के साथ साथ। फिर वहां उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, एक ओर मां नर्मदा का उन्हें आशीर्वाद मिला, दूसरी ओर घाटी थी, और फिर बाकी काम उन सभी लोगों की वीरता ने कर दिखाया। तो मैम, जैसे कि आपने ये कहा, आईना अकबरी में भी 23 जून और 24 जून की इस लड़ाई का उल्लेख मिलता है। 23 जून को तो विजय हो ही गई थी, और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो 24 जून की बात तो हम अपने अगले अंक में करेंगे, लेकिन क्या कोई और भी हमें साक्ष्य मिलता है जो इस युद्ध का उल्लेख करता हो?
4: जी हाँ, गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत प्रामाणिक स्रोत है, रामनगर मंडला में एक शिलालेख लगा है जिसमें गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी शिलालेख में रानी की विजय के बारे में भी एक श्लोक है।
3: वाह!
4: ये श्लोक संस्कृत में है और श्लोक इस प्रकार है कि अक्षय हीणनीय अमृत भूत लेन यातम रणे तेन महाभटेन बल विजित्या अपि समस्तम अस्य दुर्गावती भीम पराक्रमेण। यानी कि जिस महाभट्ट ने युद्ध में अक्षिणी सेना को अमृत की तरह भूमि पर प्रवाहित कर दिया और बल को जीतने के बाद भी उसकी दुर्गावती भीम पराक्रम से संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया, ऐसी दुर्गावती को प्रणाम।
3: वाह! तो मतलब और भी साक्ष्य मिलते हैं आईना अकबरी के अलावा भी। मध्य प्रदेश में ही मंडला में साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं कि उस लड़ाई के बारे में ये स्पष्ट वहां पर अभिलेखित है, वहां पर उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार पिछले कुछ एपिसोड से बनी हुई हैं हमारे कार्यक्रम में, और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं गोंड राजवंश के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में। आगे भी ये कहानी जारी रहेगी, आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुल इस युद्ध का 2 दिन का उल्लेख मिलता है। यदि तारीख की बात करें तो आज से 459 साल पहले की बात थी, 23 और 24 जून 1564 को ये युद्ध लड़ा गया। जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया कि पहले ही दिन रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और मुगल सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले अंक में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए देश के चैनल देश के लिए, रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। इतिहास के पन्नों से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय था रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय का था। जानकारी दे रही थी इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत कर रहे थे संदीप शर्मा। इसके साथ ही हमारा आज का इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम संपन्न होता है।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: खुलकर सोचे स्वच्छता अपनाओ, सबको स्वस्थ बनाओ, चलो चलो चलो चलो अपने हाथ धो ले।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज का विषय है दैव के स्वरूप का विवेचन और सत्कार्य की प्रेरणा। इस विषय पर जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी सुनीता सिंह।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन की राह में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके सामने मन ठिठक कर पूछता है, ये क्या था? हमारा कर्म, हमारी नियति या कुछ और? हम अक्सर उस शक्ति को जो हमारी समझ से परे है दैव कह देते हैं और फिर अपने प्रयासों को उसके सामने छोटा मान बैठते हैं। लेकिन योग वासिष्ठ दैव को केवल भाग्य की रेखा मानकर स्वीकार करने के बजाय उसके स्वरूप पर गहराई से विचार करता है। ये ग्रंथ हमें उस दृष्टि तक ले जाता है जहाँ दैव कोई ऐसा आदेश नहीं जिसके सामने मनुष्य विवश होकर बैठ जाए, बल्कि जीवन में हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे संकल्प और हमारी चेतना सब मिलकर उस दिशा का निर्माण करते हैं जिसे हम कभी कभी दैव का नाम दे देते हैं। और यहीं से जन्म लेती है सत्कर्म की प्रेरणा, क्योंकि यदि हमारे कर्म ही जीवन की धारा को दिशा देते हैं तो हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म को अधिक निर्मल, अधिक सार्थक और अधिक कल्याणकारी बनाने का उत्तरदायित्व भी हमारा ही है, उत्तरदायित्व भी हमारा ही है। तो आज योग संवाद में आइए योग वासिष्ठ के इसी गहन संदेश की ओर चलें कि दैव वास्तव में क्या है, उसका स्वरूप क्या है और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को किस प्रकार अधिक उज्जवल बना सकता है। आइए समझें कि दैव को जानने की यात्रा अंततः हमें कैसे अपने कर्मों को पहचानने तक ले जाती है, और ये भी कि सत्कर्म केवल जीवन को बदलने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग भी है। आज इस चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
4: नमस्कार।
3: पिछले अंक में बहुत ही रोचक चर्चा रही और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं कि हमने बात की थी पुरुषार्थ की और प्रारब्ध की, और कई बार पुरुषार्थ को देखकर कर्म करना मनुष्य बंद कर देता है। तो जब उद्योग का नाश होता है या कर्म से मनुष्य विरत होता है तो उसका परिणाम क्या होता है?
4: उसका परिणाम ये होता है कि वो फिर अपने पुरुषार्थ, जिसके द्वारा वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करता है, वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दैव के भरोसे बैठे रहने वाले लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं और आलस्य से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है।
3: तो
4: ऐसे में बार बार इस बात के लिए वशिष्ठ जी राम को प्रेरित कर रहे हैं कि राम, ये विभिन्न लोगों को जो देख करके आपके अंदर ये वैराग्य आया है कि ये कर्म से अपने अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो अभीष्ट है ये इनका प्रयत्न तो है, लेकिन जो पूर्व के जो कर्म हैं ये कर्म भी वर्तमान में आने वाले परिणामों में अपनी भूमिका, महती भूमिका निभाते हैं।
3: जी जी।
4: इसलिए कई बार हम लोग अच्छा करने के बाद भी उस कर्म के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं करते और कहते हैं कि शायद हमारे में कोई कमी रह गई। नहीं, ये भाव भी हमारे चित्त में न आए, क्योंकि हमारे अंदर अगर ये भाव भी आएगा तो फिर हम कर्म करने में जो कुशलता है वो बाधित होगी।
3: जी जी।
4: तो इससे वो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें पूर्व का जो कर्म जिसे प्रारब्ध कर्म कहा गया उसकी भी भूमिका हो सकती है या होती है। तो इसलिए आप फोकस किसी चीज पे होइए तो सिर्फ कर्म पर होइए। कर्म ही वो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आप कर्म फल को बदल सकते हैं। कर्म फल कभी भी नहीं बदलता बिना कर्म में परिवर्तन के। कहा भी जाता है कि जो आप आज कर रहे हैं, अगर वही आप कल भी करेंगे तो कल भी वही प्राप्त होगा जो आज प्राप्त हुआ है।
3: बहुत ही सुंदर बात, बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिणाम बदले, आप मनचाहा परिणाम पाएं, तो निश्चित ही आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिन कर्मों के द्वारा आप मनचाहे परिणाम की सिद्धि कर सकें।
3: बहुत ही सुंदर संदेश ये हो गया। देखिए कई बार होता है ना कि मनुष्य कहता है कि साल हो गए, बरस बीत गए, हमारा जीवन वैसा ही चल रहा है, जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। लेकिन देखने की जरूरत यह है कि आपके जीवन में परिवर्तन जो नहीं हो रहा है, आपके कर्मों में क्या परिवर्तन
4: क्या परिवर्तन हो। बिल्कुल,
3: अगर आपकी दिनचर्या में आपके कर्म में परिवर्तन होगा तभी फिर जीवन में परिवर्तन होगा।
4: जी,
3: तो ये बात वहां भी जाकर जुड़ती है।
4: एक सामान्य बात देखिए ना कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो हर आदमी अच्छे परिणाम का मतलब अपेक्षा लेके बैठा है, लेकिन जब उससे पूछो, उसी से पूछो कि जिस परिणाम की कामना आप करके बैठे

0: उसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, चाहे वो बॉडी कॉन्शियसनेस हो, चाहे माइंड कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हो, किसी भी प्रकार की जो चेतना है वो चेतना मूल रूप से साक्षी है। तो चेतना में पहले जैसे विषय की अनुभूति होती है वैसी ही वो चेष्टा करता है। चेतना में जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी वैसे ही वो चेष्टा करेगा।
1: अच्छा।
0: ये एक विज्ञान है आप देखें।
1: अच्छा।
0: तो अब मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है और शरीर की क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। यानी मन जैसा विचार करता है वैसा ही शरीर व्यवहार करता है। इसको महात्मा बुद्ध भी कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम हो जाते हो। तो ऐसे में आपको सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन लाना होगा विचार में। इसीलिए इस ग्रंथ में विचार का भी बहुत बड़ा महत्व है कि सद्विचार होने चाहिए। आप खुद ही जो कर्म कर रहे हैं और जिस परिणाम को आप पाना चाह रहे हैं इसको अगर आप शांतिपूर्वक विचार पूर्वक देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच भेद है। और वो भेद जब तक वो गैप भरेगा नहीं तब तक आपको पूर्णता की न प्राप्ति होगी, ना आप संतुष्ट हो पाएंगे, ना सुखी हो पाएंगे। जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो जीवन की विडंबना यही है, हमारी चाहना और हमारा कर्म इन दोनों के बीच का योग नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कभी दुख का भी वियोग नहीं होता, दुख बना होता है हमेशा।
1: जी, जी।
0: तो योग जो है वो दुख के संयोग का वियोग कराता है, गीता में भगवान ने कहा।
1: जी, जी।
0: और ये तभी होगा जब दुख का संयोग जिन कारणों यानी जिन कर्मों से हो रहा है उन कर्मों को परिवर्तित किया जाए, तो निश्चित ही परिणाम अपने आप बदल जाएगा। तो मन के अनुसार शरीर व्यवहार करता है और वही व्यवहार फल की सिद्धि का कारण बनता है। तो लोक में जहां जहां जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वहां वैसे वैसे पौरुष के उपयोग के द्वारा लौकिक वैदिक फल की भी सिद्धि होती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि जो साक्षी चेतना है उसमें जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी उसी तरह के विषय के अनुसार जो है मन में विचार आएगा और उसी विचार के अनुसार कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी। ऐसा कहा भी है इन्होंने कि मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वही तो पौरुष है। अब आप देखिए कि आपका पौरुष आपके पुरुषार्थ के नष्ट करने पर लगा है। पौरुष का मतलब यह भी है कि आप कहने संकल्प कर लें कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को नहीं करने में लगा दिया। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ कि आप जीवन में अच्छा चाहेंगे नहीं।
1: हाँ।
0: आप नहीं करेंगे ये संकल्प आपने ले लिया, लेकिन आपके जीवन में बुरा हो या आप नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जीवन में अच्छा हो, लेकिन मैं कुछ अच्छा न करूं ये नहीं संभव हो सकता। तो इसलिए बार बार यहाँ पर वशिष्ठ जी इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों को सजग कर रहे हैं
1: जी जी।
0: कि आप अपने प्रयत्न को करें। हाँ। और प्रयत्न के द्वारा जो है आप संसार में जो कामना चाहते हैं उसकी सिद्धि हो सकती है।
1: तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि जिस तरह का हमारा विचार होगा उसी तरह का हमारा कर्म भी हो जाएगा, इससे उसका परिणाम निर्धारित होगा।
0: महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य दैत्यराजों के गुरु बने हैं।
1: अच्छा।
0: तो बिना पुरुषार्थ के इस संसार में अगर कोई किसी प्रकार के फल की कामना करता है तो ये निहायत ही बेमानी होगी।
1: हाँ।
0: और ये कभी भी संभव नहीं है। आपको बिना पुरुषार्थ के आप चाहें कि मनचाहा परिणाम पालें ये संभव नहीं है।
1: अच्छा, ये बताएं कि संपूर्ण शास्त्रों का सारांश क्या है?
0: जी, संपूर्ण शास्त्रों का सारांश वो कह रहे हैं कि शास्त्रों के अभ्यास और गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न से जो है पुरुषार्थ की सिद्धि की जा सकती है और यही जो है संसार में समस्त शास्त्रों का सार संग्रह है कि कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए। यही सारे शास्त्र कह रहे हैं
1: जी
0: कि आपको हमेशा प्रयत्न शुभ कर्मों के प्रति यानी जो कर्म आपको शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करे
1: जी।
0: उस पर ध्यान देना है।
1: और
0: जहां जहां भटकाव की स्थिति है, जहां आपको लगता है कि ऐसा करके, और एक बात और देखिए कि अगर हम निरपेक्ष होकर के अपना आत्मन्वेषण करें
1: जी।
0: तो आपको लगेगा कि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता।
1: बिल्कुल, ये सच है।
0: लेकिन हम हमेशा दूसरों से अपनी पुष्टि चाहते हैं या दूसरे हमको नया नया चीज बताने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आदमी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जिसको गोस्वामी जी कहते भी है कि उपदेश कुशल बहुतेरे पर सिखवन के बुद्धि घनेरे। तो जितना भी आदमी के पास बुद्धि है वो सब वो दूसरों को ठीक करने में लगाने में लगा है। उस बुद्धि का तनिक भी उपयोग अपने को ठीक करने में,
1: अपने को ठीक करने में नहीं
0: लगाना चाहता। आप देखें जगत में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसकी लंबी लिस्ट लेके लोग बैठे हैं कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाए कि जो आप चाह रहे हैं उसमें आपका योगदान क्या है, तो शायद वो मौन हो जाएंगे।

0: उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के बदलाव हमेशा अपने आप से शुरू करने की आवश्यकता है, और एक बहुत बड़ी मूर्ता लोगों में है कि लोग सोचते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। सच ये है कि जब आप बदलते हैं तो दुनिया में बदलाव की संभावना होती है। जितने भी महापुरुषों की कहानी है वो कभी भी आप देखिए तो दुनिया में क्या हो रहा है इसको बदलने के लिए नहीं, सबसे पहले वो बदलाव उन्होंने खुद में किया है।
1: बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि अगर आप दुनिया को बदलने चले तो आप हमेशा परेशान रहेंगे क्योंकि वो संभव नहीं है
0: जी।
1: तो आपने बताया कि शास्त्रों का अभ्यास, गुरु का उपदेश और प्रयत्न, ये संपूर्ण शास्त्रों का सारांश है।
0: ये जो तीनों जब मिलेंगे तो आपके अंदर जो होगा अशुभ कर्म से आप अपने चित्त को हटाएंगे और शुभ कर्म में अपने चित्त को लगाएंगे, तो फिर ऐसे में परिणाम तो फिर शुभ होगा ही होगा। तो इसके लिए ये तीनों की जरूरत है। गुरु का मतलब यहाँ ये भी ध्यान रखें कि ऐसा गुरु जो शास्त्रों में जो ज्ञान है उस ज्ञान का वो सजीव रूप हो। इसीलिए देखिए गुरु के जो पदचिन्हों की पूजा हम करते हैं, गुरु चरण की बात हमेशा होती है, तो गुरु चरण का मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि आपके पदचिन्ह बता रहे हैं कि आप क्या हैं। तो जो ज्ञान हम दूसरों से सुन रहे हैं वही ज्ञान जब गुरु देता है तो वो ज्ञान हमारे जीवन में अंगीकार क्यों होता है? क्योंकि गुरु उस ज्ञान के अनुसार उसी पथ का अनुगामी होता है। गुरु ऐसा नहीं है कि ज्ञान उसका कुछ और है और कर्म कुछ और है, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अपन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि मेरे मन के दर्पण को गुरु के चरण धूल से साफ किया जाए। अब आप सोचिए कि आप दर्पण की धूल साफ करते हैं, वो कहते हैं कि गुरु के चरण की धूल से मन का दर्पण साफ करो। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु के चरण की धूल जो है वो पदचिन्हों की तरफ इशारा कर रही है कि गुरु जिस राह का अनुगामी है, जिस तरफ चल रहा है, क्योंकि वो सदचिंतन करता है, सदव्यवहार करता है। और संसार के लोग हो सकता है सद की बात करते हों, सदविचार तो करते हों लेकिन सदकर्म नहीं करते हों, तो गुरु सदकर्मी होता है, इसीलिए वो प्रेरक है। और अपने यहाँ तो वैदिक परंपरा में कहते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, क्योंकि बच्चे में देवत्व का जो विकास है वो माँ और पिता के द्वारा आएगा, और उसके बाद जिस आचार्य के पास जाता है उस आचार्य में भी देवत्व होना चाहिए, आचार्य देवो भव, तब वो दैवी गुणों से संपन्न होगा, और दैवी गुणों से संपन्न होकर के ही वो शुभ कर्म का कर्ता बनेगा। शुभ कर्म का कर्ता बनेगा तो शुभ फल की प्राप्ति भी करेगा, जीवन में संतोष भी होगा, शांति भी होगी। तो ऐसे में ये बात बताई गई, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? प्रयत्न तो करना ही होगा, क्योंकि दैवी और आसुरी संपदा ये हर मनुष्य में है। भगवान गीता में कहते हैं कि दो तरह की संपदाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो आपके अंदर पहले तो देवत्व का खुद विकास होना चाहिए। आप सामान्य जीवन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एक जीवन को जन्म दिया, अब वो जीवन किन पदचिन्हों पर चलेगा और उस पर चल करके सुरक्षित पल्लवित और पुष्पित होगा, वो पदचिन्ह तो आप ही के द्वारा निर्धारित करने।
1: और अक्सर मातृ देवो भव पितृ देवो भव को जिस अर्थ में लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि माँ जो है वो देव है, देव है, जबकि भव की बात,
0: भव की है, बनो
1: बनो
0: है, हो नहीं तुम,
1: वो है नहीं, बनने की
0: बात
1: है ना। तो ये भी एक संदेश है उसमें,
0: संदेश है जी
1: जी जी। अच्छा, तो आपने सत्कर्म सद्बुद्धि की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो सद्बुद्धि है वो विकसित कैसे होती है?
0: सद्बुद्धि विकसित होती है सदशास्त्रों और सत्संग के सेवन से, बिना इसके जो है आप सद्बुद्धि के साथ नहीं हो सकते, दुर्बुद्धि आपकी होगी, क्योंकि विषय जो है वो हमेशा आपके इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा। तो विषयानुगामी जो लोग हैं वो दुर्बुद्धि के शिकार होंगे, एन केन प्रकारेण उन विषयों की प्राप्ति में लग जाएंगे। सद्बुद्धि जो है आपको विवेक देगी, विवेक के द्वारा आप सद का चिंतन करेंगे और सत्संग कर पाएंगे। सत्संग का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि बैठ के सद चर्चा सुने, ये नहीं है। शब्द देखिए, शब्द ये कह रहा सत्संग, संग कि सत का संग करो, यानी सत के साथ आप रहो, सत व्यवहार में लाओ।
1: जी जी,
0: लेकिन हम लोग सत्संग सिर्फ वाणी मन वचन से करना चाहते हैं, कर्म से नहीं। जब तक सत कर्म में नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं होगा।
1: तो सत के साथ रही,
0: सत के साथ रही,
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है इसमें श्री राम के मन में बहुत से प्रश्न थे जो उन्होंने अपने गुरु के समक्ष रखे और जिसका निराकरण वो कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने भी श्री राम के सम्मुख कुछ प्रश्न रखे हैं, इस पर अगर चर्चा हो तो।
0: अच्छा, बिल्कुल
1: जी।
0: वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि श्री राम बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर पराक्रमी बुद्धिमान और पंडित हैं वे किस दैव की प्रतीक्षा करते हैं? कितना सुंदर सवाल। जैसे अगर ये कहें कि हम आज भी अगर ये सवाल बच्चों से कहें कि आप जिन भी सलाका लोगों को जानते हैं, सलाका पुरुषों को जानते हैं, वो क्या दैववश हैं? आप देखिए प्रेत प्रसंगों में कैसे कैसे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी आपदाएं आती हैं कि लगता है जीवन यहीं समाप्त हो गया, लेकिन वहां उस जगह पर वो ऐसा संकल्प लेते हैं कि पूरी दुनिया उनको देखने की तरफ उत्सुक हो जाती है
1: जी जी।
0: और वहां पर वो इतिहास रच देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मन का संकल्प और आपका प्रयत्न पूरा परिणाम बदल देने, यानी पूरी आपकी जो कह सकते हैं जो आपने अर्जित किया है, चाहे प्रारब्धवश और चाहे अपने प्रयत्न से, वो पूरा परिणाम बदल देने का सामर्थ्य रखता है आपके सदसंकल्प और सदकर्म के द्वारा
1: जी।
0: तो ऐसे में वो कहते हैं कि बताओ कौन दैव की प्रतीक्षा किए हैं? इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष के प्रभाव से ब्रह्मणत्व प्राप्त किया। जो विश्वामित्र आपको लेने आए हैं, ये अपने पौरुष से जो ब्रह्मऋषि बने हैं, राजर्षि से ब्रह्मऋषि का इन्होंने यात्रा की है, ये पौरुष का परिणाम है और किसी साधन से नहीं मिला है इनको। अब ये दैव के भरोसे बैठ जाते तो ये सिद्ध होता क्या?
1: नहीं होता।
0: तो कहते हैं राम जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी देव पुरुष जो पराक्रमी है, बुद्धिमान है, पंडित है, वो दैव की प्रतीक्षा में रह करके अपने उन गुणों को विकसित किया है। वो जो कुछ भी किया है वो प्रयत्न से सिद्ध किया है, यानी क्रियमाण जो आपका वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ से उसकी सिद्धि हुई है, इसलिए पुरुषार्थ ही करने योग्य है। और दैव का जो है सहारा लेना, मैं समझता हूं कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है, दैव भी पूर्व का पुरुषार्थ है, न कि कोई ऐसी घटना जो अनायास घटी है।
1: अनायास घटी है, बिल्कुल। तो वशिष्ठ जी ने ये प्रश्न श्री राम के समक्ष रखा और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी के समक्ष श्री राम ने एक जिज्ञासा रखी कि दैव क्या है, हाँ?
0: जी जी।
1: जो लोक में प्रचलित है, तो इसे समझाइए कि वशिष्ठ जी ने कहा क्या।
0: श्री राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह दैव क्या है, किसे कहते हैं दैव? ये राम जी कहते हैं क्योंकि लोक में तो राम जी भी देख रहे हैं ना कि दैव भरोसे लोग बैठे हुए हैं। और आपने सुना होगा रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा, जब विनय कर रहे हैं राम जी, तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि ये लोक प्रचलन में तो है, तो इसको बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, अवश्यंभावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ अशुभ भोग है उसी को दैव शब्द कहा जाता है। अब देखिए कितना सुंदर कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा किए हुए कर्म का जो फल भोग है, चाहे वो शुभ हो
1: चाहे वो अशुभ हो,
0: तो ऐसे में वो किसका परिणाम है? वो कर्म का परिणाम है, लेकिन उस फल को लोगों ने दैव नाम दे दिया। तो हम लोगों ने कर्म फल को दैव नाम दे दिया, जबकि कर्म फल कर्म के अधीन है, दैवाधीन कर्म नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कर्म के अधीन जो फल है उसको हम दैव कहते हैं, ये वशिष्ठ जी कहते हैं, उसी को दैव कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है उसी को दैव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यंभावी फल है वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित होता है।
1: जी जी, तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या उन्होंने की। और देखिए कर्म की इतनी बात हुई कि कर्म से ही सारे समाधान है, तो मन में एक सहज प्रश्न आता है कि मनुष्य के कर्म का निर्धारण कौन करता है?
0: क्या बात है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मनुष्य के मन में जो पहले से अनेक प्रकार की वासनाएं थीं, वे ही इस समय कायिक वाचिक और कर्म रूप में परिणत हुई हैं। मन की जो वासनाएं हैं वही आपके शरीर के कर्मों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, और शरीर में जो आपकी स्थिति है वो उस रूप में वो परिणत होती हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र ही वैसा कर्म करता है। अब आप देखिए किसी व्यक्ति के कर्म से उसके मतलब चित्त की वासना या उसके मन की वासना को भी आप आसानी से जान सकते हैं। वो कोई और कर्म कर ही नहीं सकता जो उसके मन की वासना से अलग हो।
1: बिल्कुल।
0: अब यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा घोष है ये कि मन में जो वासनाएं होती हैं, शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जन्म मरण का जो चक्र है वो भी मन की वासनाओं की वजह से है, तृष्णा की वजह से है कि मन में तृष्णा रह जाती है, इस नाते उस भोग के लिए फिर आपको एक शरीर धारण करना पड़ता है। अगर तृष्णा शांत कर दी जाए तो फिर जन्म मरण का जो भवरोग जिसको आप पूछा था तो वो भवरोग से मुक्ति मिल जाएगी। भवरोग जन्म और मरण ही है मूल रूप से देखें।
1: जी,
0: तो।
1: जी जी
0: जी।
1: अच्छा, मन की बात इतनी हुई तो ये बताएं कि मन की कितनी संज्ञाएं हैं, कितने नाम हैं?
0: वशिष्ठ जी कहते हैं मन को विभिन्न नामों से या विभिन्न संज्ञाओं के द्वारा कहा गया है। मन को चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की ही संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है।
1: चित्त वासना
0: कर्म, दैव और निश्चय ये सब मन की ही संज्ञाएं हैं जिसको व्यक्ति कठिनता से समझता है, लेकिन है ये सत्पुरुष कहते हैं ये सब मन के ही विभिन्न नाम हैं, क्योंकि ये सब मन में ही उत्पन्न होते हैं। निश्चय भी आप मन से करते हैं
1: जी जी।
0: कर्म भी बिना मन के नहीं होता। दैव जो कह रहे हैं आप फल, वो फल भी किसी कर्म का ही परिणाम है, तो वो भी मन का ही हिस्सा है।
1: हाँ।
0: चित्त में जो साक्षी चेतना है, उस चेतना में जो विषय का चिंतन होता है, उसी विषय के अनुसार मन विचार करता
1: जी
0: है
1: जी।
0: और उस विचार के अनुसार शरीर कर्म करता है। तो ऐसे में मन और शरीर का दोनों का गहरा संबंध है, तो शरीर के द्वारा जो कर्म होता है या चित्त में जो वासनाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं मन की ही संज्ञाएं हैं, उसको एक रूप में मन का नाम दिया जा सकता है।
1: अच्छा, अभी हमने बात की कि कर्म का निर्धारण वासना से होता है, तो वासना का बहाव किस तरह से होता है?
0: वशिष्ठ जी राम से कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा शुभ कर्म की तरफ लगाए और अशुभ मार्ग से हटाए। तो वासना का जो बहाव है वो देखें तो वो शुभ और अशुभ, इसलिए देख सकते हैं वासनाएं दो प्रकार की मानी गई हैं, शुभ वासना और अशुभ वासना। अब ये दोनों किसी न किसी फल की वासना में हमेशा फल की कामना होगी, क्योंकि फल तो रहेगा ही, तभी तो शुभ कर्म करके आप शुभ वासना की पूर्ति करेंगे और अशुभ कर्म करने लगे तो अशुभ वासना की पूर्ति होगी। तो ऐसे में जो ये दोनों बहाव है, वासनाएं इसी रूप में बहती हैं, शुभ और अशुभ नदी जैसे बहाव है, दो पार्ट हैं उसके। ठीक है,
1: और जिस वासना के हम अधीन हुए उस तरह का हमारा कर्म हो जाता है
0: या उस तरह का कर्म करके हम उस फल को प्राप्त करते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे में जो विवेकवान लोग हैं उनको अशुभ मार्ग से, यानी जो अशुभ वासना की तरफ आपका चित्त बह रहा है, वहां से हटा करके शुभ मार्ग में उसको लगाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न कर। और ये होगा कैसे? प्रयत्न से होगा, प्रयत्न पूर्वक, यानी पुरुषार्थ के द्वारा ये सिद्ध होगा। आप सोचें कि अपने आप हो जाएगा, दैव भरोसे बैठने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप पुरुषोचित कर्म करेंगे तब जाकर के इसकी सिद्धि होगी।
1: अच्छा, इसमें चित्त के विषय में भी चर्चा है आगे, तो मैं चाहती हूँ ये बताएं आप कि मनुष्य का चित्त कैसा होता है, क्या बताया गया है?
0: वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। जैसे आप बच्चों को देखते हैं ना, बच्चे कैसे खेलते रहते हैं, क्षण भर में वही खिलौना फेंक देंगे, फिर दूसरे की मांग करेंगे, मतलब कहीं चित्त में स्थिरता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का चित्त है वो शिशु के समान चंचल है, उसे अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में जाता है। इसलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य मार्ग में लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मन शांत बैठेगा। एक संत है वो कहते भी हैं कि शांति जो है, शांत अमन की अवस्था है
1: जी।
0: मन की अवस्था नहीं है, मन तो हमेशा प्रवाह में होगा।
1: बिल्कुल।
0: वासना की जो नदी है, जो शुभ और अशुभ वासना की नदी जो प्रवाहित है, ऐसे ही उस प्रवाह के साथ मन प्रवाहित है। तो मन को जब शुभ मार्ग में आप लगाएंगे तो वो अशुभ मार्ग का त्याग कर देगा, और जब अशुभ मार्ग में रहेगा तो शुभ मार्ग अपने आप छूट जाएगा। तो ऐसे में मन जो है हमेशा प्रवाह में रहेगा।
1: तो एक तरह से बच्चों की तरह उसकी प्रकृति है, और उसको उस तरह से हमें समझना चाहिए। तो शशिकांत जी, आज बहुत ही अच्छी चर्चा रही, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और इतनी सुंदर व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की दैव के स्वरूप का विवेचन और सत्कर्म की प्रेरणा विषय पर। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज का विषय था दैव के स्वरूप का विवेचन और सत्कार्य की प्रेरणा। इस विषय पर जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से हमारे सहयोगी सुनीता सिंह की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी ओमियो दास गुप्ता के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह।
2: मैं हूं आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और गांधीवादी विचारक लोकनायक ओमियो कुमार दास की। श्रोताओं, आज हम उस महान आत्मा को जानने समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का, एक ऐसे महापुरुष जो केवल असम के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं।
2: लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन साधारण नहीं बल्कि असाधारण त्याग, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत गाथा है। वे एक ऐसे युग के साक्षी और निर्माता थे जब भारत की आजादी के लिए हर घर से दीप जल रहे थे, हर सीने में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। उस महान स्वतंत्रता संग्राम में ओमियो कुमार दास जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उनके योगदान को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: श्रोताओं, ओमियो कुमार दास, जिन्हें लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, समाज सेवी, गांधीवादी विचारक, शिक्षाविद और असम के प्रमुख राजनेता थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: ओमियो कुमार दास का जन्म 21 मई 1895 को असम के नागांव जिले में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कारों से युक्त किया। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना और समाज सेवा की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तेजपुर हाई स्कूल में हुई। तेजपुर, जो असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, वहां की शैक्षणिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल के दिनों से ही वे मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे।
1: प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ओमियो कुमार दास ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज असम का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुई। यहां उनका संपर्क विभिन्न राष्ट्रवादी विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से हुआ। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। कलकत्ता उस समय भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यहां उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। इन महान नेताओं के विचारों और कार्यों ने युवा ओमियो कुमार दास को गहराई से प्रभावित किया।
2: कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वे छात्र संगठनों से जुड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब ओमियो कुमार दास ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे गांधी जी के आदर्शों, सत्य, अहिंसा और स्वराज से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने असम में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
1: युवा ओमियो कुमार दास ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छात्रों और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उनके प्रभावशाली भाषणों और निष्ठा ने कई युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ओमियो कुमार दास इसके असम में प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया और नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की।
2: इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जेल की कठोर परिस्थितियां भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकी। जेल में रहते हुए भी वे अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनकी निष्ठा बनाए रखते रहे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था। ओमियो कुमार दास ने असम में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो ओमियो कुमार दास ने इसे पूरी तरह से अपना लिया।
1: इस आंदोलन के दौरान गोपीनाथ बारडोली और सिद्धिनाथ शर्मा जैसे नेताओं के साथ ओमियो कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें असम के विभिन्न जेलों में कैद किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया। पूरे असम में लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओमियो कुमार दास को अनेक बार कारावास में डाला गया। उन्होंने कुल मिलाकर कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उनकी अटूट देशभक्ति और निरंतर संघर्ष ने उन्हें असम के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया।
2: ओमियो कुमार दास की योग्यता और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। ये उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1945 में उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया, जहां उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद ओमियो कुमार दास ने अपने राजनीतिक कार्य को जारी रखा। उन्होंने ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीता। इन वर्षों के दौरान उन्होंने असम सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया।
1: जब ओमियो कुमार दास असम के श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। असम में चाय उद्योग एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ था, लेकिन चाय बागान के मजदूर अत्यंत शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते थे। ओमियो कुमार दास ने चाय बागान मजदूरों के लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। ये पहल एशिया में अपनी तरह की पहली योजनाओं में से एक थी। इस योजना ने हजारों मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: उन्होंने मजदूर वर्ग को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। शिक्षा मंत्री के रूप में ओमियो कुमार दास ने असम में बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना था।
1: उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। ओमियो कुमार दास ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि असम के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उचित आपूर्ति हो। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
2: ओमियो कुमार दास केवल एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। ओमियो कुमार दास की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसका असमिया भाषा में अनुवाद था। उन्होंने इसे मोर सत्य अनेश्वर काहिनी शीर्षक से अनुवादित किया।
1: ये अनुवाद असम के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उन्हें गांधी जी के जीवन और विचारों को उनकी अपनी भाषा में समझने का अवसर दिया। इस अनुवाद ने असम में गांधीवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास ने महात्मा गांधी पर कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं। गांधी जीर जीवनी अर्थात गांधी जी की जीवनी, ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी आमी किदोर बुजिलू अर्थात महात्मा गांधी को मैंने कैसे समझा, इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।
2: असमोत महात्मा, असम में महात्मा, ये पुस्तक महात्मा गांधी की असम यात्रा और असम में उनके प्रभाव पर केंद्रित है। इन पुस्तकों ने असम के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास की लेखनी सरल और प्रभावी थी, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। ओमियो कुमार दास का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक समर्पित समाज सेवी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया।
1: ओमियो कुमार दास कई गांधीवादी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। ओमियो कुमार दास ने इस संगठन के माध्यम से असम में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से भी वो जुड़े थे। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके साथ ही भारत सेवक समाज से भी उनका संबंध था। ये संगठन समाज सेवा के लिए समर्पित था और ओमियो कुमार दास इसके सक्रिय सदस्य थे।
2: गांधी स्मारक निधि, ये संगठन महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। ओमियो कुमार दास इससे सक्रिय रूप से जुड़े थे। कस्तूरबा स्मारक निधि, ये संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता था। असम सेवा समिति, ये असम का एक प्रमुख समाज सेवी संगठन था जिसके संस्थापकों में ओमियो कुमार दास भी थे। ओमियो कुमार दास ने असम में नशा विरोधी अभियान चलाया। उस समय असम में विशेष रूप से चाय बागानों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन एक बड़ी समस्या था। उन्होंने लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाए।
1: ओमियो कुमार दास ने कुष्ठ रोग और तपेदिक से पीड़ित रोगियों के पुनर्वास के लिए भी कार्य। उस समय ये रोग एक बड़ी सामाजिक समस्या थे और इन रोगों से पीड़ित लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ओमियो कुमार दास ने इन रोगियों के लिए उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया। ओमियो कुमार दास एक सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। वे सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें लोक नायक कहकर पुकारा करते थे।
2: उनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित करने में सक्षम थे। उनकी वाणी में जादू था। जब वे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। ओमियो कुमार दास एक निडर व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका नेवर से डाई, कभी हार ना मानने वाला दृष्टिकोण उनके चरित्र का एक प्रमुख पहलू था।
1: श्रोताओं, वो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति भी थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका थी। दोनों ने मिलकर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य किए। उनकी बेटी ने भी पिता के आदर्शों का अनुसरण किया। ओमियो कुमार दास के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1963 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के समर्पित कार्य के लिए दिया गया था।
2: भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने 15 मई 1998 को ओमियो कुमार दास के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये सम्मान उनके महान योगदान की स्वीकृति थी। 1995 में ओमियो कुमार दास की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुवाहाटी में ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ये संस्थान सामाजिक शोध और विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। ढेकियाजुली में एक कॉलेज को लोकनायक ओमियो कुमार दास कॉलेज के नाम से नामित किया गया है। ये कॉलेज उनकी स्मृति में स्थापित किया गया है और असम में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
1: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 79-80 वर्ष थी। उनके निधन से असम और पूरे भारत ने एक महान नेता और समाज सेवी को खो दिया। उनकी मृत्यु पर असम में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के समय उनकी पत्नी पुष्पलता दास और उनकी बेटी जीवित थीं। पुष्पलता दास स्वयं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य थीं। उनका निधन सन 2003 में हुआ।
2: ओमियो कुमार दास की विरासत आज भी असम में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चाय बागान मजदूरों के लिए उनके द्वारा स्थापित भविष्य निधि योजना आज भी लाखों मजदूरों को लाभान्वित कर रही है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा किया गया गांधी की आत्मकथा का अनुवाद आज भी असम में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये पुस्तकें नई पीढ़ियों को गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचित कराती हैं।
1: ओमियो कुमार दास ने असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई संस्थान स्थापित किए और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। असम की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने चाय बागान मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उनकी पहल से चाय बागान मजदूरों को न केवल बेहतर वेतन मिला बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई।
2: उन्होंने असम की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी विरासत को समझा और सभी समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने चाय बागान मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। ओमियो कुमार दास ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने कृषि सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता की जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज ही विकसित समाज हो सकता है।
1: ओमियो कुमार दास के जीवन का केंद्र गांधीवादी विचारधारा थी। उन्होंने महात्मा गांधी के 3 प्रमुख सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और सर्वोदय को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। सत्य उनके जीवन का आधार था। वे हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र की पहचान थी।
2: ओमियो कुमार दास अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उन्होंने हमेशा अहिंसक तरीकों को अपनाया। वे मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे किसी एक वर्ग या समुदाय के विकास में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना था। उन्होंने अपने जीवन में इस आदर्श को साकार करने का प्रयास किया।
1: गांधी जी की तरह ओमियो कुमार दास भी खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल समर्थक थे। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे और लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने असम में खादी उद्योग के विकास के लिए भी प्रयास किया। ओमियो कुमार दास महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास स्वयं एक सशक्त महिला थीं, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। ओमियो कुमार दास ने महिलाओं को शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
2: उन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करने में सहायता की। ओमियो कुमार दास का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने अपने जीवन में इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया।
1: ओमियो कुमार दास युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ओमियो कुमार दास ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
2: ओमियो कुमार दास अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे, चाहे जेल की यातनाएं सहनी पड़ी या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रसार के अथक प्रयास किए। युवाओं को उनसे ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही जीवन में सफलता की कुंजी है।
1: ओमियो कुमार दास ने सभी वर्गों और समुदायों के बीच समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। युवाओं को उनसे सामाजिक सद्भाव और एकता का पाठ मिलता है। ओमियो कुमार दास के जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में कठोर यातनाएं भी दी गईं। लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत किया।
2: स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण ओमियो कुमार दास को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय समाज में ये प्रथाएं गहराई से जड़े जमाई हुई थीं। उन्हें इन रूढ़ियों को तोड़ने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल रहे।
1: ओमियो कुमार दास के समकालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे। महात्मा गांधी उनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से भी भेंट की और उनके मार्गदर्शन में काम किया। गांधी जी भी ओमियो कुमार दास के समर्पण और कार्य से प्रभावित थे। स्वतंत्र भारत में ओमियो कुमार दास का संबंध कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन नेताओं के साथ काम किया।
2: असम के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोपीनाथ बारडोली, तरुण राम फूकन और अन्य के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर असम में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। लोकनायक ओमियो कुमार दास का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक, प्रभावी लेखक और समर्पित समाज सेवी भी थे।
1: उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाया और इस प्रकार एक आदर्श जीवन जिया। आज भी असम और पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। लोकनायक अर्थात जनता के नायक, जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: ओमियो कुमार दास की जीवनी युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग में है, सेवा में है, निस्वार्थ भाव में है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से पूरे समाज को बदल सकता है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के मार्ग पर चलकर ही मानवता का वास्तविक विकास संभव है। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम भारत विभूति में हमने ढेर सारी बातें की लोक नायक ओमियो कुमार दास जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
1: और मैं थी आपके साथ सुनीता सिंह।
2: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: भारत विभूति, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वाधीनता संग्राम सेनानी ओमियो कुमार दास के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूँ भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोपाल में आयोजित रंग फुलकारी नाट्य महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं अध्ययन भवन में, जहां रंग फुलकारी नाट्य महोत्सव के तहत मंचन हुआ नाटक सावित्री बाई फूले का।
1: इसलिए हम औरतों से कह सकते हैं, औरतों बाहर आ जाओ और पढ़ना लिखना सीखो।
0: इस नाटक में एकल अभिनय और निर्देशन किया रेणुका बर्मैया ने।
1: ऐसे ही हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। अब तो सुगना ताई और मेरे बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी कि सबसे पहले कौन अच्छे से पाठ याद करेगा और सही तरीके से याद करेगा।
0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए अध्ययन भवन में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।
2: इसे कहते हैं आ।

सीखना सीखो। क्यों सीखें? क्यों सीखें और किस लिए सीखें? अरे ईश्वर ने जो तुम्हें जिंदगी दी है उसे वैसे ही क्यों नहीं जी लेते हैं आप? पिताजी, इंसान के लिए न्याय ही श्रेष्ठ है। ये कार्य मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर तुम दोनों ने पाठशाला नहीं छोड़ी तो घर छोड़ दो। सावित्री, सामान बांध लो, हम अभी जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? ये घर परिवार, ये सुख संपत्ति, ये सुख सुविधा छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? अगर ये सब छोड़ कर गए तो लोग हमसे मुंह मोड़ लेंगे, कोई हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई हमसे बात नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। पिताजी देखिए, धैर्य से काम लीजिए, ऐसा निर्णय मत लीजिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, तुम्हें पाठशाला छोड़नी ही होगी। पिताजी पिताजी, समाज की एकता कम लोगों के अशिक्षित रहने से और ज्यादा लोगों के शिक्षित होने से नहीं टूटती। सावित्री, सामान बांध लो।

बिस्तर पर पड़े पड़े समाज सेवा करते रहे, सलाह देते रहे, मदद करते रहे, यहां तक कि मौत से सामना करने की हिम्मत भी उन्होंने ही दी थी मुझे। पढ़ाने लिखाने से लेके सफल इंसान बनाने तक

होना होगा। ये हाथ सबल बनने ही चाहिए। आपकी वजह से ही तो मैं आज सफल इंसान हूँ ज्योतिबा। जाले के पीछे से देखते हुए दिखाई देते हैं आप। मैं आपके सारे कार्य करूंगी। हाँ, आप जैसा चाहते थे ना, जैसा कहते थे, मैं समस्त कार्य करूंगी आपके।

रेडियो रिपोर्ट कार्यक्रम में आज आपने सुना भोपाल में आयोजित रंग फुलकारी नाट्य महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नवे 90.8 मेगा हर्ट्ज पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आइए सुनते हैं विगत दिनों भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी। राजधानी के प्रकाश तरणताल में आयोजित 4 दिवसीय CBSE नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के पहले दिन शिशु कुंज स्कूल इंदौर के तैराकों का दबदबा रहा। पहले दिन दांव पर लगे 12 स्वर्ण पदकों में से उन्होंने 3 पदक जीते। प्रतियोगिता में गल्फ देशों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों और शहरों से 1000 से अधिक तैराक हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के शिरडी में CBSE नेशनल रोप स्किपिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्कूल भेल की बालिकाओं की टीम ने ग्रुप फ्री स्टाइल इवेंट में रजत पदक जीता। 70वीं राज्य स्तरीय शालेय बॉक्सिंग खेल स्पर्धा में मॉडल स्कूल की छात्रा अक्षरा यादव का चयन भोपाल संभाग की टीम के लिए हुआ है। अभी आप सुन रहे थे विगत दिवस भोपाल में आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक समाचारों की जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: खुलकर

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद। इस कार्यक्रम में आज हम उर्दू के शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में। आजाद हिंद में अभी तक हमने आपको सुनाए क्रांति कथाएं, शौर्य गाथाएं, महापुरुषों की जीवनियां, उनसे जुड़े प्रेरक प्रसंग, आजादी के मुकदमे, संस्मरण और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत। आइए इसी तारतम्य में आज बात करते हैं उर्दू साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले मिर्जा गालिब जी की।
1: श्रोताओं, उर्दू साहित्य के एक पारखी ने एक जगह लिखा है कि मुगल साम्राज्य ने हमें तीन चीजें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब। मिर्जा गालिब उर्दू के बहुत ही विख्यात कवि हुए हैं, केवल उर्दू के ही नहीं फारसी के भी। उनका पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेखां गालिब था। उनके दादा कौकान बेखां शाह आलम के जमाने में समरकंद से हिंदुस्तान आए थे। आगरा में 1797 में मिर्जा गालिब का जन्म हुआ।
0: गालिब अभी छोटे ही थे कि उनके पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेखां का देहांत हो गया। उनके चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेखां ने उनका पालन पोषण किया। मिर्जा गालिब केवल 8 ही बरस के थे जब उनके चाचा का भी देहांत हो गया। लोहारू के नवाब अहमद बख्श खां ने लॉर्ड लेक से सिफारिश की और वहाँ से पेंशन का इंतजाम किया। वो पेंशन मिर्जा नसरुल्ला बेग खां के संबंधियों के लिए थी। 5,000 रुपए वार्षिक पेंशन में से मिर्जा गालिब का केवल 750 रुपए सालाना था। वैसे उस जमाने के हिसाब से ये अच्छी खासी रकम थी।
1: गालिब ने आगरा के मौलवी मोहम्मद मुअज्जम और एक ईरानी मुल्ला अब्दुल रस्मत से फारसी पढ़ी, परंतु उन उस्तादों से ज्यादा जिस चीज ने गालिब पर असर किया वो था उनका वातावरण। इनका बचपन आगरा के जिस मोहल्ले में गुजरा वो गुलाब खाना कहलाता था। उस जमाने में वो गोया फारसी जबान का केंद्र था, और यहीं से मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब एक शायर बनने की तरफ बढ़ चले।

लगजिश ना खाऊं जिस्म पे आफत हजार हो, खिदमत में कौम की मेरा ये सर निसार हो, ये सर निसार हो।

इज्जत की ख्वाहिश दिल में ना जिनहार हो मुझे, चढ़ जाऊं वतन के लिए गरदार हो मुझे, गरदार हो मुझे।

हाकिम की क्या लिखने से जब कलम बंद हो, इजहार हो मेरा यही आजाद हिंद हो, आजाद हिंद हो।

0: 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई इलाही बख्श खां मारूफ की 11 साल की सुपुत्री उमराव बेगम से हो गई। उन दिनों शादियां छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। गालिब जब तक आगरा में रहे उन्हें खर्च की कोई तंगी नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि रुपए पैसे की बहुतायत ही थी। दिल्ली में जब वो आए तो वो 750 रुपए की पेंशन उनकी जान का रोग बन गई। कभी बंद हो गई और कभी मिलने लगी। उस पेंशन से गालिब का गुजारा भी मुश्किल से ही होता था। गालिब ये भी समझते थे कि पेंशन नियत करने के बारे में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय हासिल करने के लिए वे कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता पहुंचकर उन्हें पेंशन के मामले में सफलता तो मिली नहीं, लेकिन वहां के साहित्यिक लोगों से झगड़े जरूर मोल ले लिए। उनमें से मिर्जा कतील और उनके शिष्यों से उनके झगड़े बहुत मशहूर हैं।
1: गालिब की पेंशन का मुकदमा करीब 16 साल तक चलता रहा। इस पर उनका हजारों रुपया उठ गया, जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने महाजनों से ब्याज पर कर्ज लिया था। बदकिस्मती से मुकदमे का फैसला उनके खिलाफ हो गया और उनकी बाकी उम्र इस कर्ज को चुकाने में कट गई। गालिब बड़े स्वाभिमानी थे। केवल एक उदाहरण से इस बात का पता चल जाएगा। एक बार मिर्जा गालिब को दिल्ली कॉलेज में फारसी के मुख्य अध्यापक का पद पेश किया गया, परंतु उन्होंने अपने स्वाभिमान के कारण उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर टॉमसन कॉलेज को देखने आए तो उन्होंने मिर्जा गालिब को बुलवा भेजा। अगले दिन वो पालकी पर सवार होकर बंगले पहुंचे और दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि अभी कोई स्वागत करने को आएगा। जब किसी ने आकर उनसे कहा कि हजरत तशरीफ लाइए, तो गालिब ने कहा, साहब कोई लेने आए तो उतरूं?
0: ये सुनकर मिस्टर टॉमसन स्वयं बाहर निकल आए और कहने लगे, चूंकि आप रस्मि मुलाकात के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए आए हैं, इसलिए कोई पेशवाई को कैसे हाजिर होता? मिर्जा बोले, नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ कि इससे मेरा सम्मान बढ़े, न कि जो पहले से है उसमें भी कमी आ जाए। इतना कहकर मिर्जा ने पालकी के कहारों को हुक्म दिया कि वापस चलो।
1: मिर्जा गालिब 4 जुलाई 1850 को बादशाह जफर के दरबार में पेश हुए। बादशाह ने नज़्मुद्दौला दरीबु मुल्क निजाम जंग कहकर खिताब दिया। 50 रुपए माहवार वेतन मुकर्रर हुआ। गालिब की जरूरतों के सामने इन 50 रुपयों की हस्ती ही क्या थी, और इस पर वे भी मिले 6-6 महीनों में।

0: सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद किले की ये मुलाजमत भी जाती रही। रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां मिर्जा गालिब के प्रसिद्ध शिष्यों में से थे। उन्होंने 1859 में मिर्जा की 100 रुपए महीना तनख्वाह नियत कर दी थी। इस पर भी उनकी आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हुई।
1: मिर्जा खुद एक रईस खानदान के थे, रईसों से रिश्तेदारी और याराना था, बादशाहों और नवाबों के उस्ताद थे, इसलिए रख रखाव की आदत इनका स्वभाव बन गई थी। वो घर पर दिल्ली के बड़े लोगों की तरह पजामा और खुली अस्तीन का कुर्ता या अंगरखा पहनते थे। सिर पर आम तौर पर मलमल की खुली हल्की टोपी होती, जिस पर कामदानी या कसीदे का काम होता। जाड़ों में सर्दियों से बचने के लिए किसी गर्म कपड़े का कलीदार पजामा और मिर्जई पहनते। बाहर निकलते तो तंग मोरी का आड़ा पजामा, कुर्ता और उस पर सदरी, ऊपर किसी भारी और कीमती कपड़े का चोगा और उस पर एक जामा, पांव में घेतली जूती और हाथ में मूठदार लंबी लकड़ी, जिस पर उनका नाम असदुल्ला अल गालिब खुदा हुआ था।
0: मिर्जा गालिब ने अपने दोस्तों, शागिर्दों और संबंधियों को जो अमूल्य पत्र गद्य में लिखे हैं, उनके संग्रह उर्दू ए मुअल्ला, उदे हिंदी और मकातीब ए गालिब के नाम से छप चुके हैं। उनकी उर्दू कविताओं का संग्रह दीवान ए गालिब के नाम से सर्वविख्यात है। हास्य रस उनकी घुट्टी में पड़ा था। उनकी कोई बात लतीफे और चुटकुले से खाली नहीं होती थी। गालिब की कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने पुरानी डगर को छोड़कर नए रास्ते को ग्रहण किया। उनकी गजलें अब भी लोगों को जुबानी याद हैं। उनमें मनोविज्ञान, आदमी की मानसिक वृत्तियों का उतार चढ़ाव, ईश्वर और प्रेमिका से छेड़छाड़ और हास्य रस के अमूल्य उदाहरण मिलते हैं।
1: उर्दू के गद्य और पद्य को पुरानी परंपरा की जंजीरों से आजाद करके एक नए रंग की बुनियाद मिर्जा गालिब ने डाली। उनका अनुकरण तो बहुतों ने किया, मगर सफलता किसी को नसीब नहीं हुई। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की मृत्यु हो गई, जिसने एक तरफ इस देश में फारसी के साहित्य को ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। वो महान शायर चुपचाप, खामोश, मौत के आगोश में चला गया। मिर्जा गालिब तो चले गए, लेकिन उनके कहे हुए शेर और गजलें आज भी जिंदगी के फलसफे को बयां करती हैं, और उन्हीं के कारण मिर्जा गालिब हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे। हमारा उनको सादर नमन।

0: आज़ाद हिंद। आज के इस कार्यक्रम में हमने उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नवे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आज़ाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको शास्त्रीय गायन सुनवाएंगे। कलाकार हैं सिद्धार्थ वेलमन्यू।

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन। कलाकार हैं सिद्धार्थ बेलमन्यू और साथी। ये प्रस्तुति उन्होंने दी मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित गुरु पूर्णिमा पर्व में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है

0: स्वर सागर कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सिद्धार्थ वेलमन्यू का शास्त्रीय गायन। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि स्वास्थ्य लाभ करने के लिए स्वामी जी हिमालय की यात्रा पर गए थे। वे अल्मोड़ा से उत्तर प्रदेश होकर पंजाब गए और फिर कश्मीर की तरफ चल पड़े। सेवियर दंपति भी उनके साथ जाने वाले थे, पर श्रीमान सेवियर की तबीयत बिगड़ जाने पर वे दोनों मरी में ही रुक गए। उन्होंने अगली यात्रा के लिए स्वामी जी को 800 रुपए भिजवा दिए, परंतु स्वामी जी ने अपने एक दोस्त से कहा,
1: योगेश, हम लोग तो फकीर हैं, इतने रुपए लेकर क्या करेंगे, रहने से ही खर्च हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आधा ही लेकर बाकी लौटा दूं, इतने से ही मेरे तथा मेरे संगियों के भ्रमण का खर्च पूरा हो जाएगा।
2: मैरी से तांगे पर सवार होकर 8 सितंबर को वे बारामूला पहुँचे और वहाँ तांगे को छोड़कर तुरंत ही श्रीनगर जाने के लिए नाव में चढ़ गए। कई मायने में ये नौका भ्रमण बड़ा ही आनंददायी था। 10 सितंबर को श्रीनगर पहुंचकर वे लोग कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश श्री ऋषिवर मुखोपाध्याय के घर अतिथि बने। मुखोपाध्याय महाशय ने अपने स्वभाव सुलभ अतिथि परायणता के चलते स्वामी जी के लिए हर प्रकार की सुविधा की व्यवस्था कर दी। इसी सुअवसर का लाभ उठाकर वहाँ के निवासियों ने भी उनके विद्वतापूर्ण, उदार और सरल वार्तालाप को सुनकर स्वयं को धन्य माना।
0: 13 सितंबर को वे राजप्रसाद देखने गए। वहाँ दो उच्च पदस्थ राज कर्मचारियों ने उनका सप्रेम स्वागत किया और उनमें से एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें बताया कि राजा के भाई तथा सेनापति राजा राम सिंह अगले दिन उनका दर्शन पाने के उत्सुक हैं। तदनुसार अगले दिन उन्होंने महाराजा के भाई राम सिंह के साथ भेंट की। महाराजा उस समय जम्मू में थे। राम सिंह ने स्वामी जी के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करते हुए उन्हें कुर्सी पर बैठाया और स्वयं मित्रों एवं कर्मचारियों के साथ नीचे बैठे। वहां पर स्वामी जी ने धर्म, हिंदुओं की विभिन्न समस्याओं और उनकी उन्नति के उपाय के विषय में 2 घंटे तक महत्वपूर्ण तथा मनमोहक चर्चा की। इस पर मुग्ध होकर राम सिंह ने कहा कि वे भी स्वामी जी की योजनाओं को रूप देने में यथासाध्य सहायता करने को प्रस्तुत हैं।
2: श्रीनगर के अनेक साधु, पंडित, विद्यार्थी, राज कर्मचारी और जिज्ञासु लोग स्वामी जी के व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर उनके निवास स्थान पर आया करते थे। प्रातः और संध्या के समय प्रायः ही धर्म चर्चा और उसके बाद संगीत आदि होता था। शंका समाधान के लिए आने वाले अधिकांशतः कश्मीरी या पंजाबी लोग होते थे, इसलिए चर्चा हिंदी या अंग्रेजी में हुआ करती थी। सभी आगंतुक उनसे वार्तालाप करके संदेह मुक्त एवं खुश लौटते थे। एक बार आने से ही किसी का जी नहीं भरता, पूछने को कुछ न कुछ बाकी रह जाने से, और केवल उनका दर्शन मात्र करने और उनकी मधुर बातें एवं संगीत सुनने के लिए ही लोग बारंबार आया करते।
0: स्वामी जी स्वयं भी भूस्वर्ग कश्मीर की इस सुंदर नगरी के सुंदर परिवेश तथा शीतल जलवायु के बीच रहकर काफी आनंद का अनुभव कर रहे थे। राजा अमर सिंह के वजीर क्रमशः उनके भक्त हो उठे और राजा के आदेश पर उन्होंने स्वामी जी के लिए एक हाउस बोट की व्यवस्था कर दी। इसके बाद से अवसर पाते ही स्वामी जी उस पर घूमने जाते। नैसर्गिक सौंदर्य का भंडार कश्मीर में झील के सतह पर नाव में निवास तथा भ्रमण करने में सचमुच अपना एक अलग ही माधुर्य था। बीच में स्वामी जी नौका में सवार होकर आसपास के स्थानों का भ्रमण भी करने जाते तथा बाजार में घूमते तथा कश्मीरी वाद्य संगीत या गाने कंठ संगीत सुनते।
2: इसी प्रकार 20 सितंबर को उन्होंने पामपुर नामक स्थान पर जाकर वहां केसर के खेत देखे और रात को वहीं रुके। 22 तारीख को उन्होंने अनंतनाग एक और बीज बिहार का मंदिर देखा। अगले दिन पैदल ही मारतंड नामक स्थान में जाकर उन्होंने वहाँ के पंडितों के साथ धर्म चर्चा की। वो रात स्थानीय विश्रामागार में बिताकर 24 सितंबर को वे अक्षय बल नामक स्थान की ओर रवाना हुए। मार्ग में अवंतीपुर के निवासियों ने अत्यंत आग्रह पूर्वक उन्हें एक अत्यंत प्राचीन पांडवों का मंदिर दिखाया। किंवदंतियों के अनुसार ये मंदिर पांडवों के समय का है।
0: स्वामी जी ने घूम घूम कर उस सुंदर मंदिर का गठन, उसकी नक्काशी और पत्थर पर खुदाई से बनी जाली का काम देखा। मंदिर पुराना था। स्वामी जी के साथ लाटू महाराज भी थे। दोनों में अक्सर नोकझोंक और हंसी मजाक हुआ करती थी। मंदिर देखने के बाद लाटू महाराज ने स्वामी जी से पूछा,
3: क्यों, क्या ख्याल है, मंदिर कितना पुराना होगा?
1: ये तो कम से कम 2000 साल पहले बना होगा। ये नक्काशी का काम अति दुर्लभ है।
3: क्यों, ऐसा क्या है इस मंदिर में? और तुम कैसे कह सकते हो कि ये 2000 साल पुराना है?
1: तुम ठहरे अनपढ़ गंवार, तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। चलो आगे बढ़ो, और हो भी अगर विद्वान तो मेरे जैसे मूर्ख को समझ नहीं सकते।
0: सब लोग हंस पड़े।
2: दोनों में गहरी दोस्ती भी थी। श्रीनगर में वे लोग एक हाउस बोट में रहने गए। लाटू महाराज ने देखा कि बोट पर मांझी लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा,
3: ए नरन, ए तुम जाओ उस हाउस बोट में रहने, मैं नहीं जाऊंगा।
1: क्यों, चलो ना, बहुत मजा आएगा, झील में तैरेंगे, ऐसा और कहीं मिलेगा नहीं।
3: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
1: बात क्या है, साफ साफ कहते क्यों नहीं?
3: इन नावों में मांझियों के परिवार भी रहते हैं, इन औरतों के साथ एक ही नाव पर मैं नहीं रह सकता भाई।
1: ओह तो ये बात है, अरे तू अकेले थोड़े ही रहेगा, मैं हूँ ना, मेरे रहते तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
0: लाटू महाराज आश्वस्त होकर बोट में रहने के लिए तैयार हो गए।
2: काश्मीर और श्रीनगर स्वामी जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने लिखा है,
1: इस प्रदेश की जो प्रशंसा सुनने में आती है वो सत्य है। इतना सुंदर स्थान दूसरा नहीं है, और लोग भी देखने में सुंदर हैं। यहाँ के सौंदर्य की सब बातें लिखकर क्या होगा। मेरी समझ में यही एकमात्र स्थान योगियों के अनुकूल है। मैंने काफी भ्रमण किया है, परंतु ऐसा देश मेरे देखने में नहीं आया।
2: वहाँ के सौंदर्य पर मुग्ध होकर भी स्वामी जी लिखना नहीं भूले कि काश्मीर के लोगों का जीवन स्तर काफी नीचा है, पर हाँ, पूरे भारतवर्ष के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। पत्र में लिखित अन्य ज्ञातव्य बातें ये हैं कि स्वामी जी ने काश्मीर के द्रष्टव्य स्थानों के अवलोकन और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु 1 महीने तक पानी में भ्रमण करने का संकल्प किया था। काश्मीर में उनके संगी थे सदानंद, कृष्णलाल और लाटू निरंजन, दीनू और खोका। उन्होंने निश्चित किया था कि पहाड़ से उतरते ही वे दल के परवर्ती 4 लोगों को कलकत्ता वापस भेज देंगे, क्योंकि उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य संभव नहीं है। बल्कि 20-25 दिन के भीतर शुद्धानंद, सुशील और हरि प्रसन्न को उन्होंने अंबाला भेज देने को लिखा था।
1: इस समय राजा साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनके मंझले भाई सेनापति यहाँ है। उनकी व्यवस्था में एक व्याख्यान का आयोजन चल रहा है, जैसा होगा बाद में लिखूंगा। 2 दिन के अंदर यदि हो तो मैं ठहरूंगा, नहीं तो भ्रमण करने निकल पड़ूंगा। सेवियर मेरी में ही है, टांगों के झटकों से उनका शरीर बड़ा ही अस्वस्थ हो गया है। काश्मीर सरकार ने अपना एक बजरा मुझे उपयोग करने को दिया है, ये काफी सुंदर तथा आरामदायक है। उन्होंने जिले के तहसीलदारों को भी आदेश जारी कर दिया है। हमें देखने के लिए लोग सदल बल यहां आ रहे हैं, और हमें सुखपूर्वक रखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है सब कर रहे हैं।
0: श्रीनगर लौटने के बाद स्वामी जी का पुनः जनसाधारण के साथ मिलना जुलना तथा आनंदपूर्ण वार्तालाप आदि चलने लगा। बीच बीच में वे संभ्रांत लोगों के घर से भोजन के लिए निमंत्रण भी पाते थे। ऐसे अवसर पर गृहस्थगण प्राचीन रीति से उनके प्रति अतीव सम्मान व्यक्त करते तथा यत्न पूर्वक सारी व्यवस्था करते। एक बार एक अभिजात परिवार से निमंत्रण पर वहां संवेद ब्राह्मण पंडितों ने पुष्प वर्षा की तथा मालाओं से विभूषित कर उनका स्वागत किया, और भोजनोपरांत साथ साथ आकर उनके निवास स्थान तक पहुंचा गए।
2: इस तरह की घटनाओं से ये समझा जा सकता है कि स्वामी जी अपने देशवासियों की कैसी हार्दिक श्रद्धा पाने में समर्थ हुए थे, और इस घटना के साथ पूर्ण वर्णित दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के उनके तथा कथित बहिष्कार किए जाने वाली घटना से तुलना करने पर ऐसा लगता है कि जिनके दिमाग में प्रगति को रोकने की दुर्बुद्धि का उदय होता है, वे लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितने ही प्रकार के दुराचरण में लिप्त हुआ करते हैं।
0: क्रमशः उनके कश्मीर से विदा लेने का समय आ पहुंचा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही उन्होंने श्रीनगर से नाव में प्रस्थान किया और वुलर झील को पार करते हुए बारामूला में जा पहुंचे। वहां से तांगे में सवार होकर 8 अक्टूबर की शाम को वे मरी आए। यहां पर उनका अपने पूर्व रचित पंजाबी तथा बंगाली अनुरागियों के साथ पुनर्मिलन हुआ। सेवियर दंपत्ति तब भी वहीं थे, उनके साथ भी भेंट हुई। 14 अक्टूबर की रात को स्थानीय लोगों ने उनका अभिनंदन किया, और इसके उत्तर में उन्होंने एक मनोहारी भाषण दिया। उस समय वे निवारण बाबू के मकान पर ठहरे थे और सभा भी वहीं हुई थी।
2: मरी से 10 अक्टूबर को अपने पुत्र द्वारा उन्होंने ब्रह्मानंद को सूचित किया था कि हरि प्रसन्न संभवतः शीघ्र ही अंबाला पहुंचेंगे, क्योंकि सेवियर यथाशीघ्र हिमालय में पूर्व कल्पित आश्रम की स्थापना करने को उत्सुक हैं। भूमि चयन और गृह निर्माण आदि विषयों में हरि प्रसन्न महाराज को विशेष अनुभव था। पहले वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके थे। उसी पत्र में श्री माता जी को 200 रुपए भेजने का अनुरोध भी है। उसी दिन एक अन्य पत्र में वे स्वामी अखंडानंद को एक अनाथ आश्रम स्थापित करने के लिए उत्साहित करते हुए लिखते हैं,
1: मुसलमान लड़कों को भी लेना होगा, परंतु उनके धर्म को नष्ट मत करना। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी जातियों के लड़के लो, परंतु प्रारंभ में धीरे धीरे, अर्थात उनके खाने पीने की थोड़ी अलग व्यवस्था हो और धर्म की जो सामान्य बातें हैं वही उन्हें सिखाना।
0: स्वामी जी के मन में उन दिनों कश्मीर में एक केंद्र स्थापित करने की इच्छा भी थी। श्रीनगर के 1 अक्टूबर को मार्गरेट नोबल को लिखित उनके पत्र में है,
1: तुम्हारे समक्ष में कश्मीर का वर्णन करने का प्रयास नहीं करूंगा। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि केवल इस भूस्वर्ग के अलावा कोई भी प्रदेश छोड़कर आने में मेरा मन दुखी नहीं हुआ। यदि संभव हुआ तो राजा को सहमत करके यहाँ पर एक केंद्र स्थापित करने का यथासंभव प्रयास कर रहा हूँ।
0: जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह से भेंट के दौरान संभवतः उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, परंतु प्रताप सिंह उस समय ब्रिटिश राज के नाराजी के फलस्वरूप सिंहासनच्युत होने के कारण वस्तुतः कुछ नहीं कर पाए थे। उत्तर पश्चिमी भारत के अन्य स्थानों में भी उनकी केंद्र स्थापित करने की इच्छा थी और इसके लिए उन्होंने आलम बाजार मठ से सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को पंजाब एवं राजपुताना में बुलवाया था, परंतु उनके जीवन काल में कहीं भी केंद्र स्थापित नहीं हो पाया। तथापि जो बीज वे उस धरती पर बो आए थे वो अमर था और बाद में वो अंकुरित होकर फला फूला और अब भी हो रहा है। अस्तु 16 अक्टूबर को प्रातःकाल 9 बजे तांगे पर मरी से रवाना होकर शाम को 5 बजे वे रावलपिंडी जा पहुंचे।
2: 16 अक्टूबर को स्वामी जी के रावलपिंडी पहुंचने पर वहां के वकील लाला हंसराज साहनी ने उनका अपने घर पर सप्रेम स्वागत किया। उस समय उनके साथ केवल स्वामी सदानंद और स्वामी अच्युतानंद ही थे, क्योंकि इसके पूर्व ही वे निरंजनानंद, अद्भुतानंद, सचिदानंद और कृष्णालाल को जयपुर भेजने की व्यवस्था कर चुके थे। वकील महाशय के घर पर स्वामी जी के आर्य समाज के स्वामी प्रकाशानंद के साथ वार्तालाप करके विशेष आनंदित हुए। उस समय न्यायमूर्ति नारायण दास, भगत राम और भी अनेक शिक्षित लोग वहाँ उपस्थित थे।
0: यहीं से उनकी व्याख्यानों के द्वारा प्रचार कार्य की शुरुआत हुई। रावलपिंडी में 2 दिन बीतते ही 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे श्रीयुत सुजन सिंह के मनोरम बागीचे में उनसे व्याख्यान देने का अनुरोध किया गया। न्यायमूर्ति नारायण दास के प्रस्ताव तथा लाल हंसराज के अनुमोदन पर सुजन सिंह सभापति बने। सभा में लगभग 400 श्रोता आए थे और स्वामी जी ने 2 घंटों तक हिंदू धर्म पर एक सुदीर्घ, बुद्धितापूर्ण तथा प्रेरक व्याख्यान दिया। स्वामी जी ने अपने वक्तव्य विषय की व्याख्या तथा समर्थन करते हुए वेद आदि ग्रंथों से अनेक उद्धरण दिए और कभी वे वीर मुद्रा में आत्मा की अनंत महिमा तथा सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख करके श्रोताओं के हृदय में महातेज एवं शक्ति का संचार करने लगे, तो कभी सामाजिक कपटाचार के विरुद्ध कठारे व्यंगों का प्रयोग करते हुए श्रोताओं के बीच हास्य की धारा बहाने लगे। सभा में उपस्थित एक अंग्रेज भक्त ने बाद में बताया था,
4: मस्तक पर तथा गले में फूलों की माला से सुशोभित स्वामी जी अपने अभ्यास के अनुसार कभी मंच पर टहलते तथा कभी पत्र, पुष्प व मालाओं से मंडित एक खंबे का सहारा लेकर व्याख्यान दे रहे थे। गैरिक वस्त्रों तथा कमरबंद से पोषित होकर उस समय वो किसी यूनानी देव मूर्ति के समान लग रहे थे। फिर पगड़ी पहने अधिकांश श्रोताओं के जमीन पर बैठे रहने और डूबते सूरज की लालिमा से पूरा दृश्य अद्भुत सुंदर हो उठा था।
2: इन दिनों स्वामी जी प्रचार कार्य में कितने व्यस्त थे, इसकी झलक देने के लिए हम स्वामी अच्युतानंद की डायरी से कुछ अंश सुनाते हैं।
3: अरे 17 अक्टूबर को हंसराज का मकान प्रातः काल आगंतुक सज्जनों के साथ चर्चा, तदुपरांत भोजनार्थ छावनी में निमाई बाबू के घर गमन, वहाँ एकत्र बंगाली लोगों के साथ वार्तालाप और लगभग 3 बजे वहां से लौटे। हाँ, अरे थोड़ा विश्राम करने के बाद व्याख्यान देने के लिए सृजन सिंह के घर उद्यान में गमन किया और भाषण के बाद निवास स्थान पर वापस लौटकर एक व्यक्ति को उन्होंने साधन रहस्य पर उपदेश दिया और रात को भगत राम की कोठी पर निमंत्रण था और साथ में न्यायाधीश प्रकाशानंद हंसराज भी गए और वहाँ भोजन किया और वहां से रात 10 बजे अपने निवास स्थान पर लौटे। रात के 3 बजे तक प्रकाशानंद के साथ चर्चा की।
0: उन दिनों की घटनावली हमें विभिन्न लोगों के संस्मरण और डायरियों से पता चलती है। रावलपिंडी में वे कई दिनों तक रुके और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। उनके अगले कुछ दिनों का कार्यक्रम ऐसा रहा।
2: 18 अक्टूबर के दिन प्रातः काल भी राय नारायण दास, बाबा क्षेम सिंह के पुत्र और प्रकाशानंद के साथ चर्चा हुई। आहार के उपरांत विश्राम करने के बाद उन्होंने बताया कि पिछले दिन से उनके सिर में दर्द है और इस समय काफी बढ़ चुका है, फिर भी वे हंसते हुए ही बातें करते रहे, बाहर के लोग कुछ समझ ही न सके। संध्या के पूर्व उन्होंने जज साहब और क्षेम सिंह के पुत्र द्वारा लाई गई बग्घी में भ्रमण किया। रात में उन लोगों के साथ ही भोजन किया और आर्य समाज एवं मुसलमानों के संबंध में अनेक शंकाओं का समाधान किया। रात के 11 बजे वे अपने निवास स्थान पर लौटे।
0: 19 अक्टूबर को प्रातः काल उन्होंने सेवियर दंपत्ति के निवास पर जाकर उन लोगों के साथ बातचीत की। बाद में प्रकाशानंद के साथ स्थानीय बंगाली लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित कालीबाड़ी में जाकर प्रसाद ग्रहण किया और भोजन उपरांत एक सिख सज्जन के साथ काफी देर तक धर्म चर्चा की। इस चर्चा के दौरान अनेक बंगाली सज्जन भी उपस्थित थे। संध्या के बाद उक्त कालीबाड़ी में ही स्थानीय प्रवासी बंगाली लोगों की एक छोटी सी सभा में स्वामी जी ने स्वदेश के कल्याण के उपायों के विषय में अनेक मनोहर उपदेश दिए। रावलपिंडी में उनके इस प्रवास के सुयोग से अनेक लोग हंसराज के मकान अथवा सेवियर दंपत्ति के निवास स्थान पर उनसे मिलकर वार्तालाप करते तथा उनके उपदेश सुनकर कृतार्थ हो जाते। ऐसे प्रसंग उठने पर स्वामी जी को समय का बोध नहीं रह जाता था और अन्य लोग भी बाकी सब कुछ भूलकर उनकी बातें सुनते रहते, इसीलिए ये बैठक काफी लंबी हुआ करती थी। इनके बैठकों के दौरान कुछ भावुक लोगों के अजीब व्यवहार भी कभी कभी दिख पड़ते थे। रावलपिंडी से प्रस्थान के दिन 20 अक्टूबर मध्याह्न भोजन के पश्चात वे कुछ जिज्ञासुओं तथा मित्रों के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि उसी समय एक बंगाली सज्जन के अनुरोध पर स्वामी जी के एक गुरु भाई वहां एक फिटन गाड़ी लेकर आए और बताया कि वे सज्जन बीमार हैं तथा स्वामी जी का दर्शन करने के इच्छुक हैं।
1: हाँ हाँ चलो भाई, माफ करना, मुझे जाना होगा। चलो, कहाँ चलना है? प्रकाश, तुम भी चलो।
3: स्वामी जी प्रणाम। मैं उठ चल नहीं सकता, इसीलिए आपको यहाँ आने का कष्ट दिया।
1: नहीं भाई, कष्ट किस बात का, तुम बीमार हो।
3: स्वामी जी, मेरे मन में भगवान और धर्म को लेकर कई प्रश्न उठते रहते हैं। मैं जीवन भर धर्म के पथ पर चला हूँ, ये मेरी दुर्गति क्यों हुई? मुझे तो भगवान पर से ही विश्वास उठ गया है। भगवान मगवान कुछ नहीं है, सब झूठ है। आप ही कोई रास्ता बताएं।
0: स्वामी जी द्वारा उन सभी प्रश्नों के एक एक कर युक्तिपूर्ण समाधान कर देने पर उस सज्जन का संदेह दूर हुआ और उन्होंने अपने को कृतार्थ समझा। इसके बाद उन्होंने स्वामी जी तथा उनके संगियों को किंचित जलपान कराकर रात के 8:30 बजे कृतज्ञता पूर्वक विदा किया। इसके बाद हंसराज के घर पर रात का भोजन समाप्त कर स्वामी जी कालीबाड़ी गए और कश्मीर के महाराजा का आमंत्रण स्वीकार कर जम्मू जाने के लिए रात के 12 बजे ट्रेन में सवार हुए।
2: 21 अक्टूबर को 12 बजे जब वे जम्मू स्टेशन पर उतरे तो एक राज अतिथि के अनुरूप उनका स्वागत हुआ और राज्य की ओर से सत्कार विभाग के प्रमुख श्री महेश चंद्र भट्टाचार्य ने अपने पुत्रों के साथ उनकी देखभाल का भार ले लिया। अगले दिन स्वामी जी राजकीय पुस्तकालय देखने गए और बाद में उन्होंने महेश बाबू के गुरु स्वामी कैलाशानंद आदि अनेक पंजाबी सज्जनों के साथ धर्म चर्चा की। महेश बाबू के साथ कश्मीर में एक मठ स्थापित करने के विषय में भी बातचीत हुई।
0: 22 अक्टूबर को 12 बजे वे राजकीय बग्घी में सवार होकर राजा प्रसाद में एक और महाराजा के साथ भेंट की। इस मुलाकात के समय महाराजा के दो भाई तथा राज्य के कई प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वामी जी के अपने लिए निर्दिष्ट आसन पर बैठे जाने पर महाराजा ने वार्तालाप आरंभ करते हुए संन्यास का प्रसंग उठाया और स्वामी जी ने उसका समुचित उत्तर दिया। क्रमशः भावी नाचार तथा निरर्थक अनुष्ठानों की बात उठी और स्वामी जी ने अकाट्य युक्तियों के आधार पर बता दिया कि किस प्रकार भारतवासी धर्म के मूल तत्वों के प्रति अज्ञानी रहकर केवल बाहरी क्रियाकलापों से चिपके रहने के कारण क्रमशः अपना बल, वीर्य एवं स्वतंत्रता खो चुके हैं और लकीर के फकीर होकर अंधविश्वासों को धर्म के आसन पर स्थापित कर सैकड़ों वर्षों से दूसरों का दासत्व स्वीकार कर बैठे हैं और उसमें पीछे जा रहे हैं।
1: आजकल वास्तविक पाप आचरण के कारण कोई समाज से बहिष्कृत नहीं होता, परंतु भोजन आदि के विषय में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर मानो समाज के सम्मुख घोर संकट उपस्थित हो जाता है। आजकल समुद्र यात्रा करने पर तरह तरह की आलोचनाएं होती हैं। वे भूल जाते हैं कि श्री रामचंद्र समुद्र पार करके ही लंका गए थे। आजकल ब्रह्म देश, श्रीलंका, बाली, मलाया, थाईलैंड आदि देशों में बहुत सारे भारतवंशी वाणिज्य व्यापार में लगे हुए हैं। वे उन देशों में कैसे पहुंचे? समुद्र पार करके ही ना, उनकी तो जान नहीं गई। भारतीयों को बाहर निकलना होगा। दुनिया का भ्रमण किए बिना वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती।
2: अंत में यूरोप और अमेरिका आदि देशों में वेदांत प्रचार की उपयोगिता और सफलता की बात समझाते हुए अपने कार्य की धारा एवं उद्देश्य आदि का वर्णन करते हुए उन्होंने सबको बताया कि देश के कल्याणार्थक वे अपनी मुक्ति की अभिलाषा त्याग कर बल्कि नरक भी जाने को प्रस्तुत हैं और वे किसी भी बाधा विपत्ति के भय से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगभग 3 बजे ये वार्तालाप समाप्त हुआ। कहना न होगा कि महाराजा स्वामी जी के तेज, साहस, पांडित्य, प्रतिभा भविष्य के लिए अद्भुत कार्य योजना, स्वधर्म एवं स्वदेश के प्रति प्रेम, उदार दृष्टिकोण और अपूर्व वाग्मिता का परिचय पाकर विशेष रूप से संतुष्ट हुए थे। उसी दिन स्वामी जी बग्घी में सवार होकर छोटे राजा के नए भवन में गए। राजा ने उनका सप्रेम स्वागत किया और थोड़ी देर तक उनके पास बैठकर उनके उपदेश सुने।
0: अगले दिन सियालकोट से कुछ लोग आए और स्वामी जी से वहां जाने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसी दिन शाम को उन्होंने जम्मू की जनता के सम्मुख जो व्याख्यान दिया, उस पर महाराजा इतने आनंदित हुए कि उन्होंने स्वामी जी से अगले दिन भी एक व्याख्यान देने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वो भी अनुरोध किया कि स्वामी जी 10-12 दिन जम्मू में रहकर लोगों के कल्याणार्थ एक एक दिन के अंतर पर भाषण दें।
2: भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से व्याख्यान बड़े ही हृदयग्राही और उत्साहपूर्ण हुए थे और अपने वक्तव्य को व्यक्त करने के लिए स्वामी जी ने हिंदी भाषा का इतने सुंदर ढंग से उपयोग किया था कि गुणग्राही महाराजा ने स्वामी जी से उसी भाषा में कुछ लेख लिखने का अनुरोध किया था और स्वामी जी ने वैसा ही किया। उन लेखों को पढ़कर महाराजा ने स्वामी जी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में उन दिनों पंजाब में जो अभाव दिख पड़ता था, इस विषय में भी उन्होंने खेद व्यक्त किया। उस दिन शाम को जो जनसभा हुई थी उसमें महाराजा के आने की बात थी, परंतु वे नहीं आ सके। 28 अक्टूबर को प्रातः भ्रमण कर निवास स्थान पर लौटने के बाद उन्होंने समाज शास्त्र पर चर्चा करते हुए अनेक गूढ़ तत्वों की चर्चा की। उसका सार मर्म इस प्रकार है।
1: सबके लिए भोग के समान अवसर होना चाहिए। वंशगत या गुणगत जाति भेद के अनुसार जो भोग अथवा अधिकार का फर्क रहने के बावजूद उसमें कुछ गुण भी हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति चाहे जितना भी गुणवान या धनवान क्यों ना हो, वंशगत जाति को मानने से वो अपनी जाति का परित्याग नहीं कर सकता। अतः उसके गुण तथा धन का कुछ न कुछ अंश उसकी जाति को भी मिलता है। गुणवान जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता।
2: उन्होंने अपने बचपन का उदाहरण देते हुए कहा कि वे दरिद्रों की बस्तियों में जाकर उनकी भलाई का प्रयास किया करते थे। वैसे इस तरह की बातें स्वामी जी सबके सामने नहीं बोलते थे, केवल अंतरंग संगियों के मजलिस में ही कभी कभी कह डालते।
0: 29 अक्टूबर को वे राजा राम सिंह से विदा लेने गए और उन्हें बताया कि सियालकोट के मित्रों के दबाव के कारण उन्हें वहां जाना पड़ेगा और ज्यादा देर करना संभव नहीं। राम सिंह यह समाचार सुनकर दुखी हुए, परंतु उन्हें विदा करने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे जब भी जम्मू या कश्मीर आए तो राज का आतिथ्य स्वीकार करें,
2: और स्वामी जी सियालकोट की तरफ चल पड़े।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वतन का राग आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन पर केंद्रित होगा। शाम 6:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा, इस विषय पर जानकारी देंगी इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। शाम 7 बजे योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा दैव के स्वरूप का विवेचन और सत्कार्य की प्रेरणा। इस विषय पर जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से हमारे सहयोगी सुनीता सिंह की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। शाम 7:30 पर कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी ओमियो कुमार दास के कृतित्व के बारे में जानेंगे। रात्रि के 8 बजे भोपाल में आयोजित फुलकारी नाट्य महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा। रात्रि के 8:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद आज की कड़ी उर्दू शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर केंद्रित होगी। रात्रि के 9 बजे कार्यक्रम सुरसागर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सिद्धार्थ वेलमन्यू का शास्त्रीय गायन और 9:30 पर स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक। ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

आज के भारत भारती कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं आपके रेडियो मित्र प्रमिला। कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। श्रोतो, आज हम इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं उस्ताद उस्मान मीर का गुजराती लोक गायन।

0: हाँ
1: रिवर्ब थोड़ा अलग लग रहा है भाई थोड़ा।
0: हाँ

तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, इस अमानत को अमानत की तरह रखा है, अपनी गजलों को बचा के रखा है तमाशों से बहुत, क्योंकि हमने इस फन को इबादत की तरह रखा है। जफर साहब का ये कलाम है कि कहते हैं कि आंधियां गम की चलेंगी तो समर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो समर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं कि बिखर जाऊंगा।

मुझे लगता है ये गाना तो सबको याद है ना, आपको याद है ना, सबको याद है भाई। बहुत विसलिंग हो रहा है यार, मूड नहीं बन रहा है कुछ। आप लोग गाइए साथ में तो कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए साथ में गाते हैं।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने उस्ताद उस्मान मीर से गुजराती लोक गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध गायिका गिरिजा देवी का गायन।

सुनने के शब्द हैं, देखे बिना नहीं चैन श्रखमाच है समरी।

ये मेरा सौभाग्य है, इतने लोग बोल चुके हैं पर ये आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। कारण ये है कि मेरे दादाजी जो मेरे गुरु बचपन से सिखाए, मेरे पिताजी, मेरे गुरु दादाजी के जो गुरुजी थे पंत कंठे महाराज जी, वो बजा चुके हैं। तो ये संगीत में ही हो सकता है, ये किसी और चीज़ में नहीं हो सकता कि एक चार पीढ़ी पहले जिनको मैंने देखा ही नहीं उन्होंने बजाया, और मैं क्या बजा सकता हूँ। मेरा तो कोई सौभाग्य, मैं अपने आप को धन्य, ये जीवन धन्य हो गया मेरा आपके चरणों में बजा के।

आप समझिए कि पंडित गांधी महाराज जी जिनको हम लोग बब्बा बोलते थे उनके साथ गाए हैं, फिर किशन महाराज जी भैया थे मेरे उनके साथ गाए, फिर उनके बेटे पूरन महाराज जी के साथ गाए, अब उनके बहन का बेटा मेरा नाती हो गया चार खानदान शुभ महाराज उनके संग भी गाते हैं, अब शुभ का बच्चा भी हो गया दो तीन बरस उसके साथ भी गा रहे हाँ पीढ़ी से तबले वाले एक खानदान से गा रहे हैं भैया, ये सब के बच्चे सामने के पैदा हुए हैं, इसलिए मौका दे रहे क्या क्या बनारस की खास लगी का अंदाज है वो बजाना आता है, चलो जल्दी जल्दी गाँव में भूल जाओ।

भजन। हाँ।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी को सुना। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती।

भारत भारती के सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद अमान का शास्त्रीय गायन।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोहम्मद अमान का शास्त्रीय गायन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 MHz पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, अमेजॉन पॉडकास्ट और साथ ही यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 MHz पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे मंडल 2 के सूक्त 28 का वाचन। 5:10 का समय है भगवत आराधना के भक्तिमय स्वर सुनने का। सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत। वतन का राग कार्यक्रम आज का केंद्रित है राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि पर, शाम 6 बजे पेश किया जाएगा। कृष्ण की बाल लीला बाल सभा कार्यक्रम में सुनेंगे आप शाम 6:30 बजे। 7 बजे सुने AI पार्ट 1 टेक गुरु कार्यक्रम में। हमारी सेना हमारा गर्व आप सुनेंगे कार्यक्रम 7:30 बजे। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML देश के संस्थान कार्यक्रम में आप सुनेंगे 8 बजे। याद करो कुर्बानी में आज आप सुनेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में 8:30 पर। 9 बजे सुनेंगे आप रेडियो रिपोर्ट और 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसमें आप सुनेंगे रश्मि रथी भाग का 15वां। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: वेद, पुराण, आख्यान ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं, धरोहर हैं और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 27 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत, देवता हैं आदित्यगण और छंद है त्रिष्टुप।
1: त्वं विश्वेशां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः शतम् नो रास्व शरदो विचक्षेष्यामायुंसि सुधितानि पूर्वा। हे मादक पदार्थों से रहित वरुण देव, आप देवता तथा मनुष्य सभी के राजा हैं। हमें इस संसार को भली भांति देखने के लिए 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। न दक्षिणा विचिकिते न सव्या न प्राचीन मादित्या नोत पश्चा पाक्या चिद वसवो धीर्या चिदुष्मानीतो अभयम् ज्योतिरश्याम। हे आदित्यगण, हम आगे पीछे बाएं दाएं क्या है यह नहीं जानते। सबके आश्रयदाता आदित्यगण, हम परिपक्व बुद्धि तथा धैर्यवान होकर आपके द्वारा दिखाए गए पथ में चलते हुए भय रहित ज्योति प्राप्त कर सकें। यो राजभ्य ऋतनिभ्यो ददाश यम वर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्याः स रेवान्याति प्रथमो रथेन वसुदावा विदथेषु प्रशस्तः। जो तेजस्वी याजकों को धन प्रदान करता है, जो सदैव समृद्धिशाली रूप में वृद्धि पाता है, वह स्तुत्य धन प्रदाता धनिक रथ में प्रतिष्ठित रथी के समान श्रेष्ठ कार्यों में सदैव अग्रणी रहता है। शुचिरपह सूयवसा अदब्ध उपक्षेति वृद्धवयाः सुवीरः नकिष्टं घ्नत्यन्तितो न दूराद्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ। जो आदित्य गणों का पथानुगामी होता है, वह दीप्तिमान हिंसा रहित उत्तम संतति से युक्त दीर्घायु पोषक अन्न तथा ज्येष्ठ श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त करता है। उसका समीप से या दूर से कोई शत्रु वध नहीं कर सकता। अदिते मित्र वरुणोत मृडयद्वो वयम चक्रमा कच्चिदागह उर्वश्याम भयम ज्योतिरिंद्र मानो दीर्घा अभि नशंत मिस्राह। हे अदिति मित्र तथा वरुण देवो, यदि हमसे कोई अपराध भी बन पड़े तो भी आप हमें क्षमा करें। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, दीर्घ अंधकार हमें न व्याप्त करे, अतः विस्तीर्ण तथा अभय ज्योति हमें प्रदान करें। उभे अस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टिम् सुभगो नाम पुष्यन् उभा क्षया वाजयन्याति पृत्सु भावैर्धौ भवतः साधु अस्मै। जो व्यक्ति आदित्य गणों का अनुगमन करता है, उसे द्युलोक तथा पृथ्वीलोक दोनों परिपुष्ट बनाते हैं। द्युलोक से हुई ऐश्वर्य वृष्टि को वह सौभाग्यशाली प्राप्त करता है। वह युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ दोनों लोकों में जाता है तथा दोनों लोक उसके लिए मंगलदायी होते हैं। या वो माया अभिद्रुहे यजत्राह पाशा आदित्या रिपवे विचरिताह अश्वीव ताम अतियेशम रथेनारिष्टा उरावा शर्मन्त्यस्याम।

0: मापेह मारायो राजन्सु यमादव स्थाम बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे वरुण देव, सबको संतुष्ट करने वाले ऐश्वर्यवान दानदाता की सुख समृद्धि से कभी ईर्ष्या न करें, उसे बंधुवत माने। हे वरुण देव, आवश्यक धन प्राप्त होने पर हम अहंकारी न बने, श्रेष्ठ संतति सहित यज्ञ में देवों की स्तुतियां करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 27 वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस चाहिए।

0: फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहती है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एकै राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

विद्यार सागर तुमी विख्यात भारते, करुणार सिंधु तुमी शेई जाने मोने, दीन जे दीनेर बंधु उज्जवल जगते, हिमाद्रीर हेमकांति अम्लान किरोने। माइकल मधुसूदन दत्त की ये पंक्तियां बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समर्पित हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तुम विद्या के सागर के रूप में भारत में विख्यात हो, मन तुम्हें करुणा के सिंधु के रूप में जानता है, दीनों के बंधु के रूप में तुमने इस जगत को उज्ज्वल किया है, हिमाद्री की कांति से सज्जित अम्लान किरणों की तरह। सच है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जीवन ऐसे ही धवल प्रकाश से भरा हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर सन 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। ये एक अत्यंत निर्धन परिवार था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंद्योपाध्याय और माताजी का नाम भगवती देवी था। उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में उनकी प्रतिभा और ज्ञान को देखते हुए विद्यार्थी जीवन में संस्कृत कॉलेज में उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई और इस तरह वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से ही विख्यात हो गए। वो एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, समाज सुधारक, दार्शनिक, लेखक और परोपकारी प्रकृति के इंसान थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अत्यंत मेधावी छात्र थे, लेकिन जीवन में कठिनाइयां बहुत थीं। परिवार विपन्न था, उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। जीवन में घोर संघर्ष के बावजूद ईश्वर चंद्र प्रायः सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान ही प्राप्त किया करते थे। कोलकाता के संस्कृत कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। सन 1846 में संस्कृत कॉलेज में वो सचिव के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने अपने काम को अत्यंत गंभीरता और जिम्मेदारी से लिया। वो कॉलेज के पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहते थे, लेकिन यहां उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी सोच प्रगतिवादी और सुलझी हुई थी, इसलिए रूढ़िवादी लोगों का विरोध हमेशा बना रहता था। निराश होकर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। फिर 1850 में वो दोबारा संस्कृत कॉलेज से जुड़े और सन 1858 तक यहां रहे। प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने कॉलेज के मामलों में अनेक बदलाव किए। पहले केवल ब्राह्मण छात्र ही संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी के लिए दरवाजे खोल दिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नाम मात्र की ट्यूशन फीस शुरू की। उन्होंने पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया और व्याकरण तथा गणित को केवल संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने के बजाय इसे बांग्ला और अंग्रेजी के माध्यम से भी पढ़ाना शुरू किया। संस्कृत महाविद्यालय के पारंपरिक विषयों के अलावा भी उन्होंने यहां पाठ्यक्रम को अत्यंत सार्थक विस्तार दिया। वो कहा करते थे कि विद्या अनमोल धन है, इसके आने मात्र से केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्कूलों के सहायक निरीक्षक के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने नादिया, बर्धमान, हुगली और मेदिनीपुर जिलों में 20 से भी अधिक बांग्ला स्कूलों की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। ये वो समय था जब रूढ़िवादी समाज स्त्री शिक्षा को वर्जित मानता था। ऐसे समय में उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद बालिका विद्यालय खोले। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सुधार उनका

विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्हें इसके कारण कड़े विरोध सहने पड़े, उनके प्राण भी संकट में आए, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से संपन्न कर एक जीवंत और साहसिक उदाहरण प्रस्तुत किया। दरअसल ईश्वरचंद्र विद्यासागर पर रामकृष्ण परमहंस का बहुत गहरा प्रभाव था, विशेषकर सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। परमहंस जी के विचारों ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को सामाजिक सुधारों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनाया, विशेषकर स्त्री शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। दोनों के बीच गहरा प्रेम और सम्मान था। कहीं मतभेद रहे भी तो एक दूसरे के प्रति आदर में कोई कमी नहीं आई। प्रसंग मिलता है कि रामकृष्ण परमहंस ईश्वरचंद्र विद्यासागर से इतना अधिक प्रभावित थे कि वो स्वयं उनसे मिलने भी गए। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ज्ञान का सागर कहा, उनके कार्यों को सात्विक कर्म कहा, उसे ही पूजा माना। इस तरह विद्यासागर जी की समाज सेवा जैसे उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा ही बन गई।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर की उदारता और दयालु व्यवहार के कारण लोग उन्हें करुणा सागर भी कहते थे। उनके भीतर मानव मात्र के प्रति करुणा का प्रबल भाव था। वो कहा करते थे कि दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो वास्तव में मनुष्य नहीं है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपना जीवन बहुत सादगी से व्यतीत करते थे। वो घर पर बुने साधारण सूती वस्त्र धारण किया करते थे जो उनकी माता बुनती थीं। लेकिन दान पुण्य के अपने काम को वो राजा की तरह करते थे। बांग्ला साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम सहित विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का बांग्ला में अनुवाद किया। इन अमर ग्रंथों को उन्होंने बांग्ला पाठकों तक पहुंचाया। वो बांग्ला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों में से एक थे। उन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की, जिनमें से 17 संस्कृत में, 5 अंग्रेजी में तथा शेष बांग्ला भाषा में हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वेताल पंचविंशति, शकुंतला, सीता वनवास, व्याकरण कौमुदी, कामनाख्यानम आदि। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं, जिन्हें देखने पर स्पष्ट होता है कि वो न केवल छात्रों को पढ़ने लिखने का कौशल सिखाना चाहते थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि उनमें नैतिक मूल्यों का बीजारोपण भी हो। उन्होंने सदा उदार और खुले विचारों के साथ सोचा। चरितमाला में मध्यकालीन संतों की जीवनी न लिखकर उन्होंने यूरोप के 16 महापुरुषों के बारे में लिखा। बांग्ला वर्णमाला के पुनर्निर्माण का श्रेय भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर को ही जाता है। उन्होंने बांग्ला भाषा को आधुनिक और सरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बोर्नो पोरिचॉय नामक पुस्तक लिखी, जो आज भी बांग्ला सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। इसमें उन्होंने संस्कृत स्वरों को समाप्त कर बांग्ला टाइपोग्राफी को 12 स्वरों और 40 व्यंजनों में तब्दील करते हुए सरल बना दिया। स्वावलंबन, स्वाभिमान, मानवता, अध्ययनशीलता और सादगी उनके जीवन के महामंत्र थे। उन्होंने शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए। वो एक विशाल वटवृक्ष की तरह थे, जिसकी छाया में पीढ़ियां संस्कारित होती हैं। लोगों के स्वार्थी व्यवहार ने उन्हें जब परेशान किया, तो उन्होंने ऐसे लोगों से संबंध विच्छेद ही उचित समझा। अपने जीवन के अंतिम 18 से 20 साल उन्होंने झारखंड के संथाल जनजातीय समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिए। 29 जुलाई सन 1891 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि लोग आश्चर्य करते हैं कि ईश्वर ने लाखों बंगालियों में कैसे एक मनुष्य को पैदा किया। सबके कल्याण की कामना करने वाले ऐसे महान मनीषी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
2: नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आगे की कहानी जानेंगे। इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों। इसके पहले के एपिसोड्स में हम आपको बता रहे थे गोंड जनजाति के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में, और हम यहां तक पहुंच चुके थे कि बस युद्ध की तैयारियां हो चुकी थी। युद्ध के मुहाने पर दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, रानी दुर्गावती की और मुगल सेना। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में हमने सुना था कि 1564 ईस्वी में गढ़ा की गोंड रानी और दिल्ली के मुगल शासक अकबर के बीच युद्ध पर आ बनी। मुगल सेनापति आसफ खां अकबर की ओर से अपनी विशाल सेना के साथ गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर डट गया। इधर जब गोंड रानी दुर्गावती को स्थिति की जानकारी मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना को सुगठित किया और युद्ध के लिए नरई की तरफ बढ़ गईं। बीच रास्ते में उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया। अनेक लोग उनकी सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो गए। रानी की सेना में 2 से 3 हजार सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में लगभग 50 हजार सैनिक, हाथी और घोड़े थे। कई इफ्तिखार भी अपनी सेनाओं के साथ मुगल सेना में आकर जुड़ गए थे। इस तरह मुगल सेना जहां एक तरफ बहुत विशाल थी, वहीं रानी की सेना उसकी अपेक्षा में बहुत कम थी। रानी को यह भी सलाह दी गई थी कि वो संधि कर लें और युद्ध से बच जाएं, किंतु रानी दुर्गावती युद्ध से मोड़ लेने जैसा कायराना काम कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को ही चुना। कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहां करो या मरो की स्थिति थी। रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एक मत होकर युद्ध करने की इच्छा जाहिर की और एकजुट होकर स्वीकार किया कि जो भी परिणाम होगा उसके वो सामूहिक रूप से भागीदार होंगे, जिम्मेदार होंगे। हमारी विषय विशेषज्ञ और पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना ने हमें बताया था कि गढ़ा की प्रजा रानी का बहुत अधिक सम्मान करती थी। वो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी और इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें इस नरई के युद्ध की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। रानी को याद करते हुए आज भी जस गाए जाते हैं, यानी कि यश गीत गाए जाते हैं। ऐसे अनेक जस हैं जिसमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिख रही थी, पूजा जी ने बताया था। और एक बार फिर से वो सैला लोकगीत आपको जरा सा, उसकी चार पंक्तियां हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तरी नाना मो नाना रे नाना, तरी नाना मो नाना रे नाना, रानी महारानी ओ आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए। पूजा जी फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। फिर से पहले से ही अग्रिम धन्यवाद।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पूजा जी, अब आंखों देखा हाल आपसे सुनना चाहेंगे युद्ध का।
3: जैसा आपने कहा कि गढ़ा की सेना और आसफ खां की सेना दोनों लगभग सामने आमने ही थी
2: जी।
3: युद्ध होने को ही था। हालांकि इतिहास में हमने बहुत से युद्ध देखे हैं
2: जी।
3: युद्ध तो किसी के लिए भी ठीक तो नहीं होता
2: जी।
3: दोनों ओर के लोग मारे जाते हैं युद्ध में
2: जी।
3: किसी के कम मरते हैं, किसी के ज्यादा
2: जी।
3: लेकिन हानि तो होती है। फिर भी सदियों से इंसान दूसरे की भूमि हड़पने के लिए लड़ता आया है। भारतीय परंपरा में आक्रमण करके भूमि जीतने वाला राजा महान नहीं माना जाता, बल्कि प्रेम से, त्याग से, दान से, निर्माण से और सबसे अधिक बलिदान से हृदय जीतने वाला राजा महान होता है
2: जी।
3: इसलिए ये अवधारणा का अंतर हमें भारतीय परंपरा में, भारतीय युद्धों में देखने को मिलता है
2: जी।
3: यहाँ वह राजा महान होता है जो प्रजापालक हो, लोकहित में कार्य करता हो, राज्य की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे। ऐसा राजा, ऐसी रानी हमें प्रिय होती है।
2: बिल्कुल।
3: महानता इसमें नहीं है कि आप कितने साधन संपन्न थे
2: जी, हाँ।
3: आपके पास कितनी विशाल सेना थी या आप कितने बड़े राज्य के मालिक थे।
2: बिल्कुल।
3: महानता इसमें होती है कि जिस परिस्थिति में आप थे उसमें आपने क्या पराक्रम दिखाया
2: जी।
3: आप परिस्थिति का सामना करने की बजाय भाग खड़े हुए या अपनी प्रजा के सम्मान के लिए, राज्य की रक्षा के लिए आप प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटे
2: जी।
3: इन सभी प्रतिमानों पर हमारी लोकप्रिय गोंड रानी दुर्गावती खरी उतरती हैं।
2: बिल्कुल, पूरी तरह जी।
3: उनके पास जो भी साधन थे, संसाधन थे, उसके साथ ही वह विशाल मुगल सेना के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। गढ़ा की सेना को सुगठित किया, अपने वक्तव्य से सैनिकों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में गढ़ा की सेना पूरे पराक्रम से इस युद्ध को लड़ी। गढ़ा राज्य की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती और उनकी प्रजा सर्वस्व बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार थी।
2: पूजा जी, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि रानी दुर्गावती बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी सी कुछ कूटनीति का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो आगे बढ़ने की दिशा थी वो अपनी बदल दी थी, और उससे क्या आसफ खां की सेना चौंकी? आसफ खां चौंका या नहीं, क्या हुआ?
3: जैसा कि हम जानते हैं कि जब रानी की सेना अचानक जंगलों की ओर मुड़ गई
2: जी,
3: नरई आते आते, तो आसफ खां को समझ नहीं आया कि सेना गई कहां।
2: जी।
3: कुछ समय बाद जब उनको यह सूचना मिली कि रानी की सेना नरई की ओर बढ़ रही है, तब उसने जल्दी से अपने दो सेनापतियों नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद को सेना का एक बड़ा भाग देकर आगे आगे जाने को कहा।
2: जी हाँ।
3: वे दोनों मुगल सेना को लेकर नरई की ओर आगे बढ़ने लगे। वहीं सेनापति आसफ खां और अधिक सूचनाएं जुटाता रहा और पीछे बची हुई जितनी सेना थी उसको साथ लेकर नरई की ओर रवाना हो गया।
2: जी।
3: रानी तक भी यह समाचार पहुंचा कि मुगल सेनापति आसफ खां की ओर से नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना की टुकड़ियां घाटी में प्रवेश कर रही हैं।
2: जी।
3: अब जैसी की योजना थी, रानी दुर्गावती ने यह निश्चय किया कि जब मुगल सेना नरई घाटी में प्रवेश कर जाएगी
2: जी,
3: तब उसका सामना किया जाएगा, क्योंकि चारों ओर से ये घाटी पहाड़ों से
2: घिरी हुई थी और इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से गोंड सेना जानती
3: भी थी। एक और नर्मदा नदी थी, दूसरी तरफ गौर नदी
2: जी,
3: तो इस क्षेत्र की अच्छी जानकार थी गोंड सेना। तो ये निश्चित हो गया कि जब नरई की घाटी में सेना प्रवेश कर जाएगी आसफ खां की, उसके बाद ही कोई हमला किया जाएगा
2: जी।
3: तो गोंड सेना भी अपने शस्त्र और अस्त्रों के साथ सुसज्जित थी
2: जी।
3: गोंड सेना में हाथी थे, घोड़े थे और पैदल सैनिक भी थे
2: जी।
3: ये सभी धनुषवाण, ढाल, तलवार, कृपाण, कटार, बर्छी, भाला, ये सब लेकर एकदम तैयार खड़े थे।
2: पूजा जी, युद्ध बिल्कुल लड़ा कब गया, क्या कोई तारीख नजर आती है?
3: बिल्कुल स्पष्ट आईने अकबरी में मेंशन है कि यह युद्ध 1564 ईस्वी में लड़ा गया और तारीख थी 23 जून और 24 जून।
2: अच्छा, यानी ये दो दिन की ये लड़ाई थी
3: कि ये लड़ाई थी। और आज से अगर हम इसको देखें तो 459 वर्ष इसको हो चुके हैं इस युद्ध को, फिर भी ये युद्ध हमारी यादों में आज भी है,
2: आज भी हमारी स्मृतियों में है और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य की हम गाथा की बात कर रहे हैं। तो पूजा जी, हमारे श्रोता भी बहुत बेकरार हैं, बहुत उत्सुक हैं कि आगे युद्ध में क्या हुआ, बताइए।
3: जब रानी को यह पता चला कि आसफ खां की सेना की जो अग्रिम टुकड़ियां हैं वो नरई में प्रवेश करने ही वाली हैं, तो रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थान पर इस प्रकार खड़ी की कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों ओर से उस पर हमला बोल दिया
2: जी।
3: दोनों ही सेना के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। हाथी, घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष, बाण, तीर, तलवार और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा था।
2: अच्छा मैम, रानी दुर्गावती तो नेतृत्व कर ही रही थी सेना का, लेकिन जैसे कि होता है कि पैदल सेना, जैसे अश्व सेना, हाथी सेना, तो ये जो अलग अलग सेनाएं थी, ये जो अलग अलग युद्ध कौशल थे, तो और कौन कौन नेतृत्व करता थे रानी दुर्गावती की सेना में, उनके अगर यदि आप कुछ नाम हमें बता पाएं।
3: हमने जैसा कि पहले बात की थी एक बार कि जब रायसेन पर आक्रमण हुआ था उस समय रानी दुर्गावती जब विजय हुई थी
2: जी,
3: तो उनकी सेना में कुछ मियाना अफगानी जो थे वो भी शामिल हो गए थे
2: जी, जी।
3: और वो ऊंचे पदों तक भी पहुंचे, उनकी सेना में वो सेनापति भी बने
2: जी।
3: तो आपको कुछ नाम याद होंगे जैसे कि शम्स खां मियाना
2: जी, जी।
3: मुबारक बिलूच
2: जी।
3: तो ये जो थे ये अब भी इस नरई की युद्ध में भी शामिल थे
2: जी।
3: और सेनापति के तौर पर शामिल थे और इन्होंने भी बड़ी वीरता पूर्वक इस युद्ध में लड़ा। इसी तरह जैसा कि हमने पिछले अंकों में बात की थी कि जो गढ़ा के राजा थे दलपत शाह
2: जी,
3: जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई तो तो उनका जो पुत्र था वीर नारायण वो बहुत छोटा था, 3-4 वर्ष का रहा होगा।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: अगला राजा जो घोषित किया गया था वो वीर नारायण को घोषित किया गया था और रानी ने उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज संभाला था। तो अब इस समय तक आते आते यानी कि 1564 ईस्वी तक आते आते वीर नारायण लगभग 17-18 वर्ष के रहे होंगे, रानी को शासन करते हुए 14 वर्ष हो चुके थे। तो वीर नारायण 17-18 वर्ष के नौजवान थे
2: जी।
3: बहुत अनुभवी तो नहीं रहे होंगे लेकिन हाँ साहसी थे। इस युद्ध में उनका भी वर्णन आता है, वो भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे
2: जी।
3: तो ऐसे कुछ नाम हमको गढ़ा राज्य की सेना में मिलते हैं।
2: और पूजा जी, क्या रानी दुर्गावती की सेना में एक फौजदार थे जिनका जिक्र इतिहास में आता है, अर्जुन सिंह, उनकी क्या भूमिका थी इस युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध उनके लिए भी काफी याद किया जाता है।
3: इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख बलिदान सर्वप्रथम दिया वो थे अर्जुन सिंह बखीला। उनको अर्जुन सिंह बैस के नाम से भी जाना जाता है और अर्जुन सिंह बघेल के नाम से भी जाना जाता है।
2: अच्छा।
3: तो ये जो अर्जुन सिंह बखीला थे ये रानी की जो हाथी सेना थी उसका संचालन किया करते थे
2: जी।
3: फौजदार थे सेना में
2: जी।
3: और जब युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर रही थी उसी समय अर्जुन सिंह बघेला ने पूरा नेतृत्व संभाल लिया और हाथी की सेना के द्वारा उन्होंने खूब अच्छा संचालन किया
2: जी।
3: आप जानते ही हैं कि मध्य युग में हाथियों का सेना में बहुत अधिक महत्व था
2: जी।
3: हाथी की जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा होती है और ये काफी बलशाली पशु भी है
2: जी।
3: और अपने जो प्रशिक्षक होता है उसकी बात भी बहुत अच्छे से मानता है, इसलिए सेना में हाथियों का खूब उपयोग होता था और हाथी की सेना का जो संचालन करता था उसका भी बहुत ही महत्व था। तो इस पूरे युद्ध में अर्जुन सिंह बघेला का संचालन बहुत महत्व रखता था
2: जी।
3: तो जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर गई तो सबसे पहला सामना अर्जुन सिंह बघेला ने ही किया और उन्होंने काफी वीरतापूर्वक युद्ध किया
2: जी।
3: लेकिन शाम होते होते अर्जुन सिंह बखीला वीरगति को प्राप्त हो गए और ये गढ़ा राज्य के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति थी।
2: निश्चित रूप से कि जिस सेना में हाथी सेना का बहुत, जिस युद्ध में बहुत ज्यादा महत्व हो, उसके जो फौजदार हैं जो हाथी सेना का संचालन ही कर रहे थे वो बहादुरी से लड़े और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये एक बड़ा सेटबैक था, ये अपूर्णीय क्षति थी गोंड सेना के लिए। वाकई श्रोताओं, पूजा जी ने हमें एक बहुत अहम जानकारी ये भी अपने पिछले अंकों में दी है कि एक बहुत बड़ा कारण हाथी भी थे गोंड राज्य पर कब्जा करने के लिए, जो अन्य शासक थे वो क्यों ललायत रहते थे। कहते हैं कि उस समय उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हाथी पाए जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छी और नई जानकारी निकल करके आई है, क्योंकि हम आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ बहुत सारे हाथी आज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उस समय वो वन क्षेत्र कितना सघन रहा होगा और कितनी उपजाऊ वो भूमि रही होगी कि वहाँ पर हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जीव के लिए परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल रही होंगी। तो पूजा जी, जब अर्जुन सिंह बैस वीरगति को प्राप्त हुए तो युद्ध उसके बाद भी जारी रहा, क्या इस पूरी बात से गढ़ा सेना का जोश कुछ कम हुआ?
3: युद्ध अपने चरम पर था, दोनों ओर की सेनाएं जोर शोर से लड़ रही थीं, खूब तीर तलवार ढाले बर्छे सब चल रहे थे
2: जी।
3: कोई कमी नहीं थी। एक योद्धा के जाने से सेना रुक नहीं जाती,
2: बिल्कुल।
3: वो तो अपने बराबर जिस उद्देश्य को लेकर चली है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करती है
2: जी।
3: तो गढ़ा की सेना भी अपना पूरा दल बल के साथ में लगी हुई थी
2: जी।
3: युद्ध जारी था। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा
2: जी।
3: सूरज की रोशनी भी अब मध्यम हो चली थी
2: जी।
3: पर गढ़ा की सेना का जोश कम नहीं हुआ था
2: जी।
3: लगातार तीर भाले तलवार की आवाजें गूंज रही थी। दोनों ओर से कई सौ सैनिक मारे जा चुके थे
2: जी।
3: फिर भी युद्ध तो अपनी गति पर था
2: जी। तो क्या जब शाम हो चुकी थी तो शाम के बाद भी, सूरज ढलने के बाद भी तब युद्ध होता था?
3: नहीं, जैसा कि पुराने युद्धों में नियम है
2: जी
3: कि शाम ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
2: जी।
3: आपने कभी ध्यान दिया हो तो भारतीय परंपरा में युद्ध जैसा कोई शब्द ही नहीं है।
2: अच्छा।
3: वास्तव में युद्ध एक अधूरा शब्द है, पूरा शब्द है युद्ध कला।
2: अच्छा।
3: युद्ध को भी एक कला के तौर पर देखा जाता है और कला में हमेशा नियम होते हैं,
2: नियम होते हैं
3: और सभी को उसका पालन करना होता है।
2: क्या बात है।
3: इसलिए युद्ध में जो नियम रख दिए जाते हैं कि जैसे कि शाम को नहीं युद्ध लड़ना है, सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा, सूरज ढलने के बाद आपस में कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा, या युद्ध के समय किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा, ये सब सुनिश्चित होता है। इसीलिए हम बहुत सारे युद्धों में ऐसा देखते हैं कि जब भारतीय युद्ध लड़ते थे तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे
2: जी।
3: और उसके कारण कई बार हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी पराजय भी हमको झेलनी पड़ी
2: जी।
3: लेकिन नियमों पर अडिग रहे और कभी भी उन्होंने नियमों को नहीं तोड़ा
2: जी।
3: तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो अब युद्ध इस दिन का यानी 23 जून का
2: जी।
3: अब समाप्ति की ओर था
2: जी।
3: पर युद्ध बराबर तेजी से लड़ रहे थे, हालांकि काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे
2: जी।
3: गौंड सेनापति भी पूरी बहादुरी से अभी तक लड़ रहे थे
2: जी।
3: आखिर सूरज ढलने लगा और पहले गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की ओर धकेल दिया।
2: वाकई श्रोताओं, कितनी अद्भुत जानकारी है ये कि ये तो हमें पहली बार पता चला कि युद्ध कोई शब्द हमारे इतिहास में होता ही नहीं था। पूरा जो शब्द है वो है युद्ध कला। युद्ध को हम सब भारतीय कला के रूप में देखते थे और पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी और वास्तविक जानकारी दी कि कला में हमेशा नियम होते हैं, कला नियमों में बंधी रहती है तभी वो कला कहलाती है। और भारतीयता में ये बात कही गई कि सूरज ढलने के बाद युद्ध कला जारी नहीं रहेगी, हथियार रख दिए जाएंगे और जो लोग थोड़ी देर पहले तक सूरज की किरणों में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते थे वो वहां पर अपनी अपनी तलवारें अपने म्यान में डाल दिया करते थे। तो ये कितनी वाकई अद्भुत बात है युद्ध कला की।
3: तो इस दिन का युद्ध समाप्त होने को था, दोनों सेनाएं खूब जोर शोर से लड़ रही थी, लेकिन इस तरफ देख रहे थे कि सूरज ढलने को था
2: जी।
3: और बस गढ़ा की सेना ने कमाल दिखा दिया, मुगल सेना को पीछे धकेल ही दिया।
2: वाह।
3: नरे की घाटी से आसफ खां की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया और इस तरह आप मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची खुची सेना लेकर घाटी से वापस भाग गए और रानी दुर्गावती की विजय हुई।
2: तो पूजा जी, क्या जो विजय थी, जो 23 जून को जो विजय हुई, ये इसके पीछे रानी की कूटनीति का ही कमाल था? क्योंकि पहले तो दूसरी तरफ से आने वाली थी, फिर रास्ता बदला और उस तरफ से आई जहाँ के उस पूरे इलाके का उनको ज्ञान था और जो ऊंची ऊंची जगहों पर आपने कहा कि हाथी जैसे जीव के ऊपर जब बैठ करके ऊपर से वार किया जाता है तो वो विरोधी के लिए मुश्किल होता है, तो फिर तो हाथी इनके पास भी थे। लेकिन रानी ने दक्षता विशेषज्ञता ये दिखाई कि वो घाटी में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उन्होंने अपने सैनिकों को और शूरवीरों को भेजा, तो क्या इस कूटनीति से उनको लाभ मिला?
3: प्रकृति की जानकारी होना गोंड जनजाति की विशेषता है
2: जी।
3: और यही विशेषता इस पल पर उनके काम आई। जब उनके पास एक बहुत छोटी सेना थी, आकस्मिक आक्रमण हुआ था, तो ये सब जानकारियां उनके लिए तो जैसे सकारात्मक ही थी
2: जी।
3: और रानी ने अपने पराक्रम से, अपने संकल्प से ये कर दिखाया कि इतनी छोटी सेना होते हुए भी उन्होंने एक विशाल सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
2: वाकई ये कमाल की बात है। और देखिए श्रोताओं, कितनी अद्भुत ये बात है कि यदि हमें अपने इलाकों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, ख़ास तौर से जब हम उस दौर की बात करें, राजाओं की बात करें, तो राजा सिर्फ अपने महल में बैठकर ही राजकाज नहीं किया करते थे। जब तक कि वो रानी दुर्गावती की तरह बाहर नहीं घूमते थे, अपने इलाके में नहीं जाते थे, तब तक उन्हें ये जानकारी हो ही नहीं सकती थी कि किस तरफ नदी है, कहाँ नदी का घाट है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी है और कहाँ आने जाने का रास्ता है। और यदि ये जानकारी रानी के पास नहीं होती तो निश्चित रूप से इस युद्ध में उनकी हार हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम सेना थी रानी दुर्गावती के पास। अदम्य साहस और शौर्य तो था ही, लेकिन बहुत सटीक जानकारी थी युद्ध कौशल होने के साथ साथ। फिर वहां उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, एक ओर मां नर्मदा का उन्हें आशीर्वाद मिला, दूसरी ओर घाटी थी, और फिर बाकी काम उन सभी लोगों की वीरता ने कर दिखाया। तो मैम, जैसे कि आपने ये कहा, आईना अकबरी में भी 23 जून और 24 जून की इस लड़ाई का उल्लेख मिलता है। 23 जून को तो विजय हो ही गई थी और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो 24 जून की बात तो हम अपने अगले अंक में करेंगे, लेकिन क्या कोई और भी हमें साक्ष्य मिलता है जो इस युद्ध का उल्लेख करता हो?
3: जी हाँ, गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत प्रमाणिक स्रोत है। रामनगर मंडला में एक शिलालेख लगा है जिसमें गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी शिलालेख में रानी की विजय के बारे में भी एक श्लोक है।
2: वाह।
3: ये श्लोक संस्कृत में है और श्लोक इस प्रकार है कि अक्षय हीणनीय अमृत भूतलेन यातम रणे तेन महाभटेन बल विजित्या अपि समस्तम अस्य दुर्गावती भीम पराक्रमेण। यानी कि जिस महाभट्ट ने युद्ध में अक्षिणी सेना को अमृत की तरह भूमि पर प्रवाहित कर दिया और बल को जीतने के बाद भी उसकी दुर्गावती भीम पराक्रम से संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया, ऐसी दुर्गावती को प्रणाम।
2: वाह, तो मतलब और भी साक्ष्य मिलते हैं। आईना एक बरी के अलावा भी मध्य प्रदेश में ही मंडला में साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं कि उस लड़ाई के बारे में ये स्पष्ट वहाँ पर अभिलेखित है, वहाँ पर उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार पिछले कुछ एपिसोड से बनी हुई हैं हमारे कार्यक्रम में और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं गोंड राजवंश के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में। आगे भी ये कहानी जारी रहेगी, आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुल इस युद्ध का 2 दिन का उल्लेख मिलता है। यदि तारीख की बात करें तो आज से 459 साल पहले की बात थी, 23 और 24 जून 1564 को ये युद्ध लड़ा गया। जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया कि पहले ही दिन रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और मुगल सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले अंक में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए देश के चैनल देश के लिए, रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा बस एक अंतराल के बाद।
4: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: स्वस्थ जीवन का आधार है स्वस्थ मन, मस्तिष्क और शरीर। योग हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन मस्तिष्क को भी संवारता है, सहेजता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। इसी विषय पर आधारित प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम योग संवाद।
4: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन की राह में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके सामने मन ठिठक कर पूछता है, ये क्या था? हमारा कर्म, हमारी नियति या कुछ और? हम अक्सर उस शक्ति को जो हमारी समझ से परे है दैव कह देते हैं और फिर अपने प्रयासों को उसके सामने छोटा मान बैठते हैं। लेकिन योग वासिष्ठ दैव को केवल भाग्य की रेखा मानकर स्वीकार करने के बजाय उसके स्वरूप पर गहराई से विचार करता है। ये ग्रंथ हमें उस दृष्टि तक ले जाता है जहाँ दैव कोई ऐसा आदेश नहीं जिसके सामने मनुष्य विवश होकर बैठ जाए, बल्कि जीवन में हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे संकल्प और हमारी चेतना सब मिलकर उस दिशा का निर्माण करते हैं जिसे हम कभी कभी दैव का नाम दे देते हैं। और यहीं से जन्म लेती है सत्कर्म की प्रेरणा, क्योंकि यदि हमारे कर्म ही जीवन की धारा को दिशा देते हैं तो हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म को अधिक निर्मल, अधिक सार्थक और अधिक कल्याणकारी बनाने का उत्तरदायित्व भी हमारा ही है, उत्तरदायित्व भी हमारा ही है। तो आज योग संवाद में आइए योग वासिष्ठ के इसी गहन संदेश की ओर चलें कि दैव वास्तव में क्या है, उसका स्वरूप क्या है और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को किस प्रकार अधिक उज्जवल बना सकता है। आइए समझें कि दैव को जानने की यात्रा अंततः हमें कैसे अपने कर्मों को पहचानने तक ले जाती है, और ये भी कि सत्कर्म केवल जीवन को बदलने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग भी है। आज इस चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
5: नमस्कार।
4: पिछले अंक में बहुत ही रोचक चर्चा रही और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं कि हमने बात की थी पुरुषार्थ की और प्रारब्ध की, और कई बार पुरुषार्थ को देखकर कर्म करना मनुष्य बंद कर देता है। तो जब उद्योग का नाश होता है या कर्म से मनुष्य विरत होता है तो उसका परिणाम क्या होता है?
5: उसका परिणाम ये होता है कि वो फिर अपने पुरुषार्थ, जिसके द्वारा वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करता है, वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दैव के भरोसे बैठे रहने वाले लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं और आलस्य से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है।
4: तो
5: ऐसे में बार बार इस बात के लिए वशिष्ठ जी राम को प्रेरित कर रहे हैं कि राम, ये विभिन्न लोगों को जो देख करके आपके अंदर ये वैराग्य आया है कि ये कर्म से अपने अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो अभीष्ट है ये इनका प्रयत्न तो है, लेकिन जो पूर्व के जो कर्म हैं ये कर्म भी वर्तमान में आने वाले परिणामों में अपनी भूमिका, महती भूमिका निभाते हैं।
4: जी जी।
5: इसलिए कई बार हम लोग अच्छा करने के बाद भी उस कर्म के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं करते और कहते हैं कि शायद हमारे में कोई कमी रह गई। नहीं, ये भाव भी हमारे चित्त में न आए, क्योंकि हमारे अंदर अगर ये भाव भी आएगा तो फिर हम कर्म करने में जो कुशलता है वो बाधित होगी।
6: जी जी।
5: तो इससे वो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें पूर्व का जो कर्म जिसे प्रारब्ध कर्म कहा गया उसकी भी भूमिका हो सकती है या होती है। तो इसलिए आप फोकस किसी चीज पे होइए तो सिर्फ कर्म पर होइए। कर्म ही वो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आप कर्म फल को बदल सकते हैं। कर्म फल कभी भी नहीं बदलता बिना कर्म में परिवर्तन के। कहा भी जाता है कि जो आप आज कर रहे हैं अगर वही आप कल भी करेंगे तो कल भी वही प्राप्त होगा जो आज प्राप्त हुआ है।
6: बहुत ही सुंदर बात, बिल्कुल
5: है ना?
6: बिल्कुल।
5: तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिणाम बदले, आप मनचाहा परिणाम पाएं, तो निश्चित ही आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिन कर्मों के द्वारा आप मनचाहे परिणाम की सिद्धि कर सकें।
6: बहुत ही सुंदर संदेश ये हो गया। देखिए कई बार होता है ना कि मनुष्य कहता है कि साल हो गए, बरस बीत गए, हमारा जीवन वैसा ही चल रहा है, जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। लेकिन देखने की जरूरत यह है कि आपके जीवन में परिवर्तन जो नहीं हो रहा है, आपके कर्मों में क्या परिवर्तन
5: क्या परिवर्तन हो। बिल्कुल।
6: अगर आपकी दिनचर्या में आपके कर्म में परिवर्तन होगा तभी फिर जीवन में परिवर्तन होगा।
5: जी।
6: तो ये बात वहां भी जाकर जुड़ती है।
5: एक सामान्य बात देखिए ना कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो हर आदमी अच्छे परिणाम का मतलब अपेक्षा लेके बैठा है। लेकिन जब उससे पूछो, उसी से पूछो कि जिस परिणाम की कामना आप करके बैठे हैं या जिस परिणाम के प्राप्त होने पर आपको आनंद होगा, उस परिणाम को पाने के लिए क्या कर्म जो आप कर रहे हैं ये संतोषजनक है, वही कह देगा कि नहीं है।
6: नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल।
5: वो इस बात को भी जानता है कि हमारा कर्म इस योग्य नहीं है कि हम उस परिणाम को हासिल कर सकें।
6: लेकिन
5: वो परिणाम को पाना चाहता है और कर्म पर जोर लगाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से फिर वो परिणाम नहीं मिलता, उसके जीवन में दुख आता है।
6: सारा श्रम कामना में है, कामना करता है,
5: कामना करता है
6: श्रम के लिए, मतलब कर्म की तरफ उसका रुझान नहीं है।
5: जी।
6: अच्छा, मन और शरीर कैसे काम करते हैं इसकी भी चर्चा मुझे नजर आई थी अंक में, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी भी व्याख्या आप करें।
5: जी, साक्षी जो चेतना है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, चाहे वो बॉडी कॉन्शियसनेस हो, चाहे माइंड कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हो, किसी भी प्रकार की जो चेतना है वो चेतना मूल रूप से साक्षी है। तो चेतना में पहले जैसे विषय की अनुभूति होती है वैसी ही वो चेष्टा करता है। चेतना में जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी वैसे ही वो चेष्टा करेगा।
6: अच्छा।
5: ये इस विज्ञान है, आप देखें।
6: अच्छा।
5: तो अब मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है और शरीर की क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। यानी मन जैसा विचार करता है वैसा ही शरीर व्यवहार करता है। इसको महात्मा बुद्ध भी कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम हो जाते हो,
6: हो जाते हो।
5: तो ऐसे में आपको सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन लाना होगा
6: विचार
5: में। इसीलिए इस ग्रंथ में विचार का भी बहुत बड़ा महत्व है कि सद विचार होने चाहिए। आप खुद ही जो कर्म कर रहे हैं और जिस परिणाम को आप पाना चाह रहे हैं इसको अगर आप शांतिपूर्वक विचार पूर्वक देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच भेद है। और वो भेद जब तक वो गैप भरेगा नहीं तब तक आपको पूर्णता की न प्राप्ति होगी, ना आप संतुष्ट हो पाएंगे, ना सुखी हो पाएंगे। जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो जीवन की विडंबना यही है, हमारी चाहना और हमारा कर्म इन दोनों के बीच का योग नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कभी दुख का भी वियोग नहीं होता, दुख बना होता है हमेशा।
6: जी, जी।
5: तो योग जो है वो दुख के संयोग का वियोग कराता है, गीता में भगवान ने कहा।
6: जी, जी।
5: और ये तभी होगा जब दुख का संयोग जिन कारणों यानी जिन कर्मों से हो रहा है उन कर्मों को परिवर्तित किया जाए, तो निश्चित ही परिणाम अपने आप बदल जाएगा। तो मन के अनुसार शरीर व्यवहार करता है और वही व्यवहार फल की सिद्धि का कारण बनता है। तो लोक में जहां जहां जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वहां वैसे वैसे पौरुष के उपयोग के द्वारा लौकिक वैदिक फल की भी सिद्धि होती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि जो साक्षी चेतना है उसमें जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी उसी तरह के विषय के अनुसार जो है मन में विचार आएगा और उसी विचार के अनुसार कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी। ऐसा कहा भी है इन्होंने कि मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वही तो पौरुष है। अब आप देखिए कि आपका पौरुष आपके पुरुषार्थ के नष्ट करने पर लगा है। पौरुष का मतलब यह भी है कि आप कह लें, संकल्प कर लें कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को नहीं करने में लगा दिया। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ कि आप जीवन में अच्छा चाहेंगे नहीं। आप नहीं करेंगे ये संकल्प आपने ले लिया, लेकिन आपके जीवन में बुरा हो या आप नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जीवन में अच्छा हो, लेकिन मैं कुछ अच्छा न करूं ये नहीं संभव हो सकता। तो इसलिए बार बार यहाँ पर वशिष्ठ जी इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों को सजग कर रहे हैं
6: जी, जी।
5: कि आप अपने प्रयत्न को करें और प्रयत्न के द्वारा जो है आप संसार में जो कामना चाहते हैं उसकी सिद्धि हो सकती है।
6: तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि जिस तरह का हमारा विचार होगा उसी तरह का हमारा कर्म भी हो जाएगा, इससे उसका परिणाम निर्धारित होगा।
5: महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य दैत्यराजों के गुरु बने हैं।
6: अच्छा।
5: तो बिना पुरुषार्थ के इस संसार में अगर कोई किसी प्रकार के फल की कामना करता है तो ये निहायत ही बेमानी होगी और ये कभी भी संभव नहीं है। आपको बिना पुरुषार्थ के आप चाहें कि मनचाहा परिणाम पालें, ये संभव नहीं है।
6: अच्छा, ये बताएं कि संपूर्ण शास्त्रों का सारांश क्या है?
5: जी, संपूर्ण शास्त्रों का सारांश वो कह रहे हैं कि शास्त्रों के अभ्यास और गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न से जो है पुरुषार्थ की सिद्धि की जा सकती है और यही जो है संसार में समस्त शास्त्रों का सार संग्रह है कि कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए, यही सारे शास्त्र कह रहे हैं
6: जी।
5: कि आपको हमेशा प्रयत्न शुभ कर्मों के प्रति, यानी जो कर्म आपको शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करे
6: जी,
5: उस पर ध्यान देना है।
6: और
5: जहां जहां भटकाव की स्थिति है, जहां आपको लगता है कि ऐसा करके, और एक बात और देखिए कि अगर हम निरपेक्ष होकर के अपना आत्मन्वेषण करें
6: जी,
5: तो आपको लगेगा कि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता।
6: बिल्कुल, ये सच है।
5: लेकिन हम हमेशा दूसरों से अपनी पुष्टि चाहते हैं या दूसरे हमको नया नया चीज बताने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आदमी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जिसको गोस्वामी जी कहते भी है कि उपदेश कुशल बहुतेरे पर सिखवन के बुद्धि घने रे। तो जितना भी आदमी के पास बुद्धि है वो सब वो दूसरों को ठीक करने में लगाने में लगा है। उस बुद्धि का तनिक भी उपयोग अपने को ठीक करने में
6: नहीं
5: लगाना चाहता। आप देखें जगत में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसकी लंबी लिस्ट लेके लोग बैठे हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाए कि जो आप चाह रहे हैं उसमें आपका योगदान क्या है, तो शायद वो मौन हो जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के बदलाव हमेशा अपने आप से शुरू करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ी मूर्ता लोगों में है कि लोग सोचते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। सच ये है कि जब आप बदलते हैं तो दुनिया में बदलाव की संभावना होती है। जितने भी महापुरुषों की कहानी है वो कभी भी आप देखिए तो दुनिया में क्या हो रहा है इसको बदलने के लिए नहीं, सबसे पहले वो बदलाव उन्होंने खुद में किया है।
6: बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि अगर आप दुनिया को बदलने चले तो आप हमेशा परेशान रहेंगे क्योंकि वो संभव नहीं है
5: जी।
6: तो आपने बताया कि शास्त्रों का अभ्यास, गुरु का उपदेश और प्रयत्न, ये संपूर्ण शास्त्रों का सारांश है।
5: हाँ, ये जो तीनों जब मिलेंगे तो आपके अंदर जो होगा अशुभ कर्म से आप अपने चित्त को हटाएंगे और शुभ कर्म में अपने चित्त को लगाएंगे, तो फिर ऐसे में परिणाम तो फिर शुभ होगा ही होगा। तो इसके लिए ये तीनों की जरूरत है। गुरु का मतलब यहाँ ये भी ध्यान रखें कि ऐसा गुरु जो शास्त्रों में जो ज्ञान है उस ज्ञान का वो सजीव रूप हो। इसीलिए देखिए गुरु के जो पदचिन्हों की पूजा हम करते हैं, गुरु चरण की बात हमेशा होती है। तो गुरु चरण का मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि आपके पदचिन्ह बता रहे हैं कि आप क्या हैं। तो जो ज्ञान हम दूसरों से सुन रहे हैं वही ज्ञान जब गुरु देता है तो वो ज्ञान हमारे जीवन में अंगीकार क्यों होता है? क्योंकि गुरु उस ज्ञान के अनुसार उसी पथ का अनुगामी होता है। गुरु ऐसा नहीं है कि ज्ञान उसका कुछ और है और कर्म कुछ और है, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अपन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि मेरे मन के दर्पण को गुरु के चरण धूल से साफ किया जाए। अब आप सोचिए कि आप दर्पण के धूल साफ करते हैं।

0: माँ और पिता के द्वारा आएगा, और उसके बाद जिस आचार्य के पास जाता है उस आचार्य में भी देवत्व होना चाहिए, आचार्य देवो भव, तब वो दैवी गुणों से संपन्न होगा और दैवी गुणों से संपन्न होकर के ही वो शुभ कर्म का कर्ता बनेगा। शुभ कर्म का कर्ता बनेगा तो शुभ फल की प्राप्ति भी करेगा, जीवन में संतोष भी होगा, शांति भी होगी। तो ऐसे में ये बात बताई गई, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, प्रयत्न तो करना ही होगा, क्योंकि दैवी और आसुरी संपदा ये हर मनुष्य में है। भगवान गीता में कहते हैं कि दो तरह की संपदाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो आपके अंदर पहले तो देवत्व का खुद विकास होना चाहिए। आप सामान्य जीवन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एक जीवन को जन्म दिया, अब वो जीवन किन पद चिन्हों पर चलेगा और उस पर चल करके सुरक्षित पल्लवित और पुष्पित होगा, वो पद चिन्ह तो आप ही के द्वारा निर्धारित करने पड़ेंगे।
1: और अक्सर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव को जिस अर्थ में लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि माँ जो है वो देव है, देव है, जबकि भव की बात,
0: भव की है, बनो
1: बनो,
0: है हो नहीं तुम,
1: वो है नहीं, बनने
0: की बात
1: है ना, तो ये भी संदेश है उसमें।
0: संदेश है जी।
1: जी जी। अच्छा, तो आपने सत्कर्म सद्बुद्धि की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो सद्बुद्धि है वो विकसित कैसे होती है?
0: सद्बुद्धि विकसित होती है सदशास्त्रों और सत्संग के सेवन से। बिना इसके जो है आप सद्बुद्धि के साथ नहीं हो सकते, दुर्बुद्धि आपकी होगी, क्योंकि विषय जो है वो हमेशा आपके इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा। तो विषयानुगामी जो लोग हैं वो दुर्बुद्धि के शिकार होंगे, इन किन प्रकारेण उन विषयों की प्राप्ति में लग जाएंगे। सद्बुद्धि जो है आपको विवेक देगी, विवेक के द्वारा आप सद का चिंतन करेंगे और सत्संग कर पाएंगे। सत्संग का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि बैठ के सद चर्चा सुने, ये नहीं है। शब्द देखिए, शब्द ये कह रहा सत्संग, संग कि सत का संग करो, यानी सत के साथ आप रहो, सत व्यवहार में लाओ।
1: जी जी,
0: लेकिन हम लोग सत्संग सिर्फ वाणी मन वचन से करना चाहते हैं, कर्म से नहीं। जब तक सत कर्म में नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं होगा।
1: तो सत के साथ रही,
0: सत के साथ रही,
1: बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है इसमें श्री राम के मन में बहुत से प्रश्न थे जो उन्होंने अपने गुरु के समक्ष रखे, जिसका निराकरण वो कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने भी श्री राम के सम्मुख कुछ प्रश्न रखे हैं, इस पर अगर चर्चा हो तो।
0: जी, अच्छा, बिल्कुल
1: जी।
0: वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि श्री राम बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर पराक्रमी बुद्धिमान और पंडित हैं वे किस दैव की प्रतीक्षा करते हैं? कितना सुंदर सवाल। जैसे अगर ये कहें कि हम आज भी अगर ये सवाल बच्चों से कहें कि आप जिन भी सलाका लोगों को जानते हैं, सलाका पुरुषों को जानते हैं, वो क्या दैववश हैं? आप देखिए प्रेत प्रसंगों में कैसे कैसे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी आपदाएं आती हैं कि लगता है जीवन यहीं समाप्त हो गया, लेकिन वहां उस जगह पर वो ऐसा संकल्प लेते हैं कि पूरी दुनिया उनको देखने की तरफ उत्सुक हो जाती है।
1: जी जी।
0: और वहां पर वो इतिहास रच देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मन का संकल्प और आपका प्रयत्न पूरा परिणाम बदल देने, यानी पूरी आपकी जो कह सकते हैं जो आपने अर्जित किया है, चाहे प्रारब्धवश और चाहे अपने प्रयत्न से, वो पूरा परिणाम बदल देने का सामर्थ्य रखता है आपके सदसंकल्प और सदकर्म के द्वारा। तो ऐसे में वो कहते हैं कि बताओ कौन दैव की प्रतीक्षा किए हैं? इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष के प्रभाव से ब्रह्मणत्व प्राप्त किया। जो विश्वामित्र आपको लेने आए हैं, ये अपने पौरुष से जो ब्रह्मऋषि बने हैं, राजर्षि से ब्रह्मऋषि का इन्होंने यात्रा की है, ये पौरुष का परिणाम है और किसी साधन से नहीं मिला है इनको। अब ये दैव के भरोसे बैठ जाते तो ये सिद्ध होता क्या?
1: संभव नहीं होता।
0: तो कहते हैं राम जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी देव पुरुष जो पराक्रमी है, बुद्धिमान है, पंडित है, वो दैव की प्रतीक्षा में रह करके अपने उन गुणों को विकसित किया है। वो जो कुछ भी किया है वो प्रयत्न से सिद्ध किया है, यानी क्रियमाण जो आपका वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ से उसकी सिद्धि हुई है, इसलिए पुरुषार्थ ही करने योग्य है। और दैव का जो है सहारा लेना, मैं समझता हूं कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है, दैव भी पूर्व का पुरुषार्थ है, न कि कोई ऐसी घटना जो अनायास घटी है।
1: अनायास घटी है, बिल्कुल। तो वशिष्ठ जी ने ये प्रश्न श्री राम के समक्ष रखा, और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी के समक्ष श्री राम ने एक जिज्ञासा रखी कि दैव क्या है, हाँ?
0: जी जी।
1: जो लोक में प्रचलित है, तो इसे समझाइए कि वशिष्ठ जी ने कहा क्या।
0: श्री राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह दैव क्या है, किसे कहते हैं दैव? ये राम जी कहते हैं, क्योंकि लोक में तो राम जी भी देख रहे हैं ना कि दैव भरोसे लोग बैठे हुए हैं। और आपने सुना होगा रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा, जब विनय कर रहे हैं राम जी, तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि ये लोक प्रचलन में तो है, तो इसको बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, अवश्यंभावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ अशुभ भोग है, उसी को दैव शब्द कहा जाता है। अब देखिए कितना सुंदर कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा किए हुए कर्म का जो फल भोग है, चाहे वो शुभ हो
1: चाहे वो अशुभ हो,
0: तो ऐसे में वो किसका परिणाम है? वो कर्म का परिणाम है।
1: जी, जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: उस फल को लोगों ने दैव नाम दे दिया। तो हम लोगों ने कर्म फल को दैव नाम दे दिया, जबकि कर्म फल कर्म के अधीन है।
1: जी, जी,
0: दैवाधीन कर्म नहीं है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कर्म के अधीन जो फल है उसको हम दैव कहते हैं, ये वशिष्ठ जी कहते हैं।
1: जी जी।
0: उसी को दैव कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है, उसी को दैव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यंभावी फल है, वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित होता है।
1: जी, जी जी। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या उन्होंने की। और देखिए कर्म की इतनी बात हुई।
0: जी, जी, जी।
1: कि कर्म से ही सारे समाधान है।
0: जी, जी।
1: तो मन में एक सहज प्रश्न आता है कि मनुष्य के कर्म का निर्धारण कौन करता है?
0: क्या बात है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मनुष्य के मन में जो पहले से अनेक प्रकार की वासनाएं थीं, वे ही इस समय कायिक वाचिक और कर्म रूप में परिणत हुई हैं। मन की जो वासनाएं हैं वही आपके शरीर के कर्मों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, और शरीर में जो आपकी स्थिति है वो उस रूप में वो परिणत होती हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र ही वैसा कर्म करता है।
1: जी।
0: अब आप देखिए किसी व्यक्ति के कर्म से उसके मतलब चित्त की वासना या उसके मन की वासना को भी आप आसानी से जान सकते हैं।
1: जी।
0: वो कोई और कर्म कर ही नहीं सकता जो उसके मन की वासना से अलग हो।
1: बिल्कुल।
0: अब यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा घोष है ये कि मन में जो वासनाएं होती हैं, शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जन्म मरण का जो चक्र है वो भी मन की वासनाओं की वजह से है, तृष्णा की वजह से है, कि मन में तृष्णा रह जाती है, इस नाते उस भोग के लिए फिर आपको एक शरीर धारण करना पड़ता है। अगर तृष्णा शांत कर दी जाए तो फिर जन्म मरण का जो भवरोग जिसको आप पूछा था, तो वो भवरोग से मुक्ति मिल जाएगी। भवरोग जन्म और मरण ही है मूल रूप से देखें तो।
1: जी जी जी
0: जी।
1: अच्छा, मन की बात इतनी हुई तो ये बताएं कि मन की कितनी संज्ञाएं हैं, कितने नाम हैं?
0: वशिष्ठ जी कहते हैं मन को विभिन्न नामों से या विभिन्न संज्ञाओं के द्वारा कहा गया है। मन को चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की ही संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है।
1: चित्त वासना
0: कर्म, दैव और निश्चय, ये सब मन की ही संज्ञाएं हैं जिसको व्यक्ति कठिनता से समझता है, लेकिन है ये सत्पुरुष कहते हैं ये सब मन के ही विभिन्न नाम हैं, क्योंकि ये सब मन में ही उत्पन्न होते हैं। निश्चय भी आप मन से करते हैं।
1: जी, जी।
0: कर्म भी बिना मन के नहीं होता। दैव जो कह रहे हैं आप फल, वो फल भी किसी कर्म का ही परिणाम है।
1: जी,
0: तो वो
1: जी।
0: भी मन का ही हिस्सा है।
1: हाँ।
0: चित्त में जो साक्षी चेतना है, उस चेतना में जो विषय का चिंतन होता है, उसी विषय के अनुसार मन विचार करता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और उस विचार के अनुसार शरीर कर्म करता है। तो ऐसे में मन और शरीर का दोनों का गहरा संबंध है। तो शरीर के द्वारा जो कर्म होता है या चित्त में जो वासनाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं मन की ही संज्ञाएं हैं, उसको एक रूप में मन का नाम दिया जा सकता है।
1: अच्छा, अभी हमने बात की कि कर्म का निर्धारण वासना से होता है, तो वासना का बहाव किस तरह से होता है?
0: वशिष्ठ जी राम से कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा शुभ कर्म की तरफ लगाए और अशुभ मार्ग से हटाए। तो वासना का जो बहाव है वो देखें तो वो शुभ और अशुभ, इसलिए देख सकते हैं वासनाएं दो प्रकार की मानी गई हैं।
1: जी जी।
0: शुभ वासना और अशुभ वासना।
1: वासना
0: अब ये दोनों किसी न किसी फल की वासना में हमेशा फल की कामना होगी, क्योंकि फल तो रहेगा ही, तभी तो शुभ कर्म करके आप शुभ वासना की पूर्ति करेंगे
1: जी जी।
0: और अशुभ कर्म करने लगे तो अशुभ वासना की पूर्ति होगी। तो ऐसे में जो ये दोनों बहाव है, वासनाएं इसी रूप में बहती हैं, शुभ और अशुभ नदी जैसे बहाव है, दो पार्ट हैं उसके। ठीक है।
1: और जिस वासना के हम अधीन हुए उस तरह का हमारा कर्म हो जाता है,
0: कर्म हो जाता है, या उस तरह का कर्म करके हम उस फल को प्राप्त करते हैं।
1: प्राप्त करते हैं। बिल्कुल।
0: तो वो कहते हैं कि ऐसे में जो विवेकवान लोग हैं उनको अशुभ मार्ग से यानी जो अशुभ वासना की तरफ आपका चित्त बह रहा है वहां से हटा करके शुभ मार्ग में उसको लगाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना। और ये होगा कैसे? प्रयत्न से होगा, प्रयत्न पूर्वक, यानी पुरुषार्थ के द्वारा ये सिद्ध होगा। आप सोचें कि अपने आप हो जाएगा, दैव भरोसे बैठने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप पुरुषोचित कर्म करेंगे तब जाकर के इसकी सिद्धि होगी।
1: अच्छा, इसमें चित्त के विषय में भी चर्चा है आगे, तो मैं चाहती हूँ ये बताएं आप कि मनुष्य का चित्त कैसा होता है, क्या बताया गया है?
0: वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। जैसे आप बच्चों को देखते हैं ना, बच्चे कैसे खेलते रहते हैं, क्षण भर में वही खिलौना फेंक देंगे, फिर दूसरे की मांग करेंगे, मतलब कहीं चित्त में स्थिरता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का चित्त है वो शिशु के समान चंचल है, उसे अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में जाता है। इसलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य मार्ग में लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मन शांत बैठेगा। एक संत है वो कहते भी हैं कि शांति जो है, शांत अमन की अवस्था है
1: जी।
0: मन की अवस्था नहीं है। मन तो हमेशा प्रवाह में होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वासना की जो नदी है,
1: हाँ।
0: जो शुभ और अशुभ वासना की
1: जी,
0: नदी
1: जी,
0: जो प्रवाहित
1: जी,
0: है, ऐसे ही उस प्रवाह के साथ मन प्रवाहित है। तो मन को जब शुभ मार्ग में आप लगाएंगे तो वो अशुभ मार्ग का त्याग कर देगा, और जब अशुभ मार्ग में रहेगा तो शुभ मार्ग अपने आप छूट जाएगा। तो ऐसे में मन जो है हमेशा प्रवाह में रहेगा।
1: तो एक तरह से बच्चों की तरह उसकी प्रकृति है, और उसको उस तरह से हमें समझना चाहिए। तो शशिकांत जी, आज बहुत ही अच्छी चर्चा रही, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और इतनी सुंदर व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की दैव के स्वरूप का विवेचन और सत्कर्म की प्रेरणा विषय पर। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह।
2: मैं हूं आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और गांधीवादी विचारक लोकनायक ओमियो कुमार दास की। श्रोताओं, आज हम उस महान आत्मा को जानने समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का, एक ऐसे महापुरुष जो केवल असम के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं।
2: लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन साधारण नहीं बल्कि असाधारण त्याग, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत गाथा है। वे एक ऐसे युग के साक्षी और निर्माता थे जब भारत की आजादी के लिए हर घर से दीप जल रहे थे, हर सीने में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। उस महान स्वतंत्रता संग्राम में ओमियो कुमार दास जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उनके योगदान को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: श्रोताओं, ओमियो कुमार दास, जिन्हें लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, समाज सेवी, गांधीवादी विचारक, शिक्षाविद और असम के प्रमुख राजनेता थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: ओमियो कुमार दास का जन्म 21 मई 1895 को असम के नागांव जिले में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कारों से युक्त किया। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना और समाज सेवा की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तेजपुर हाई स्कूल में हुई। तेजपुर, जो असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, वहां की शैक्षणिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल के दिनों से ही वे मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे।
1: प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ओमियो कुमार दास ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज असम का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुई। यहां उनका संपर्क विभिन्न राष्ट्रवादी विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से हुआ। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। कलकत्ता उस समय भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यहां उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। इन महान नेताओं के विचारों और कार्यों ने युवा ओमियो कुमार दास को गहराई से प्रभावित किया।
2: कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वे छात्र संगठनों से जुड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब ओमियो कुमार दास ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे गांधी जी के आदर्शों, सत्य, अहिंसा और स्वराज से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने असम में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
1: युवा ओमियो कुमार दास ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छात्रों और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उनके प्रभावशाली भाषणों और निष्ठा ने कई युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ओमियो कुमार दास इसके असम में प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया और नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की।
2: इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जेल की कठोर परिस्थितियां भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकी। जेल में रहते हुए भी वे अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनकी निष्ठा बनाए रखते रहे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था। ओमियो कुमार दास ने असम में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो ओमियो कुमार दास ने इसे पूरी तरह से अपना लिया।
1: इस आंदोलन के दौरान गोपीनाथ बारडोली और सिद्धिनाथ शर्मा जैसे नेताओं के साथ ओमियो कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें असम के विभिन्न जेलों में कैद किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया। पूरे असम में लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओमियो कुमार दास को अनेक बार कारावास में डाला गया। उन्होंने कुल मिलाकर कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उनकी अटूट देशभक्ति और निरंतर संघर्ष ने उन्हें असम के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया।
2: ओमियो कुमार दास की योग्यता और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। ये उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1945 में उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया, जहां उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद ओमियो कुमार दास ने अपने राजनीतिक कार्य को जारी रखा। उन्होंने ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीता। इन वर्षों के दौरान उन्होंने असम सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया।
1: जब ओमियो कुमार दास असम के श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। असम में चाय उद्योग एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ था, लेकिन चाय बागान के मजदूर अत्यंत शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते थे। ओमियो कुमार दास ने चाय बागान मजदूरों के लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। ये पहल एशिया में अपनी तरह की पहली योजनाओं में से एक थी। इस योजना ने हजारों मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: उन्होंने मजदूर वर्ग को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। शिक्षा मंत्री के रूप में ओमियो कुमार दास ने असम में बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना था।
1: उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। ओमियो कुमार दास ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि असम के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उचित आपूर्ति हो। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
2: ओमियो कुमार दास केवल एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। ओमियो कुमार दास की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसका असमिया भाषा में अनुवाद था। उन्होंने इसे मोर सत्य अनेश्वर काहिनी शीर्षक से अनुवादित किया।
1: ये अनुवाद असम के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्योंकि इसने उन्हें गांधी जी के जीवन और विचारों को उनकी अपनी भाषा में समझने का अवसर दिया। इस अनुवाद ने असम में गांधीवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास ने महात्मा गांधी पर कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं। गांधीजीर जीवनी अर्थात गांधी जी की जीवनी, ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी आमी किदोर बुजिलू अर्थात महात्मा गांधी को मैंने कैसे समझा, इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।
2: असुमोत महात्मा, असम में महात्मा, ये पुस्तक महात्मा गांधी की असम यात्रा और असम में उनके प्रभाव पर केंद्रित है। इन पुस्तकों ने असम के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास की लेखनी सरल और प्रभावी थी, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। ओमियो कुमार दास का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक समर्पित समाज सेवी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया।
1: ओमियो कुमार दास कई गांधीवादी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। ओमियो कुमार दास ने इस संगठन के माध्यम से असम में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से भी वो जुड़े थे। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके साथ ही भारत सेवक समाज से भी उनका संबंध था। ये संगठन समाज सेवा के लिए समर्पित था और ओमियो कुमार दास इसके सक्रिय सदस्य थे।
2: गांधी स्मारक निधि, ये संगठन महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। ओमियो कुमार दास इससे सक्रिय रूप से जुड़े थे। कस्तूरबा स्मारक निधि, ये संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता था। असम सेवा समिति, ये असम का एक प्रमुख समाज सेवी संगठन था जिसके संस्थापकों में ओमियो कुमार दास भी थे। ओमियो कुमार दास ने असम में नशा विरोधी अभियान चलाया। उस समय असम में विशेष रूप से चाय बागानों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन एक बड़ी समस्या था। उन्होंने लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाए।
1: ओमियो कुमार दास ने कुष्ठ रोग और तपेदिक से पीड़ित रोगियों के पुनर्वास के लिए भी कार्य। उस समय ये रोग एक बड़ी सामाजिक समस्या थे और इन रोगों से पीड़ित लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ओमियो कुमार दास ने इन रोगियों के लिए उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया। ओमियो कुमार दास एक सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। वे सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें लोक नायक कहकर पुकारा करते थे।
2: उनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित करने में सक्षम थे। उनकी वाणी में जादू था। जब वे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। ओमियो कुमार दास एक निडर व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका नेवर से डाई, कभी हार ना मानने वाला दृष्टिकोण उनके चरित्र का एक प्रमुख पहलू था।
1: श्रोताओं, वो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति भी थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका थीं। दोनों ने मिलकर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य किए। उनकी बेटी ने भी पिता के आदर्शों का अनुसरण किया। ओमियो कुमार दास के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1963 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के समर्पित कार्य के लिए दिया गया था।
2: भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने 15 मई 1998 को ओमियो कुमार दास के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये सम्मान उनके महान योगदान की स्वीकृति थी। 1995 में ओमियो कुमार दास की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुवाहाटी में ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ये संस्थान सामाजिक शोध और विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। ढेकियाजुली में एक कॉलेज को लोकनायक ओमियो कुमार दास कॉलेज के नाम से नामित किया गया है। ये कॉलेज उनकी स्मृति में स्थापित किया गया है और असम में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
1: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी सन 1975 को हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 79-80 वर्ष थी। उनके निधन से असम और पूरे भारत ने एक महान नेता और समाज सेवी को खो दिया। उनकी मृत्यु पर असम में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के समय उनकी पत्नी पुष्पलता दास और उनकी बेटी जीवित थीं। पुष्पलता दास स्वयं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य थीं। उनका निधन सन 2003 में हुआ।
2: ओमियो कुमार दास की विरासत आज भी असम में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चाय बागान मजदूरों के लिए उनके द्वारा स्थापित भविष्य निधि योजना आज भी लाखों मजदूरों को लाभान्वित कर रही है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा किया गया गांधी की आत्मकथा का अनुवाद आज भी असम में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये पुस्तकें नई पीढ़ियों को गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचित कराती हैं।
1: ओमियो कुमार दास ने असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई संस्थान स्थापित किए और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। असम की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने चाय बागान मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उनकी पहल से चाय बागान मजदूरों को न केवल बेहतर वेतन मिला बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई।
2: उन्होंने असम की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी विरासत को समझा और सभी समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने चाय बागान मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। ओमियो कुमार दास ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने कृषि सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता की जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज ही विकसित समाज हो सकता है।
1: ओमियो कुमार दास के जीवन का केंद्र गांधीवादी विचारधारा थी। उन्होंने महात्मा गांधी के तीन प्रमुख सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और सर्वोदय को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। सत्य उनके जीवन का आधार था। वे हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र की पहचान थी।
2: ओमियो कुमार दास अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उन्होंने हमेशा अहिंसक तरीकों को अपनाया। वे मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे किसी एक वर्ग या समुदाय के विकास में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना था। उन्होंने अपने जीवन में इस आदर्श को साकार करने का प्रयास किया।
1: गांधी जी की तरह ओमियो कुमार दास भी खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल समर्थक थे। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे और लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने असम में खादी उद्योग के विकास के लिए भी प्रयास किया। ओमियो कुमार दास महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास स्वयं एक सशक्त महिला थीं, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। ओमियो कुमार दास ने महिलाओं को शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
2: उन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करने में सहायता की। ओमियो कुमार दास का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने अपने जीवन में इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया।
1: ओमियो कुमार दास युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ओमियो कुमार दास ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
2: ओमियो कुमार दास अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे, चाहे जेल की यातनाएं सहनी पड़ी या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रसार के अथक प्रयास किए। युवाओं को उनसे ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही जीवन में सफलता की कुंजी है।
1: ओमियो कुमार दास ने सभी वर्गों और समुदायों के बीच समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। युवाओं को उनसे सामाजिक सद्भाव और एकता का पाठ मिलता है। ओमियो कुमार दास के जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में कठोर यातनाएं भी दी गईं। लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत किया।
2: स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण ओमियो कुमार दास को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय समाज में ये प्रथाएं गहराई से जड़े जमाई हुई थी। उन्हें इन रूढ़ियों को तोड़ने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल रहे।
1: ओमियो कुमार दास के समकालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे। महात्मा गांधी उनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से भी भेंट की और उनके मार्गदर्शन में काम किया। गांधी जी भी ओमियो कुमार दास के समर्पण और कार्य से प्रभावित थे। स्वतंत्र भारत में ओमियो कुमार दास का संबंध कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन नेताओं के साथ काम किया।
2: असम के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोपीनाथ बारडोली, तरुण राम फूकन और अन्य के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर असम में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। लोकनायक ओमियो कुमार दास का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक, प्रभावी लेखक और समर्पित समाज सेवी भी थे।
1: उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाया और इस प्रकार एक आदर्श जीवन जिया। आज भी असम और पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। लोकनायक अर्थात जनता के नायक, जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: ओमियो कुमार दास की जीवनी युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग में है, सेवा में है, निस्वार्थ भाव में है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से पूरे समाज को बदल सकता है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के मार्ग पर चलकर ही मानवता का वास्तविक विकास संभव है। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम भारत विभूति में हमने ढेर सारी बातें की लोक नायक ओमियो कुमार दास जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
1: और मैं थी आपके साथ सुनीता सिंह।
2: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यूनिंग किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं अध्ययन भवन में, जहां रंग फुलकारी नाट्य महोत्सव के तहत मंचन हुआ नाटक सावित्री बाई फूले का।
1: इसलिए हम औरतों से कह सकते हैं, औरतों बाहर आ जाओ और पढ़ना लिखना सीखो।
0: इस नाटक में एकल अभिनय और निर्देशन किया रेणुका बरमैया ने।
1: ऐसे ही हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। अब तो सुगना ताई और मेरे बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी कि सबसे पहले कौन अच्छे से पाठ याद करेगा और सही तरीके से याद करेगा।
0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए अध्ययन भवन में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।
1: तभी अचानक मेरी बहन की उसकी डांट टूट गई और मैं रोते हुए माँ को चिल्लाने लगी, माँ माँ माँ बचाओ, माँ मेरी बहन के नीचे की डांट टूट गई है, माँ बचाओ माँ। माँ तो दौड़ी आई लेकिन साथ में पिताजी को भी बुला लिया और मेरी लटकती हुई मूरत दिखा के कहने लगी, गुण तो देखो तुम्हारी लाडली के, बिल्कुल कहना नहीं मानती है। और मुझे लटकता देख के पिताजी जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने मुझे हंसते हुए उतार लिया। माँ का तो पारा सातवें आसमान पे चढ़ चुका था। मैंने कहा, पिताजी बचाओ। माँ कहती, सावित्री आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कितनी बार कहा है। माँ नहीं, माँ अब नहीं करूंगी। सावित्री रुक जा, कहाँ जा रही है? आज तू पकड़ी गई ना तो बहुत मारूंगी तुझे। नहीं माँ नहीं। आपकी माँ भी ऐसी डांटती रही होगी ना। सावित्री, सावित्री जी, पिताजी आई जी। पिताजी, बिस्किट के पैकेट तूने उठाए? नहीं पिताजी, मैंने नहीं उठाए। किताब उठाई? नहीं मैंने नहीं उठाई। सच बोल रही है तो कहाँ गए? सावित्री का ब्याह करेंगे तो पुणे के गोविंद राव जी के सुपुत्र से ज्योतिबा राव से मेरा ब्याह पक्का हो गया। पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था मेरा ब्याह। बराती घराती कपड़ा लत्ता खरीदारी सब कुछ के लिए हलवाई कितने आएंगे। इन सब के साथ साथ मेरी सहेलियां मेरे साथ खसी चिटोली करती थी। सावित्री तेरा दूल्हा कैसा दिखता है? तूने अपने दूल्हे को देखा क्या? तू मेरे कैसा देख लिया दूल्हा? यहाँ मेरे ससुराल में ज्योतिबा के मित्र घर आया करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। सदाफी वलार बवंडे जी, सकाराम परसपड़े, मोहित तावलेकर, बहुत सारी बातें होती थी। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो सावित्री को पढ़ाएंगे और घर आके पुकारने लगे, सावित्री सावित्री। हाँ जी बोलिए। सावित्री आज से तुम पढ़ोगी लिखोगी? मैं कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अब तो मेरा ब्याह हो गया है, अब तो मुझे घर गृहस्थी संभालनी है। माँ कहती थी कि ससुराल जाके नाक मत कटाना, भला मैं घर संभालूंगी कि पढ़ने जाऊंगी? नहीं सावित्री, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान तो कभी भी किसी भी जगह किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी, चलो खाना खा लो। ज्योतिबा और उनकी मौसी की बहन सुगना ताई दोनों खेत में काम कर रहे थे। सुगना ताई की एक बात बताओ, क्या भर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है वो, बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देती है। सुनने में तो अच्छा लगता है, समझ में कुछ नहीं आता है। सुनिए सुनिए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ बस इतना सुनना था कि ज्योतिबा जी ने मेरे लिए खेत में ही पाठशाला कर दी, जमीन को समतल किया, स्लेट बना दिया, आम की डाली तोड़ी और उसे कलम बना के जमीन पे लिखते हुए कहने लगे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ और मैं जो कहता हूँ उसे दोहराते जाओ, इसे कहते हैं आ और इसे कहते हैं आ। आ आ, इसे कहते हैं ई और इसे कहते हैं ई। आ आ ई ई। बस ऐसे ही हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। अब तो सुगना ताई और मेरे बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी कि सबसे पहले कौन अच्छे से पाठ याद करेगा और सही तरीके से याद करेगा। कुछ महीनों बाद ज्योति वाले पाठशाला में तीसरी कक्षा में दाखिला करवा दिया हम दोनों का। सावित्री अब पढ़ना लिखना सीख गई है, वो औरों को पढ़ा भी सकती है, इसलिए हम औरतों से कह सकते हैं, औरतों बाहर आ जाओ और पढ़ना लिखना सीखो। क्यों सीखे, क्यों सीखे और किस लिए सीखे? अरे ईश्वर ने जो तुम्हें जिंदगी दी है उसे वैसे ही क्यों नहीं जी लेते हैं आप? पिताजी, इंसान के लिए न्याय ही श्रेष्ठ है। ये कार्य मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर तुम दोनों ने पाठशाला नहीं छोड़ी तो घर छोड़ दो। सावित्री, सामान बांध लो, हम अभी जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? ये घर परिवार, ये सुख संपत्ति, ये सुख सुविधा छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? अगर ये सब छोड़कर गए तो लोग हमसे मुंह मोड़ लेंगे, कोई हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई हमसे बात नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। पिताजी देखिए, धैर्य से काम लीजिए, ऐसा निर्णय मत लीजिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, तुम्हें पाठशाला छोड़नी ही होगी। पिताजी पिताजी, समाज की एकता कम लोगों के अशिक्षित रहने से और ज्यादा लोगों के शिक्षित होने से नहीं टूटती। सावित्री, सामान बांध लो,

बिस्तर पर पड़े पड़े समाज सेवा करते रहे, सलाह देते रहे, मदद करते रहे। मौत से सामना करने की हिम्मत भी उन्होंने ही दी थी मुझे। लेकिन अभी कुछ रोज से वो कुछ ज्यादा ही बीमार हो गए, वो भी सबकी तरफ ऐसे ही देखते कहते हैं मेरा अंतिम समय आ गया है। आप सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसीलिए कभी कोई डॉक्टर को बुलाने बाहर गया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके देखूं, डॉक्टर आए और अंदर चले गए। मेरी आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे जिसमें छुट्टी के बाद मेरे साथ में संघर्ष में थे। मुझे पढ़ाने लिखाने से लेके सफल इंसान बनाने तक, पर ऐसे उनको देखने की हिम्मत नहीं थी मुझमें।

कोणार्क होगा। ये हाथ सबल बनने ही चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रेडियो आजाद हिंद के सफर में मैं हूँ आपके साथ भारती। लीजिए प्रस्तुत है राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत ये देशभक्ति रचना।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में। आजाद हिंद में अभी तक हमने आपको सुनाए क्रांति कथाएं, शौर्य गाथाएं, महापुरुषों की जीवनियां, उनसे जुड़े प्रेरक प्रसंग, आजादी के मुकदमे, संस्मरण और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत। आइए इसी तारतम्य में आज बात करते हैं उर्दू साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले मिर्जा गालिब जी की।
1: श्रोताओं, उर्दू साहित्य के एक पारखी ने एक जगह लिखा है कि मुगल साम्राज्य ने हमें तीन चीजें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब। मिर्जा गालिब उर्दू के बहुत ही विख्यात कवि हुए हैं, केवल उर्दू के ही नहीं फारसी के भी। उनका पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेखां गालिब था। उनके दादा कौकान बेखां शाह आलम के जमाने में समरकंद से हिंदुस्तान आए थे। आगरा में 1797 में मिर्जा गालिब का जन्म हुआ।
0: गालिब अभी छोटे ही थे कि उनके पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेखां का देहांत हो गया। उनके चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेखां ने उनका पालन पोषण किया। मिर्जा गालिब केवल 8 ही बरस के थे जब उनके चाचा का भी देहांत हो गया। लोहारू के नवाब अहमद बख्श खां ने लॉर्ड लेक से सिफारिश की और वहां से पेंशन का इंतजाम किया। वो पेंशन मिर्जा नसरुल्ला बेग खां के संबंधियों के लिए थी। 5,000 रुपए वार्षिक पेंशन में से मिर्जा गालिब का केवल 750 रुपए सालाना था। वैसे उस जमाने के हिसाब से ये अच्छी खासी रकम थी।
1: गालिब ने आगरा के मौलवी मोहम्मद मुअज्जम और एक ईरानी मुल्ला अब्दुल रस्मत से फारसी पढ़ी, परंतु उन उस्तादों से ज्यादा जिस चीज ने गालिब पर असर किया वो था उनका वातावरण। इनका बचपन आगरा के जिस मोहल्ले में गुजरा वो गुलाब खाना कहलाता था। उस जमाने में वो गोया फारसी जबान का केंद्र था। और यहीं से मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब एक शायर बनने की तरफ बढ़ चले।

लगजिश ना खाऊं जिस्म पे आफत हजार हो, खिदमत में कौम की मेरा ये सर निसार हो, ये सर निसार हो।

इज्जत की ख्वाहिश दिल में ना, जिनहार हो मुझे, चढ़ जाऊं वतन के लिए, गरदार हो मुझे, गरदार हो मुझे।

हाकिम की क्या लिखने से जब कलम बंद हो, इजहार हो मेरा यही आजाद हिंद हो, आजाद हिंद हो।

0: 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई इलाही बख्श खां मारूफ की 11 साल की सुपुत्री उमराव बेगम से हो गई। उन दिनों शादियां छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। गालिब जब तक आगरा में रहे उन्हें खर्च की कोई तंगी नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि रुपए पैसे की बहुतायत ही थी। दिल्ली में जब वो आए तो वो 750 रुपए की पेंशन उनकी जान का रोग बन गई। कभी बंद हो गई और कभी मिलने लगी। उस पेंशन से गालिब का गुजारा भी मुश्किल से ही होता था। गालिब ये भी समझते थे कि पेंशन नियत करने के बारे में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय हासिल करने के लिए वे कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता पहुंचकर उन्हें पेंशन के मामले में सफलता तो मिली नहीं, लेकिन वहां के साहित्यिक लोगों से झगड़े जरूर मोल ले लिए। उनमें से मिर्जा कतील और उनके शिष्यों से उनके झगड़े बहुत मशहूर हैं।
1: गालिब की पेंशन का मुकदमा करीब 16 साल तक चलता रहा। इस पर उनका हजारों रुपया उठ गया, जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने महाजनों से ब्याज पर कर्ज लिया था। बदकिस्मती से मुकदमे का फैसला उनके खिलाफ हो गया और उनकी बाकी उम्र इस कर्ज को चुकाने में कट गई। गालिब बड़े स्वाभिमानी थे। केवल एक उदाहरण से इस बात का पता चल जाएगा। एक बार मिर्जा गालिब को दिल्ली कॉलेज में फारसी के मुख्य अध्यापक का पद पेश किया गया, परंतु उन्होंने अपने स्वाभिमान के कारण उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर टॉमसन कॉलेज को देखने आए तो उन्होंने मिर्जा गालिब को बुलवा भेजा। अगले दिन वो पालकी पर सवार होकर बंगले पहुंचे और दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि अभी कोई स्वागत करने को आएगा। जब किसी ने आकर उनसे कहा कि हजरत तशरीफ लाइए, तो गालिब ने कहा, साहब कोई लेने आए तो उतरूं?
0: ये सुनकर मिस्टर टॉमसन स्वयं बाहर निकल आए और कहने लगे, चूंकि आप रस्मी मुलाकात के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए आए हैं, इसलिए कोई पेशवाई को कैसे हाजिर होता? मिर्जा बोले, नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ कि इससे मेरा सम्मान बढ़े, न कि जो पहले से है उसमें भी कमी आ जाए। इतना कहकर मिर्जा ने पालकी के कहारों को हुक्म दिया कि वापस चलो।
1: मिर्जा गालिब 4 जुलाई 1850 को बादशाह जफर के दरबार में पेश हुए। बादशाह ने नज़्मुद्दौला दरीबु मुल्क निजाम जंग कहकर खिताब दिया। 50 रुपए माहवार वेतन मुकर्रर हुआ। गालिब की जरूरतों के सामने इन 50 रुपयों की हस्ती ही क्या थी, और इस पर वे भी मिले 6-6 महीनों में।

0: सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद किले की ये मुलाजमत भी जाती रही। रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां मिर्जा गालिब के प्रसिद्ध शिष्यों में से थे। उन्होंने 1859 में मिर्जा की 100 रुपए महीना तनख्वाह नियत कर दी थी। इस पर भी उनकी आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हुई।
1: मिर्जा खुद एक रईस खानदान के थे, रईसों से रिश्तेदारी और याराना था, बादशाहों और नवाबों के उस्ताद थे, इसलिए रख रखाव की आदत इनका स्वभाव बन गई थी। वो घर पर दिल्ली के बड़े लोगों की तरह पजामा और खुली अस्तीन का कुर्ता या अंगरखा पहनते थे। सिर पर आम तौर पर मलमल की खुली हल्की टोपी होती, जिस पर कामदानी या कसीदे का काम होता। जाड़ों में सर्दियों से बचने के लिए किसी गर्म कपड़े का कलीदार पजामा और मिर्जई पहनते। बाहर निकलते तो तंग मोरी का आड़ा पजामा, कुर्ता और उस पर सदरी, ऊपर किसी भारी और कीमती कपड़े का चोगा और उस पर एक जामा, पांव में घेतली जूती और हाथ में मूठदार लंबी लकड़ी, जिस पर उनका नाम असदुल्ला अल गालिब खुदा हुआ था।
0: मिर्जा गालिब ने अपने दोस्तों, शागिर्दों और संबंधियों को जो अमूल्य पत्र गद्य में लिखे हैं, उनके संग्रह उर्दू ए मुअल्ला, उदे हिंदी और मकातीबे गालिब के नाम से छप चुके हैं। उनकी उर्दू कविताओं का संग्रह दीवान ए गालिब के नाम से सर्वविख्यात है। हास्य रस उनकी घुट्टी में पड़ा था। उनकी कोई बात लतीफे और चुटकुले से खाली नहीं होती थी। गालिब की कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने पुरानी डगर को छोड़कर नए रास्ते को ग्रहण किया। उनकी गजलें अब भी लोगों को जुबानी याद हैं। उनमें मनोविज्ञान, आदमी की मानसिक वृत्तियों का उतार चढ़ाव, ईश्वर और प्रेमिका से छेड़छाड़ और हास्य रस के अमूल्य उदाहरण मिलते हैं।
1: उर्दू के गद्य और पद्य को पुरानी परंपरा की जंजीरों से आजाद करके एक नए रंग की बुनियाद मिर्जा गालिब ने डाली। उनका अनुकरण तो बहुतों ने किया, मगर सफलता किसी को नसीब नहीं हुई। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की मृत्यु हो गई, जिसने एक तरफ इस देश में फारसी के साहित्य को ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। वो महान शायर चुपचाप, खामोश, मौत के आगोश में चला गया। मिर्जा गालिब तो चले गए, लेकिन उनके कहे हुए शेर और गजलें आज भी जिंदगी के फलसफे को बयां करती हैं, और उन्हीं के कारण मिर्जा गालिब हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे। हमारा उनको सादर नमन।

0: अभी आप सुन रहे थे आजाद हिंद कार्यक्रम का प्रसारण। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी प्यार।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण अपनी रेडियो मित्र भारती के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर।

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन, वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन। कलाकार हैं सिद्धार्थ बेलमन्यू और साथ

ये प्रस्तुति उन्होंने दी मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित गुरु पूर्णिमा पर्व में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है

कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे शास्त्रीय गायन सिद्धार्थ बेलमन्यू का। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 MHz पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, रेडियो रूपक।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि स्वास्थ्य लाभ करने के लिए स्वामी जी हिमालय की यात्रा पर गए थे। वे अल्मोड़ा से उत्तर प्रदेश होकर पंजाब गए और फिर कश्मीर की तरफ चल पड़े। सेवियर दंपति भी उनके साथ जाने वाले थे, पर श्रीमान सेवियर की तबीयत बिगड़ जाने पर वे दोनों मरी में ही रुक गए। उन्होंने अगली यात्रा के लिए स्वामी जी को 800 रुपए भिजवा दिए, परंतु स्वामी जी ने अपने एक दोस्त से कहा,
1: योगेश, हम लोग तो फकीर हैं, इतने रुपए लेकर क्या करेंगे? रहने से ही खर्च हो जाएगा, इससे अच्छा होगा कि आधा ही लेकर बाकी लौटा दूं। इतने से ही मेरे तथा मेरे संगियों के भ्रमण का खर्च पूरा हो जाएगा।
2: मैरी से तांगे पर सवार होकर 8 सितंबर को वे बारामुल्ला पहुँचे और वहाँ तांगे को छोड़कर तुरंत ही श्रीनगर जाने के लिए नाव में चढ़ गए। कई मायने में ये नौका भ्रमण बड़ा ही आनंददायी था। 10 सितंबर को श्रीनगर पहुंचकर वे लोग कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश श्री ऋषिवर मुखोपाध्याय के घर अतिथि बने। मुखोपाध्याय महाशय ने अपने स्वभाव सुलभ अतिथि परायणता के चलते स्वामी जी के लिए हर प्रकार की सुविधा की व्यवस्था कर दी। इसी सुअवसर का लाभ उठाकर वहाँ के निवासियों ने भी उनके विद्वतापूर्ण, उदार और सरल वार्तालाप को सुनकर स्वयं को धन्य माना।
0: 13 सितंबर को वे राजप्रसाद देखने गए। वहाँ दो उच्च पदस्थ राज कर्मचारियों ने उनका सप्रेम स्वागत किया और उनमें से एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें बताया कि राजा के भाई तथा सेनापति राजा राम सिंह अगले दिन उनका दर्शन पाने के उत्सुक हैं। तदनुसार अगले दिन उन्होंने महाराजा के भाई राम सिंह के साथ भेंट की। महाराजा उस समय जम्मू में थे। राम सिंह ने स्वामी जी के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करते हुए उन्हें कुर्सी पर बैठाया और स्वयं मित्रों एवं कर्मचारियों के साथ नीचे बैठे। वहां पर स्वामी जी ने धर्म, हिंदुओं की विभिन्न समस्याओं और उनकी उन्नति के उपाय के विषय में 2 घंटे तक महत्वपूर्ण तथा मनमोहक चर्चा की। इस पर मुग्ध होकर राम सिंह ने कहा कि वे भी स्वामी जी की योजनाओं को रूप देने में यथासाध्य सहायता करने को प्रस्तुत हैं।
2: श्रीनगर के अनेक साधु, पंडित, विद्यार्थी, राज कर्मचारी और जिज्ञासु लोग स्वामी जी के व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर उनके निवास स्थान पर आया करते थे। प्रातः और संध्या के समय प्रायः ही धर्म चर्चा और उसके बाद संगीत आदि होता था। शंका समाधान के लिए आने वाले अधिकांशतः कश्मीरी या पंजाबी लोग होते थे, इसलिए चर्चा हिंदी या अंग्रेजी में हुआ करती थी। सभी आगंतुक उनसे वार्तालाप करके संदेह मुक्त एवं खुश लौटते थे। एक बार आने से ही किसी का जी नहीं भरता, पूछने को कुछ न कुछ बाकी रह जाने से, और केवल उनका दर्शन मात्र करने और उनकी मधुर बातें एवं संगीत सुनने के लिए ही लोग बारंबार आया करते।
0: स्वामी जी स्वयं भी भूस्वर्ग कश्मीर की इस सुंदर नगरी के सुंदर परिवेश तथा शीतल जलवायु के बीच रहकर काफी आनंद का अनुभव कर रहे थे। राजा अमर सिंह के वजीर क्रमशः उनके भक्त हो उठे और राजा के आदेश पर उन्होंने स्वामी जी के लिए एक हाउस बोट की व्यवस्था कर दी। इसके बाद से अवसर पाते ही स्वामी जी उस पर घूमने जाते। नैसर्गिक सौंदर्य का भंडार कश्मीर में झील के सतह पर नाव में निवास तथा भ्रमण करने में सचमुच अपना एक अलग ही माधुर्य था। बीच में स्वामी जी नौका में सवार होकर आसपास के स्थानों का भ्रमण भी करने जाते तथा बाजार में घूमते तथा कश्मीरी वाद्य संगीत या गाने कंठ संगीत सुनते।
2: इसी प्रकार 20 सितंबर को उन्होंने पामपुर नामक स्थान पर जाकर वहां केसर के खेत देखे और रात को वहीं रुके। 22 तारीख को उन्होंने अनंतनाग एक और बीज बिहार का मंदिर देखा। अगले दिन पैदल ही मारतंड नामक स्थान में जाकर उन्होंने वहाँ के पंडितों के साथ धर्म चर्चा की। वो रात स्थानीय विश्रामागार में बिताकर 24 सितंबर को वे अक्षय बल नामक स्थान की ओर रवाना हुए। मार्ग में अवंतीपुर के निवासियों ने अत्यंत आग्रह पूर्वक उन्हें एक अत्यंत प्राचीन पांडवों का मंदिर दिखाया। किंवदंतियों के अनुसार ये मंदिर पांडवों के समय का है।
0: स्वामी जी ने घूम घूम कर उस सुंदर मंदिर का गठन, उसकी नक्काशी और पत्थर पर खुदाई से बनी जाली का काम देखा। मंदिर पुराना था। स्वामी जी के साथ लाटू महाराज भी थे। दोनों में अक्सर नोकझोंक और हंसी मजाक हुआ करती थी। मंदिर देखने के बाद लाटू महाराज ने स्वामी जी से पूछा,
3: क्यों, क्या ख्याल है, मंदिर कितना पुराना होगा?
1: ये तो कम से कम 2000 साल पहले बना होगा। ये नक्काशी का काम अति दुर्लभ है।
3: क्यों, ऐसा क्या है इस मंदिर में? और तुम कैसे कह सकते हो कि ये 2000 साल पुराना है?
1: तुम ठहरे अनपढ़ गंवार, तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। चलो आगे बढ़ो, और हो भी अगर विद्वान तो मेरे जैसे मूर्ख को समझ नहीं सकते।
0: सब लोग हंस पड़े।
2: दोनों में गहरी दोस्ती भी थी। श्रीनगर में वे लोग एक हाउस बोट में रहने गए। लाटू महाराज ने देखा कि बोट पर मांझी लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा,
3: ए नरेन, ए तुम जाओ उस हाउस बोट में रहने, मैं नहीं जाऊंगा।
1: क्यों, चलो ना, बहुत मजा आएगा, झील में तैरेंगे, ऐसा और कहीं मिलेगा नहीं।
3: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
1: बात क्या है, साफ साफ कहते क्यों नहीं?
3: इन नावों में मांझियों के परिवार भी रहते हैं, इन औरतों के साथ एक ही नाव पर मैं नहीं रह सकता भाई।
1: ओह तो ये बात है, अरे तू अकेले थोड़े ही रहेगा, मैं हूँ ना, मेरे रहते तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
0: लाटू महाराज आश्वस्त होकर बोट में रहने के लिए तैयार हो गए।
2: कश्मीर और श्रीनगर स्वामी जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने लिखा है,
1: इस प्रदेश की जो प्रशंसा सुनने में आती है वो सत्य है। इतना सुंदर स्थान दूसरा नहीं है, और लोग भी देखने में सुंदर हैं। यहाँ के सौंदर्य की सब बातें लिखकर क्या होगा। मेरी समझ में यही एकमात्र स्थान योगियों के अनुकूल है। मैंने काफी भ्रमण किया है, परंतु ऐसा देश मेरे देखने में नहीं आया।
2: वहाँ के सौंदर्य पर मुग्ध होकर भी स्वामी जी लिखना नहीं भूले कि कश्मीर के लोगों का जीवन स्तर काफी नीचा है, पर हाँ, पूरे भारतवर्ष के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। पत्र में लिखित अन्य ज्ञातव्य बातें ये हैं कि स्वामी जी ने कश्मीर के द्रष्टव्य स्थानों के अवलोकन और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु 1 महीने तक पानी में भ्रमण करने का संकल्प किया था। कश्मीर में उनके संगी थे सदानंद, कृष्णलाल और लाटू निरंजन, दीनू और खोका। उन्होंने निश्चित किया था कि पहाड़ से उतरते ही वे दल के परवर्ती 4 लोगों को कलकत्ता वापस भेज देंगे, क्योंकि उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य संभव नहीं है। बल्कि 20-25 दिन के भीतर शुद्धानंद, सुशील और हरिप्रसन्न को उन्होंने अंबाला भेज देने को लिखा था।
1: इस समय राजा साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनके मंझले भाई सेनापति यहाँ है। उनकी व्यवस्था में एक व्याख्यान का आयोजन चल रहा है, जैसा होगा बाद में लिखूंगा। 2 दिन के अंदर यदि हो तो मैं ठहरूंगा, नहीं तो भ्रमण करने निकल पड़ूंगा। सेवियर मेरी में ही है, टांगों के झटकों से उनका शरीर बड़ा ही अस्वस्थ हो गया है। कश्मीर सरकार ने अपना एक बजरा मुझे उपयोग करने को दिया है, ये काफी सुंदर तथा आरामदायक है। उन्होंने जिले के तहसीलदारों को भी आदेश जारी कर दिया है। हमें देखने के लिए लोग सदल बल यहां आ रहे हैं, और हमें सुखपूर्वक रखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है सब कर रहे हैं।
0: श्रीनगर लौटने के बाद स्वामी जी का पुनः जनसाधारण के साथ मिलना जुलना तथा आनंदपूर्ण वार्तालाप आदि चलने लगा। बीच बीच में वे संभ्रांत लोगों के घर से भोजन के लिए निमंत्रण भी पाते थे। ऐसे अवसर पर गृहस्थगण प्राचीन रीति से उनके प्रति अतीव सम्मान व्यक्त करते तथा यत्न पूर्वक सारी व्यवस्था करते। एक बार एक अभिजात परिवार से निमंत्रण पर वहाँ संवेद ब्राह्मण पंडितों ने पुष्प वर्षा की तथा मालाओं से विभूषित कर उनका स्वागत किया, और भोजनोपरांत साथ साथ आकर उनके निवास स्थान तक पहुंचा गए।
2: इस तरह की घटनाओं से ये समझा जा सकता है कि स्वामी जी अपने देशवासियों की कैसी हार्दिक श्रद्धा पाने में समर्थ हुए थे, और इस घटना के साथ पूर्ण वर्णित दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के उनके तथा कथित बहिष्कार किए जाने वाली घटना से तुलना करने पर ऐसा लगता है कि जिनके दिमाग में प्रगति को रोकने की दुर्बुद्धि का उदय होता है, वे लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितने ही प्रकार के दुराचरण में लिप्त हुआ करते हैं।
0: क्रमशः उनके कश्मीर से विदा लेने का समय आ पहुंचा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही उन्होंने श्रीनगर से नाव में प्रस्थान किया और वुलर झील को पार करते हुए बारामूला में जा पहुंचे। वहां से तांगे में सवार होकर 8 अक्टूबर की शाम को वे मरी आए। यहां पर उनका अपने पूर्व रचित पंजाबी तथा बंगाली अनुरागियों के साथ पुनर्मिलन हुआ। सेवियर दंपत्ति तब भी वहीं थे, उनके साथ भी भेंट हुई। 14 अक्टूबर की रात को स्थानीय लोगों ने उनका अभिनंदन किया, और इसके उत्तर में उन्होंने एक मनोहारी भाषण दिया। उस समय वे निवारण बाबू के मकान पर ठहरे थे और सभा भी वहीं हुई थी।
2: मरी से 10 अक्टूबर को अपने पुत्र द्वारा उन्होंने ब्रह्मानंद को सूचित किया था कि हरि प्रसन्न संभवतः शीघ्र ही अंबाला पहुंचेंगे, क्योंकि सेवियर यथाशीघ्र हिमालय में पूर्व कल्पित आश्रम की स्थापना करने को उत्सुक हैं। भूमि चयन और गृह निर्माण आदि विषयों में हरि प्रसन्न महाराज को विशेष अनुभव था। पहले वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके थे। उसी पत्र में श्री माता जी को 200 रुपए भेजने का अनुरोध भी है। उसी दिन एक अन्य पत्र में वे स्वामी अखंडानंद को एक अनाथ आश्रम स्थापित करने के लिए उत्साहित करते हुए लिखते हैं,
1: मुसलमान लड़कों को भी लेना होगा, परंतु उनके धर्म को नष्ट मत करना। हिंदू मुसलमान ईसाई आदि सभी जातियों के लड़के लो, परंतु प्रारंभ में धीरे धीरे, अर्थात उनके खाने पीने की थोड़ी अलग व्यवस्था हो और धर्म की जो सामान्य बातें हैं वही उन्हें सिखाना।
0: स्वामी जी के मन में उन दिनों कश्मीर में एक केंद्र स्थापित करने की इच्छा भी थी। श्रीनगर के 1 अक्टूबर को मार्गरेट नोबल को लिखित उनके पत्र में है,
1: तुम्हारे समक्ष में कश्मीर का वर्णन करने का प्रयास नहीं करूंगा, इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि केवल इस भूस्वर्ग के अलावा कोई भी प्रदेश छोड़कर आने में मेरा मन दुखी नहीं हुआ। यदि संभव हुआ तो राजा को सहमत करके यहाँ पर एक केंद्र स्थापित करने का यथासंभव प्रयास कर रहा हूँ।
0: जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह से भेंट के दौरान संभवतः उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, परंतु प्रताप सिंह उस समय ब्रिटिश राज के नाराजी के फलस्वरूप सिंहासनच्युत होने के कारण वस्तुतः कुछ नहीं कर पाए थे। उत्तर पश्चिमी भारत के अन्य स्थानों में भी उनकी केंद्र स्थापित करने की इच्छा थी और इसके लिए उन्होंने आलम बाजार मठ से सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को पंजाब एवं राजपुताना में बुलवाया था, परंतु उनके जीवन काल में कहीं भी केंद्र स्थापित नहीं हो पाया। तथापि जो बीज वे उस धरती पर बो आए थे वो अमर था और बाद में वो अंकुरित होकर फला फूला और अब भी हो रहा है। अस्तु 16 अक्टूबर को प्रातःकाल 9 बजे तांगे पर मरी से रवाना होकर शाम को 5 बजे वे रावलपिंडी जा पहुंचे।
2: 16 अक्टूबर को स्वामी जी के रावलपिंडी पहुंचने पर वहां के वकील लाला हंसराज साहनी ने उनका अपने घर पर सप्रेम स्वागत किया। उस समय उनके साथ केवल स्वामी सदानंद और स्वामी अच्युतानंद ही थे, क्योंकि इसके पूर्व ही वे निरंजनानंद, अद्भुतानंद, सचिदानंद और कृष्णालाल को जयपुर भेजने की व्यवस्था कर चुके थे। वकील महाशय के घर पर स्वामी जी के आर्य समाज के स्वामी प्रकाशानंद के साथ वार्तालाप करके विशेष आनंदित हुए। उस समय न्यायमूर्ति नारायण दास, भगत राम और भी अनेक शिक्षित लोग वहां उपस्थित थे।
0: यहीं से उनकी व्याख्यानों के द्वारा प्रचार कार्य की शुरुआत हुई। रावलपिंडी में 2 दिन बीतते ही 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे श्रीयुत सुजन सिंह के मनोरम बागीचे में उनसे व्याख्यान देने का अनुरोध किया गया। न्यायमूर्ति नारायण दास के प्रस्ताव तथा लाल हंसराज के अनुमोदन पर सुजन सिंह सभापति बने। सभा में लगभग 400 श्रोता आए थे और स्वामी जी ने 2 घंटों तक हिंदू धर्म पर एक सुदीर्घ, बुद्धितापूर्ण तथा प्रेरक व्याख्यान दिया। स्वामी जी ने अपने वक्तव्य विषय की व्याख्या तथा समर्थन करते हुए वेद आदि ग्रंथों से अनेक उद्धरण दिए और कभी वे वीर मुद्रा में आत्मा की अनंत महिमा तथा सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख करके श्रोताओं के हृदय में महातेज एवं शक्ति का संचार करने लगे, तो कभी सामाजिक कपटाचार के विरुद्ध कठारे व्यंगों का प्रयोग करते हुए श्रोताओं के बीच हास्य की धारा बहाने लगे। सभा में उपस्थित एक अंग्रेज भक्त ने बाद में बताया था,
4: मस्तक पर तथा गले में फूलों की माला से सुशोभित स्वामी जी अपने अभ्यास के अनुसार कभी मंच पर टहलते तथा कभी पत्र पुष्प व मालाओं से मंडित एक खंबे का सहारा लेकर व्याख्यान दे रहे थे। गैरिक वस्त्रों तथा कमरबंद से पोषित होकर उस समय वो किसी यूनानी देव मूर्ति के समान लग रहे थे। फिर पगड़ी पहने अधिकांश श्रोताओं के जमीन पर बैठे रहने और डूबते सूरज की लालिमा से पूरा दृश्य अद्भुत सुंदर हो उठा था।
2: इन दिनों स्वामी जी प्रचार कार्य में कितने व्यस्त थे, इसकी झलक देने के लिए हम स्वामी अच्युतानंद की डायरी से कुछ अंश सुनाते हैं।
3: अरे 17 अक्टूबर को हंसराज का मकान प्रातः काल आगंतुक सज्जनों के साथ चर्चा, तदुपरांत भोजनार्थ छावनी में निमाई बाबू के घर गमन, वहां एकत्र बंगाली लोगों के साथ वार्तालाप और लगभग 3 बजे वहां से लौटे। हाँ, अरे थोड़ा विश्राम करने के बाद व्याख्यान देने के लिए सृजन सिंह के घर उद्यान में गमन किया और भाषण के बाद निवास स्थान पर वापस लौटकर एक व्यक्ति को उन्होंने साधन रहस्य पर उपदेश दिया और रात को भगत राम की कोठी पर निमंत्रण था और साथ में न्यायाधीश प्रकाशानंद हंसराज भी गए और वहां भोजन किया और वहां से रात 10 बजे अपने निवास स्थान पर लौटे। रात के 3 बजे तक प्रकाशानंद के साथ चर्चा की।
0: उन दिनों की घटनावली हमें विभिन्न लोगों के संस्मरण और डायरियों से पता चलती है। रावलपिंडी में वे कई दिनों तक रुके और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। उनके अगले कुछ दिनों का कार्यक्रम ऐसा रहा।
2: 18 अक्टूबर के दिन प्रातः काल भी राय नारायण दास, बाबा क्षेम सिंह के पुत्र और प्रकाशानंद के साथ चर्चा हुई। आहार के उपरांत विश्राम करने के बाद उन्होंने बताया कि पिछले दिन से उनके सिर में दर्द है और इस समय काफी बढ़ चुका है, फिर भी वे हंसते हुए ही बातें करते रहे। बाहर के लोग कुछ समझ ही न सके। संध्या के पूर्व उन्होंने जज साहब और क्षेम सिंह के पुत्र द्वारा लाई गई बग्घी में भ्रमण किया। रात में उन लोगों के साथ ही भोजन किया और आर्य समाज एवं मुसलमानों के संबंध में अनेक शंकाओं का समाधान किया। रात के 11 बजे वे अपने निवास स्थान पर लौटे।
0: 19 अक्टूबर को प्रातः काल उन्होंने सेवियर दंपत्ति के निवास पर जाकर उन लोगों के साथ बातचीत की। बाद में प्रकाशानंद के साथ स्थानीय बंगाली लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित कालीबाड़ी में जाकर प्रसाद ग्रहण किया और भोजन उपरांत एक सिख सज्जन के साथ काफी देर तक धर्म चर्चा की। इस चर्चा के दौरान अनेक बंगाली सज्जन भी उपस्थित थे। संध्या के बाद उक्त कालीबाड़ी में ही स्थानीय प्रवासी बंगाली लोगों की एक छोटी सी सभा में स्वामी जी ने स्वदेश के कल्याण के उपायों के विषय में अनेक मनोहर उपदेश दिए। रावलपिंडी में उनके इस प्रवास के सुयोग से अनेक लोग हंसराज के मकान अथवा सेवियर दंपत्ति के निवास स्थान पर उनसे मिलकर वार्तालाप करते तथा उनके उपदेश सुनकर कृतार्थ हो जाते। ऐसे प्रसंग उठने पर स्वामी जी को समय का बोध नहीं रह जाता था और अन्य लोग भी बाकी सब कुछ भूलकर उनकी बातें सुनते रहते, इसीलिए ये बैठक काफी लंबी हुआ करती थी। इनके बैठकों के दौरान कुछ भावुक लोगों के अजीब व्यवहार भी कभी कभी दिख पड़ते थे। रावलपिंडी से प्रस्थान के दिन 20 अक्टूबर मध्याह्न भोजन के पश्चात वे कुछ जिज्ञासुओं तथा मित्रों के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि उसी समय एक बंगाली सज्जन के अनुरोध पर स्वामी जी के एक गुरु भाई वहां एक फिटन गाड़ी लेकर आए और बताया कि वे सज्जन बीमार हैं तथा स्वामी जी का दर्शन करने के इच्छुक हैं।
1: हाँ हाँ चलो भाई, माफ करना, मुझे जाना होगा। चलो, कहाँ चलना है? प्रकाश तुम भी चलो।
3: स्वामी जी प्रणाम। मैं उठ चल नहीं सकता, इसीलिए आपको यहाँ आने का कष्ट दिया।
1: नहीं भाई, कष्ट किस बात का, तुम बीमार हो।
3: स्वामी जी, मेरे मन में भगवान और धर्म को लेकर कई प्रश्न उठते रहते हैं। मैं जीवन भर धर्म के पथ पर चला हूँ, ये मेरी दुर्गति क्यों ही? मुझे तो भगवान पर से ही विश्वास उठ गया है। भगवान मगवान कुछ नहीं है, सब झूठ है। आप ही कोई रास्ता बताएं।
0: स्वामी जी द्वारा उन सभी प्रश्नों के एक एक कर युक्तिपूर्ण समाधान कर देने पर उस सज्जन का संदेह दूर हुआ और उन्होंने अपने को कृतार्थ समझा। इसके बाद उन्होंने स्वामी जी तथा उनके संगियों को किंचित जलपान कराकर रात के 8:30 बजे कृतज्ञता पूर्वक विदा किया। इसके बाद हंसराज के घर पर रात का भोजन समाप्त कर स्वामी जी कालीबाड़ी गए और कश्मीर के महाराजा का आमंत्रण स्वीकार कर जम्मू जाने के लिए रात के 12 बजे ट्रेन में सवार हुए।
2: 21 अक्टूबर को 12 बजे जब वे जम्मू स्टेशन पर उतरे तो एक राज अतिथि के अनुरूप उनका स्वागत हुआ और राज्य की ओर से सत्कार विभाग के प्रमुख श्री महेश चंद्र भट्टाचार्य ने अपने पुत्रों के साथ उनकी देखभाल का भार ले लिया। अगले दिन स्वामी जी राजकीय पुस्तकालय देखने गए और बाद में उन्होंने महेश बाबू के गुरु स्वामी कैलाशानंद आदि अनेक पंजाबी सज्जनों के साथ धर्म चर्चा की। महेश बाबू के साथ कश्मीर में एक मठ स्थापित करने के विषय में भी बातचीत हुई।
0: 22 अक्टूबर को 12 बजे वे राजकीय बग्घी में सवार होकर राजा प्रसाद में एक और महाराजा के साथ भेंट की। इस मुलाकात के समय महाराजा के दो भाई तथा राज्य के कई प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वामी जी के अपने लिए निर्दिष्ट आसन पर बैठे जाने पर महाराजा ने वार्तालाप आरंभ करते हुए संन्यास का प्रसंग उठाया और स्वामी जी ने उसका समुचित उत्तर दिया। क्रमशः भावी नाचार तथा निरर्थक अनुष्ठानों की बात उठी और स्वामी जी ने अकाटी युक्तियों के आधार पर बता दिया कि किस प्रकार भारतवासी धर्म के मूल तत्वों के प्रति अज्ञानी रहकर केवल बाहरी क्रियाकलापों से चिपके रहने के कारण क्रमशः अपना बल, वीर्य एवं स्वतंत्रता खो चुके हैं और लकीर के फकीर होकर अंधविश्वासों को धर्म के आसन पर स्थापित कर सैकड़ों वर्षों से दूसरों का दासत्व स्वीकार कर बैठे हैं और उसमें पीछे जा रहे हैं।
1: आजकल वास्तविक पाप आचरण के कारण कोई समाज से बहिष्कृत नहीं होता, परंतु भोजन आदि के विषय में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर मानो समाज के सम्मुख घोर संकट उपस्थित हो जाता है। आजकल समुद्र यात्रा करने पर तरह तरह की आलोचनाएं होती हैं। वे भूल जाते हैं कि श्री रामचंद्र समुद्र पार करके ही लंका गए थे। आजकल ब्रह्म देश, श्रीलंका, बाली, मलाया, थाईलैंड आदि देशों में बहुत सारे भारतवंशी वाणिज्य व्यापार में लगे हुए हैं। वे उन देशों में कैसे पहुंचे? समुद्र पार करके ही ना, उनकी तो जान नहीं गई। भारतीयों को बाहर निकलना होगा। दुनिया का भ्रमण किए बिना वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती।
2: अंत में यूरोप और अमेरिका आदि देशों में वेदांत प्रचार की उपयोगिता और सफलता की बात समझाते हुए अपने कार्य की धारा एवं उद्देश्य आदि का वर्णन करते हुए उन्होंने सबको बताया कि देश के कल्याणार्थक वे अपनी मुक्ति की अभिलाषा त्याग कर बल्कि नरक भी जाने को प्रस्तुत हैं और वे किसी भी बाधा विपत्ति के भय से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगभग 3 बजे ये वार्तालाप समाप्त हुआ। कहना न होगा कि महाराजा स्वामी जी के तेज, साहस, पांडित्य, प्रतिभा भविष्य के लिए अद्भुत कार्य योजना, स्वधर्म एवं स्वदेश के प्रति प्रेम, उदार दृष्टिकोण और अपूर्व वाग्मिता का परिचय पाकर विशेष रूप से संतुष्ट हुए थे। उसी दिन स्वामी जी बग्घी में सवार होकर छोटे राजा के नए भवन में गए। राजा ने उनका सप्रेम स्वागत किया और थोड़ी देर तक उनके पास बैठकर उनके उपदेश सुने।
0: अगले दिन सियालकोट से कुछ लोग आए और स्वामी जी से वहां जाने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसी दिन शाम को उन्होंने जम्मू की जनता के सम्मुख जो व्याख्यान दिया, उस पर महाराजा इतने आनंदित हुए कि उन्होंने स्वामी जी से अगले दिन भी एक व्याख्यान देने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वो भी अनुरोध किया कि स्वामी जी 10-12 दिन जम्मू में रहकर लोगों के कल्याणार्थ एक एक दिन के अंतर पर भाषण दें।
2: भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से व्याख्यान बड़े ही हृदयग्राही और उत्साहपूर्ण हुए थे और अपने वक्तव्य को व्यक्त करने के लिए स्वामी जी ने हिंदी भाषा का इतने सुंदर ढंग से उपयोग किया था कि गुणग्राही महाराजा ने स्वामी जी से उसी भाषा में कुछ लेख लिखने का अनुरोध किया था और स्वामी जी ने वैसा ही किया। उन लेखों को पढ़कर महाराजा ने स्वामी जी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में उन दिनों पंजाब में जो अभाव दिख पड़ता था, इस विषय में भी उन्होंने खेद व्यक्त किया। उस दिन शाम को जो जनसभा हुई थी उसमें महाराजा के आने की बात थी, परंतु वे नहीं आ सके। 28 अक्टूबर को प्रातः भ्रमण कर निवास स्थान पर लौटने के बाद उन्होंने समाज शास्त्र पर चर्चा करते हुए अनेक गुण तत्वों की चर्चा की। उसका सार मर्म इस प्रकार है।
1: सबके लिए भोग के समान अवसर होना चाहिए। वंशगत या गुणगत जाति भेद के अनुसार जो भोग अथवा अधिकार का फर्क रहने के बावजूद उसमें कुछ गुण भी हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति चाहे जितना भी गुणवान या धनवान क्यों ना हो, वंशगत जाति को मानने से वो अपनी जाति का परित्याग नहीं कर सकता। अतः उसके गुण तथा धन का कुछ न कुछ अंश उसकी जाति को भी मिलता है। गुणवान जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता।
2: उन्होंने अपने बचपन का उदाहरण देते हुए कहा कि वे दरिद्रों की बस्तियों में जाकर उनकी भलाई का प्रयास किया करते थे। वैसे इस तरह की बातें स्वामी जी सबके सामने नहीं बोलते थे, केवल अंतरंग संगियों के मजलिस में ही कभी कभी कह डालते।
0: 29 अक्टूबर को वे राजा राम सिंह से विदा लेने गए और उन्हें बताया कि सियालकोट के मित्रों के दबाव के कारण उन्हें वहां जाना पड़ेगा और ज्यादा देर करना संभव नहीं। राम सिंह यह समाचार सुनकर दुखी हुए, परंतु उन्हें विदा करने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे जब भी जम्मू या कश्मीर आए तो राज का आतिथ्य स्वीकार करें,
2: और स्वामी जी सियालकोट की तरफ चल पड़े।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजने वाले हैं और रेडियो आजाद हिंद की प्रसारण सेवा का सफर आज आपके साथ यहीं तक। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते कल के कार्यक्रम आपको बता दें।
2: सुबह प्रातःकालीन प्रसारण सेवा शुरू होगी 7 बजे, जिसमें आप सुनेंगे जीवन सौरभ कार्यक्रम सुंदर गूढ़ा सुबह 7:10 पर, और पुनः प्रसारण शाम 5 बजे आप अक्षनिधि सुन सकते हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम सुनिए सुबह 7:20 पर और शाम को 5:10 पर। वतन का राग राजा राममोहन राय की पुण्यतिथि पर आधारित है, जो आप सुनेंगे सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे पुनः प्रसारण। सुबह 8:30 और शाम को 6:30 सुने कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आप कृष्ण की बाल लीला सुन सकते हैं। टेक गुरु AI का भाग एक आप सुनेंगे सुबह 9:00 और पुनः प्रसारण शाम 7:00। सुबह 9:30 और शाम को 7:30 सुनिए कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। देश के संस्थान भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के बारे में आप सुनेंगे सुबह 10:00 और पुनः प्रसारण 8:00 देश के संस्थान कार्यक्रम में। याद करो कुर्बानी जरूर सुनिए ज्योतिबा फुले पर आधारित है सुबह 10:30 पुनः प्रसारण 8:30 पर। मन की बात का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 11:00 और शाम को उसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 9:00। साथ ही आप 11:30 पर सुबह और शाम को 9:30 आप काव्य गुंजन कार्यक्रम सुनेंगे रश्मि रथी भाग 15 का प्रसारण। तो ये थी हमारी कल यानी 27 सितंबर 2026 दिन रविवार को कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।
1: और अब दीजिए अपने रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती को अनुमति। सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।